0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम पूजा के साथ है संध्या। नमस्कार आपको पूजा।
1: नमस्कार रिया, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इथियोपियन एयरलाइंस को 15 जून से 30 सितंबर तक की अवधि के लिए एक स्थायी ऑपरेटिंग परमिट प्रदान किया है। इस दौरान कुल 30 उड़ानें संचालित की जाएंगी, यानी प्रति सप्ताह 2 उड़ानें। पर्यटन मंत्री रिशा जिवाल के अनुसार आदिस अबेबा को हब के रूप में इस्तेमाल करते हुए इथियोपियन एयरलाइंस का मॉरिशस आगमन अफ्रीका के लिए, विशेष रूप से पश्चिमी अफ्रीका के लिए विशाल अवसर खोलता है। उनके मुताबिक इससे न केवल पर्यटन क्षेत्र को लाभ होगा, बल्कि ऑफशोर और आयात निर्यात क्षेत्रों को भी इससे फायदा होगा। कल गुरुवार को रियोबेल के पास स्थित बेलिया पोम्पुनेट में एक स्थल का दौरा किया गया, जो देश के जियोमेट्रिक पास पर स्थित 21 लक्ज़री विला के विवादास्पद से संबंधित है। उपस्थित संगठनों के अनुसार ये जोन पहले ही कोस्टल इरोजन से गंभीर रूप से प्रभावित है, जिसमें उखड़े हुए फिलाओ पेड़, क्षतिग्रस्त गैबियंस और तटवर्तीय से संबंधी समस्याएं शामिल है। विशेष रूप से सार्वजनिक

परामर्श और परियोजना की शुरुआत में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की कमी की निंदा की जा रही है। क्यूपिप कॉलेज से ये विज्ञप्ति चंद्रदेव सिंह जदूसीरू के अचानक निधन के बाद क्यूपिप कॉलेज के प्रशासन द्वारा अभिभावकों और छात्रों को सूचित किया जाता है कि आज शुक्रवार 22 मई

0: 8 बजे से कॉलेज आने की मांग की जाती है ताकि स्वर्गीय शिक्षक को अंतिम श्रद्धांजलि दिया जा सके। विदेश में यूएसए के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि क्यूबा अमेरिका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में देखा जाता है और एक शांतिपूर्ण समझौते की संभावना अधिक नहीं है। उनकी टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब अमेरिका ने क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो पर 1996 में 2 विमानों को गिराने और अमरीकी नागरिकों की हत्या के मामले में हत्या का आरोप लगाया है। और अब मौसम का हाल। मौसम का हाल इस प्रकार है। दक्षिण से आने वाले हवाओं का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है और एक एंटीसाइक्लोन दक्षिण पश्चिम की ओर से पाए जा रहे एक एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय मौसम अच्छा रहेगा सिवाय दिन के दौरान बादल कुछ घिर आएंगे देश के पूर्व दक्षिण और ऊंचाइयों पर। हल्की वर्षा होगी सेंट्रल प्लाटू पर रात के दौरान और बाकी इलाकों में मौसम अच्छा रहेगा। हवा हल्की रहेगी और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी समंदर में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से दूर समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 22 से 25, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:34 पर, सूर्यास्त शाम 5:39 पर होगा।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Masti।
0: तो मौसम की इस खबर के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम मिलेंगे 6:30 बजे।

0: प्रणाम और श्रोताओं, घड़ी मिलाते चलिए, इस समय सुबह के 6:05 हो चुके हैं। इस शुक्रवार 22 मई 2026 को सात नमारी है पूजा। और श्रोताओं, कहा जाता है हर दिन एक नया अवसर है अपनी आप में सुधार लाने का और स्वयं को फिर से बेहतर बनाने का। आइए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सुधा वृष्टि के साथ। और आइए इसकी प्रस्तुति और इस कार्यक्रम को सुनते हैं आचार्य गिरीश जी की प्रस्तुति में।
1: महासभा द्वारा आइए सुनिए सुधा वृष्टि।
2: हरि ओम तत्सत् लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचन्द्राय नमः। श्रीरामदूताय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओं नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरिनारायण। सभी श्रोताओं को सादर सप्रेम नमस्कार। हिंदू महासभा की ओर से आज फ्राइडे 22 मई 2026

के सुधा वृष्टि कार्यक्रम में मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। गत रविवार 17 मई से अधिक पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुई। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल पुरुषोत्तम यानी अधिक मास की उत्पत्ति होती है। यह माह के संबंध में माना जाता है कि मास के कम अधिक होने की व्यवस्था चंद्रमास से ही होती है, लेकिन यह निर्णय सूर्य संक्रांति से होता है। सामान्यतः प्रत्येक माह में संक्रांति अर्थात सूर्य का राशि परिवर्तन एक बार अवश्य होने से चंद्रमास की प्रक्रिया सहज चलती रहती है। जब मास में दो सौर संक्रांतियों का समावेश हो जाए तो क्षय मास आता है, एवं जिस माह में सूर्य संक्रांति का अभाव हो उसे अधिक मास कहते हैं। अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय होने के कारण उन्होंने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम दिया, इस कारण से इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस माह उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। इस महीने के दौरान जप तप दान अनंत पुण्यों की प्राप्ति कराते हैं। इस पूरे महीने में श्रीमद् भागवत गीता, राम कथा वाचन और श्री हरि विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण किया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का स्थान अन्य सभी पुराणों से सबसे ऊंचा माना जाता है। जिस प्रकार रामायण और महाभारत ऐसे ग्रंथ हैं जिसके आधार पर आगे के कवियों ने बहुत रचनाएं की है, उसी प्रकार श्रीमद् भगवत जी भी है। यह पुराण होते हुए भी काव्य सौंदर्य संपन्न और ऐतिहासिक ग्रंथ के समान है। इसका श्रवण अति पवित्र और परम उपयोगी है। इसमें गंभीरता इतनी है कि कहा जाता है कि विद्यवान भगवते परीक्षा, अर्थात विद्वानों की परीक्षा भागवत जी में ही होती है। मान्यता यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने और सुनने से परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने से मनुष्य को निश्चय हो जाते हैं कि इस संसार को रचने और पालन करने वाली कोई सर्वव्यापक शक्ति है। इसी शक्ति को लोग ईश्वर, परमात्मा आदि अनेक नामों से अभिहित करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में ही इस दिव्य ग्रंथ के स्वरूप एवं महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है कि जो साधु पुरुष दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या या द्वेष नहीं करते, ऐसे निर्मल हृदय भक्तों के लिए यह ग्रंथ परम कल्याणकारी है। श्रीमद् भागवत जी में उस निष्काम एवं परम धर्म का वर्णन किया गया है जो किसी स्वार्थ से रहित होकर केवल भगवान की भक्ति और जीवों के कल्याण के लिए प्रेरित करता है। साथ ही इसमें उस परम ज्ञान का भी निरूपण है जिसे जान लेने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। परम तत्व का ज्ञान और उसमें भक्ति का परम साधन, ये दो पदार्थ जब किसी प्राणी को प्राप्त हो गए तो कौन सा पदार्थ यह रह जाता है जिसके लिए मनुष्य कामना करे, और ये दोनों पदार्थ श्रीमद् भागवत जी पूरी मात्रा में प्राप्त होते हैं। जब तक मनुष्य भागवत जी को पढ़े या सुने नहीं, इस पे श्रद्धा ना हो, वह तब तक वह समझ नहीं सकता कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कितना बड़ा विशाल समुद्र है। श्रीमद् भागवत महापुराण के पढ़ने या सुनने से मनुष्य को विमल ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा प्राणी प्राणी में बैठा है और वही समस्त संसार का संचालन करता है। ऐसा ज्ञान हो जाने पर वह अधर्म करने से डरेगा। सो यदि इस
पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की

कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होते हैं तो उसका अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। श्रोताओं, इस वर्ष अधिक मास ज्येष्ठ मास में पड़ रहा है। ज्येष्ठ मास में सामान्यतः गंगा दशहरा तथा गायत्री जयंती जैसे महान पर्व मनाए जाते हैं, किंतु इस वर्ष ज्येष्ठ मास अधिक मास से युक्त होने के कारण पर्वों की तिथियों में विशेष विचार किया गया है। परंपरा एवं धर्म ग्रंथों के अनुसार गंगा दशहरा अधिक मास में मनाया जाएगा, जबकि गायत्री जयंती शुद्ध ज्येष्ठ मास में मनाई जाएगी। व्रत परिचय नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि यदि ज्येष्ठ मास अधिक मास हो तो शुद्ध मास की अपेक्षा मल मास अथवा अधिक मास में गंगा दशहरा मनाने से अधिक पुण्य एवं फल की प्राप्ति होती है। इसी कारणवश इस साल हम आगामी सोमवार 25 मई यानी मंडे 25 मई 2026 को श्रद्धा एवं भक्ति भाव से गंगा दशहरा महापर्व मना रहे हैं। हमारे जितने भी पर्व त्यौहार हैं वे केवल उत्सव मनाने के लिए नहीं है, बल्कि प्रत्येक पर्व का अपना विशेष आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व है। कुछ पर्व हम अपनी सांसारिक उन्नति के लिए मनाते हैं, कुछ आध्यात्मिक प्रगति के लिए, कुछ सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा हेतु, और कुछ ईश्वर तथा प्रकृति के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए। इन्हीं महान पर्वों में से एक है गंगा दशहरा, जिसका हमारे आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। गंगा दशहरा का पर्व हमारे आध्यात्मिक उन्नति तथा हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है, क्योंकि माँ गंगा केवल इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी जीव के कल्याण का माध्यम मानी जाती है। सनातन वैदिक संस्कृति में गंगा नदी को समस्त पवित्र नदियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गंगा केवल एक नदी नहीं है बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की जीवांत चेतना और दिव्य स्वरूप मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाते हैं। इस कारण मृत्यु के पश्चात लोग अपनी अस्थियां एवं राख गंगा जी में विसर्जित करते हैं ताकि आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अनेक लोग तो जीवन के अंतिम समय में गंगा तट पर रहकर अपनी प्राण त्यागने या अंतिम संस्कार की इच्छा भी व्यक्त करते हैं। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में गंगा जी को केवल नदी नहीं बल्कि देवी स्वरूप में भी वर्णित किया गया है। अनेक पौराणिक कथाओं में माँ गंगा से संबंधित हमें प्राप्त होते हैं। कुछ पौराणों में वर्णन मिलता है कि स्वर्ग में वे मंदाकिनी, पृथ्वी पर गंगा और पाताल में भोगवती नाम से प्रवाहित होते हैं। पुराणों के अनुसार गंगा जी भगवान श्री हरि विष्णु के बाएं चरण के अंगूठे के नख से प्रकट हुई। एक अन्य कथा में वर्णन है कि जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुए तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें धारण कर उनकी धारा को 7 भागों में विभाजित किया। इनमें से 3 धाराएं पूर्व दिशा में, 3 पश्चिम दिशा में प्रवाहित हुई और 7वें धारा भागीरथी गंगा कहलाई। महाभारत में भी माँ गंगा का अत्यंत विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। वे हस्तिनापुर के महाराज शांतनु की पत्नी बनी और आगे चलकर गंगा पुत्र भीष्म का जन्म हुआ। साथ ही महाभारत में यह कथा भी वर्णित है कि किस प्रकार रघुवंशी महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों की उद्धार के लिए कठोर तपस्या की और अनेक कठिनाइयों के पश्चात ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। उसी पावन घटना की स्मृति में गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है तथा गंगा जल से स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी मानी गया है।

0: शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा दशहरा के दिन अपने पूजा में मुख्य 10 संख्या का विशेष महत्व है। अतः गंगा जी की पूजा में 10 फल, 10 दिया, 10 तिल के लड्डू आदि अर्पण करना चाहिए और अंत में श्रद्धा एवं भक्ति के साथ माँ गंगा जी की आरती करनी चाहिए। इस पर्व को गंगा दशहरा इसलिए कहा गया है कि ये हमारे 10 तरह के पापों को हर लेता है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम को हम विराम की ओर लेके चलें। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण एवं गंगा दशहरा दोनों ही महान माने जाते हैं और मानव जीवन को पवित्रता, भक्ति और आध्यात्मिक शांति प्रदान करने वाले दिव्य साधन हैं। भागवत जी की कथा जहां मनुष्य के हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति प्रेम, श्रद्धा और वैराग्य उत्पन्न करती है, वहीं माँ गंगा का स्मरण एवं पूजन से पापों, हमारे जीवन के पापों और मानसिक अशांति को दूर करने वाली माना गया है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर गंगा पूजन, जप, दान और सत्संग करने से मनुष्य को विशेष पुण्य एवं आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। मैं अपनी ओर से एवं हिंदू महासभा की ओर से आप सभी को गंगा दशहरा एवं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माँ गंगा एवं श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। इस प्रार्थना के साथ आज की कार्यक्रम को विराम दूँ। आपकी ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। श्री श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदू महासभा द्वारा सुधा वरिष्ठ।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से वाकवा के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर मोसलमा, वीआरएस, कामापू और येता और आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 24 मई 2026 को सुबह के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और फिर है मोसलमा, उगिया और आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 22 मई 2026 को सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी है। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियां सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।

श्रोताओं, साथ रहिए। 6:30 बजे आप पूरा समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार हम फिर से मिलेंगे सुबह का नजराना कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े रहिए। चलिए, आप सभी के नाम इस ये प्यारे गीत को हम सुनते हैं।

आप सभी को समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। मॉरिशस की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इथियोपियन एयरलाइंस को 15 जून से 30 सितंबर तक की अवधि के लिए एक अस्थायी ऑपरेटिंग परमिट प्रदान किया है। इस दौरान कुल 30 उड़ानें संचालित की जाएंगी, यानी प्रति सप्ताह 2 उड़ानें। जून महीने से आइबेरोजेट मड्रिड से प्रति सप्ताह 1 उड़ान होगी और जुलाई में वर्ल्ड टू फ्लाई भी इसी तरह की साप्ताहिक सेवा शुरू करेगी। कल गुरुवार को रियोबेल के पास स्थित बेलेया पोपोनेट में एक स्थल का दौरा किया गया, जो देश के ज्योमेट्रिक पास पर स्थित 21 लग्जरी विला के विवादास्पद से संबंधित है। ये जोन पहले ही कोस्टल इरोजन से गंभीर रूप से प्रभावित है। सार्वजनिक परामर्श और परियोजना की शुरुआत में एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की कमी की निंदा की जा रही है। विरोध करने वाले लोगों के हस्तक्षेप के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया। फिजिकल एजुकेशन के प्रमुख और शिक्षक चंद्रदेव सिंह जदूसिरू के अचानक निधन के बाद क्यूपिप कॉलेज के प्रशासन द्वारा अभिभावकों और छात्रों को सूचित किया जाता है कि आज शुक्रवार 22 मई 2026 को पढ़ाई नहीं होगी। विदेश में यूएस के विदेश सचिव मार्को रूबियो ने कहा है कि क्यूबा अमरीका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है और एक शांतिपूर्ण समझौते की संभावना अधिक।

0: ठीक नहीं है। मॉरिशस की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इथियोपियन एयरलाइंस को 15 जून से 30 सितंबर तक की अवधि के लिए एक अस्थायी ऑपरेटिंग परमिट प्रदान किया है। इस दौरान कुल 30 उड़ानें संचालित की जाएंगी, यानी प्रति सप्ताह 2 उड़ानें। पर्यटन मंत्री रिशा जुवाल के अनुसार आदिस अबेबा को हब के रूप में इस्तेमाल करते हुए इथियोपियन एयरलाइंस का मॉरिशस आगमन अफ्रीका के लिए, विशेष रूप से पश्चिमी अफ्रीका के लिए विशाल अवसर होता है। उनके मुताबिक इससे न केवल पर्यटन क्षेत्र को लाभ होगा बल्कि ऑफशोर और आयात निर्यात क्षेत्रों को भी इससे फायदा होगा। मंत्री रिशा जुवाल को सुनते हैं।
1: Je dis que Ethiopian Airlines est un géant en Afrique et dans le monde de l'aviation.
2: अफ्रीकी महाद्वीप में इथियोपियन एयरलाइंस महारथी की तरह है। सिविल एविएशन के क्षेत्र में उनकी अच्छी छवि बनी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये एयरलाइंस अफ्रीकी इलाके में है और हम इस नज़दीकी का फायदा न उठाए। न सिर्फ अफ्रीका बल्कि अमेरिका के लोग भी इस एयरलाइंस की मदद से अपनी यात्रा तय करके अपने लक्ष्य तक पहुंच रही है। तुर्किश एयरलाइंस की उड़ानों की अधिक संख्या मिलने के लिए सिविल एविएशन की ओर काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है पर्यटन सेक्टर को और ज्यादा टिकाऊ और मजबूत बनाना, ताकि हमारा गंतव्य वैश्विक स्तर पर बनाए रहे।
0: जी हाँ, लुविना सोफी ने मंत्री रिशा जुवाल से बात की। विवरण अभी उदय का रहा। खबरों को हम जारी रखते हैं। कल गुरुवार को रियोबेल के पास स्थित बेलिया पोम्पोनेट में एक स्थल का दौरा किया गया, जो देश के ज्योमेट्रिक पास पर स्थित 21 लक्जरी विला के विवादास्पद से संबंधित हैं। उपस्थित संगठनों के अनुसार ये जोन पहले ही कोस्टल इरोजन से गंभीर रूप से प्रभावित है, जिसमें उखड़े हुए फिलाओं पर और तटवर्तीय इलाकों से संबंधित समस्याएं शामिल हैं। विशेष रूप से सार्वजनिक परामर्श और परियोजना की शुरुआत में एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की कमी की निंदा की जा रही है। विरोध करने वाले लोगों के हस्तक्षेप के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने अंततः परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले पूर्ण एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की आवश्यकता की मांग की है। अधिक जानकारी के लिए कोरल गार्डन कंसर्वेशन से जिल्बिया रिको को सुनते हैं। उनसे बात की निर्मा नारायण रेड्डी ने। विवरण अभी उदय।
2: कोरल गार्डन कंजर्वेशन के प्रतिनिधि जिल्बे रिको के अनुसार, इस जोन के क्षति की तीव्रता का जायजा लिया जा रहा है, इसीलिए इस इलाके के पुनर्वास कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। प्राकृतिक ढांचे यानी कि नेचर बेस की मदद से इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा और न कि सीमेंट का प्रयोग। सबसे पहले जनता इस इरोजन समस्या से संबंधित है, क्योंकि वे ही यहां पर आकर के समुद्र तट का फायदा उठाते हैं। परंतु अब इस समुद्र तट का अच्छी तरह से आनंद और फायदा नहीं उठा पा रही है, जैसा कि विगत में करते थे। टापू के दक्षिण पश्चिम तटवर्ती इलाके पर हमने कार्य की शुरुआत कर ली है और अच्छा नतीजा भी प्राप्त हो रहा है, और इन्हीं परिस्थितियों के साथ इस जोन पर हम काम करेंगे। नेचर बेस सॉल्यूशन को माध्यम बनाकर इस जोन के पुनर्वास कार्य संपन्न किए जाएंगे।
0: संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं पर ऐतिहासिक मतदान के बाद पर्यावरण मंत्री राजेश बागवान ने कहा है कि ये मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति है। ये प्रस्ताव वनुआतु द्वारा पेश किया गया है और 141 सदस्य देशों द्वारा समर्थित। उनके अनुसार इस मतदान ने पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश भेजा है, जिसके तहत अब अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई करना सभी देशों का कर्तव्य बन गया है। मंत्री राजेश भगवान ने ये भी याद दिलाया कि मॉरिशस जैसे छोटे टापू देश के लिए जलवायु परिवर्तन पहले

0: ऐसी ही वास्तविकता है जिसमें अचानक बाढ़, सूखा और समुद्र तट का बहाव यानी इरोजन शामिल है। यदि आप किसी निर्माण परियोजना में लगे हैं तो आप जानते हैं कि सीमेंट या लोहे की कीमतें कितनी अप्रत्याशित हो गई है। इस क्षेत्र में स्थिरता और विश्वास वापस लाने के लिए निर्माण उद्योग प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण उपकरण को अपडेट किया है, यानी हम बात कर रहे हैं नेशनल सिजुल ऑफ रेट्स के बारे में। ये एक मुफ्त राष्ट्रीय डेटाबेस है और ये निर्माण बाजार की वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ है ताकि भविष्य में ग्राहकों को प्रस्तावित कोटेशन अधिक भरोसेमंद हो। ये बड़े सुधार की एक नींव है जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को व्यवस्थित करना है। मंत्री अजय गणेश को सुनते हैं, उनसे बात की जॉन फ्रांसवा ने।
1: Les permits de bidding exercise sont plus précis. Parce que quand on fait un bidding exercise, quand on cote, ou même on le range ou la case, maintenant, ou même on est capable d'aller, rentrer aussi du low rate, ou capable de finir plus ou moins, calculer combien ou la case pour calculer. Pas une grande variance entre ce qui est pour calculer et ce qui est finalement pour produire pour venir. Et quand on cote, parler à projet, pour permettre plutôt certainty et pour permettre transparence dans le bidding process. Nous pouvons moderniser le secteur construction. N'importe quoi, le website est ouvert. Nous ne pouvons pas attendre 6 ans pour update. Nous pouvons dire ça 6 mois ou même avant. Si on a un nouveau produit, on a un récent prix, nous pouvons keep on updating.
0: अरब क्यूपिप कॉलेज से ये विज्ञप्ति फिजिकल एजुकेशन के प्रमुख और शिक्षक चंद्रदेव सिंह जादू सिरो को के अचानक निधन के बाद क्यूपिप कॉलेज के प्रशासन द्वारा अभिभावकों और छात्रों को सूचित किया जाता है कि आज शुक्रवार 22 मई 2026 को पढ़ाई नहीं होगी। जी हां, क्यूपिप कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी। हालांकि कर्मचारियों को सुबह 8:30 बजे से कॉलेज आने की मांग की जा रही है ताकि स्वर्गीय शिक्षक को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित किया जा सके। एमबीसी शोक में डूबे परिवारों और सगे संबंधियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करती है। 18 वर्षीय केनी कैथरीन को कल अदालत में अवैध हत्या के आरोप में पेश किया गया। उन्होंने आपराधिक आत्मरक्षा यानी लेजिटिमेट डिफेंस की बात कही। उन्हें वाकवा की सीआईडी द्वारा उनके वकील काविवेरिया की मौजूदगी में पूछताछ की गई। उन्होंने उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिनमें विलियम विलास, जी हाँ, 25 वर्षीय विलियम विलास वाकवा में अपने घर के पास 18 मई को मृत पाया गया। अधिक जानकारी लोविना सूफी की इस रिपोर्ट में विवरण अभी उदय का।
2: बोबासें के एक कॉलेज में ग्रेड 13 का एक छात्र केनी कैथरीन ने पुलिस को बताया कि वे घर पर अकेली थी, तभी उन्होंने अपने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। जब वे देखने गए तो उन्होंने अपने आंगन में एक अनजान शख्स को देखा। इस युवा के अनुसार उन्होंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, परंतु उस व्यक्ति ने उस पर हमला करने की कोशिश की। उस आदमी के पास एक तलवार थी। छात्र ने जांचकर्ताओं को बताया कि उन्होंने अपने बचाव में मुकाबला किया और उस संदिग्ध को काबू में कर लिया। इसके बाद भागते समय वह संदिग्ध व्यक्ति बुरी तरह नीचे गिर गया। आपको बता दें कि पुलिस को वाकवा की ग्रानम रोड पर बुलाया गया था, जहां विलियम्स विलोज नाम के एक शख्स की लाश मिली थी। विलियम का पहले से ही पुलिस रिकॉर्ड था। पुलिस के मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर मैक्सवेल मोवाजे द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में ये सामने आया कि फ्लोरियाल के रहने वाले विलियम विलोज की मौत गर्दन दबने के कारण हुई थी। केनी कैथरीन की जमानत की अर्जी पर इस सोमवार को अदालत में सुनवाई होगी।
0: अरब विदेश की खबरें। यूएस के विदेश सचिव मार्को रूबियो ने कहा है कि क्यूबा अमेरिका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है और एक शांतिपूर्ण समझौते की संभावना अधिक नहीं है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ने क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति रॉल कैस्ट्रो पर 1996 में 2 विमानों

को गिराने और अमरीकी नागरिकों की हत्या करने के मामले में हत्या का आरोप लगाया है। रूबियो ने कहा है कि वाशिंगटन की प्राथमिकता कूटनीतिक समाधान है, लेकिन चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश को किसी भी खतरे से बचाने का अधिकार और कर्तव्य है। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने रूबियो पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है और कहा है कि ये द्वीप कभी भी अमरीका के लिए खतरा नहीं रहा है।

और अब आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। दक्षिण की ओर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है और एक एंटीसाइक्लोन दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिस कारण हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान सुबह के समय मौसम अच्छा रहेगा, सिवाय दिन के दौरान बादल कुछ घिर आएंगे। इस तरह देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्रांतों पर हल्की वर्षा होगी। रात को भी ऊंचाइयों पर हल्की वर्षा होने का अनुमान है, बाद में मौसम में सुधार आएगा, मौसम अच्छा रहेगा। हवा सुबह के समय हल्की रहेगी और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके आज शाम को 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार समंदर खराब रहेगा और दक्षिणी समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 22 से 25 हाली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:34 पर हुआ, सूर्यास्त शाम 5:39 पर होगा।

6:46 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। मॉरिशस की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इथियोपियन एयरलाइंस को 15 जून से 30 सितंबर तक की अवधि के लिए एक अस्थायी ऑपरेटिंग परमिट प्रदान किया है। इस दौरान कुल 30 उड़ानें संचालित की जाएंगी, यानी प्रति सप्ताह 2 उड़ानें। जून महीने से आइबेरोजेट मड्रिड से प्रति सप्ताह 1 उड़ान होगी और जुलाई में वर्ल्ड टू फ्लाई भी इसी तरह की साप्ताहिक सेवा शुरू करेगी। कल गुरुवार को रियोबेल के पास स्थित बेलिया पोम्पोनेट में एक स्थल का दौरा किया गया, जो देश के जियोमेट्रिक पास पर स्थित 21 लक्ज़री विला के विवादास्पद से संबंधित है। ये जोन पहले ही कोस्टल इरोजन से गंभीर रूप से प्रभावित है। इस तरह सार्वजनिक परामर्श और परियोजना की शुरुआत में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की कमी की निंदा की जा रही है। पर्यावरण मंत्रालय ने इस समस्या के चलते हस्तक्षेप किया। फिजिकल एजुकेशन के प्रमुख और शिक्षक चंद्रदेव सिंह जडू सिरू के अचानक निधन के बाद क्यूपिप कॉलेज के प्रशासन द्वारा अभिभावकों और छात्रों को सूचित किया जा रहा है कि आज शुक्रवार 22 मई 2026 को पढ़ाई नहीं होगी। विदेश में यूएस के विदेश सचिव मार्को रूबियो ने कहा है कि क्यूबा अमरीका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है और शांतिपूर्ण समझौते की संभावना अधिक नहीं है।

0: और फिजिकल एजुकेशन के प्रमुख और शिक्षक चंद्रदेव सिंह जद्दू सिरू के अचानक निधन के बाद क्यूपिप कॉलेज के प्रशासन द्वारा सूचित किया जाता है कि आज क्यूपिप कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी। छह बजकर 48 मिनट हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक फैजल को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार और फ्रेंच विभाग को भी। हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शुभ समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

शोक समाचार सुनिए। कालीमाई लेन पायुत में इकसठ साल की 61 ईयर्स ओल्ड श्रीमन राज लुटुआ जिन्हें लोग राज नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके मकान कालीमाई लेन पायुत से उठाकर फिनिक्स किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। एरिगाडू स्ट्रीट मिडलैंड्स में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड श्री चंद्रदेव सिंह जादू सिरू जिन्हें लोग पारे नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे क्यूपिप कॉलेज में शिक्षक और फिजिकल एजुकेशन के प्रमुख थे। इनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे इनकी पत्नी उषा सिरू के मकान एरिगाडू स्ट्रीट मिडलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिडलैंड्स किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। डॉक्टर ऑनरी पेरो स्ट्रीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड श्री किशोर बिहारी जिन्हें लोग मुन्ना और नाम से जानते थे और वे पहले रोजहिल बस में ड्राइवर का काम करते थे। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके मकान डॉक्टर ऑनरी पेरो स्ट्रीट ग्रैंड रिवर वेस्ट से उठाकर कॉलेव्यू म्यूनिसिपल किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। कंडन स्ट्रीट लुअरविल में 88 साल की 88 ईयर्स ओल्ड श्रीमती एरामा नरायडू जिन्हें लोग पुष्पा नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके मकान कैंडन स्ट्रीट लुअरविल से उठाकर दागुची किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। ब्लॉक J2 NHDC पलमा का ट्रिबोन में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड श्रीमती लक्ष्मी पोमनी पैदाशी नाम मुनसामी और जिन्हें लोग पुष्पा नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके मकान ब्लॉक जे नंबर दो NHDC पलमा कटोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पलमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। एरोस्लेन प्लैंड पापाई में 47 साल के 47 ईयर्स ओल्ड श्री सुरेंद्र भिखारी जिन्हें लोग अजय नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी रविवार 24 मई को सुबह 10:30 बजे इनके मकान एरोस्लेन प्लैंड पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लैंड पापाई की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन संडे एट

0: 10:30 a.m. La Lucie-Roy Belle-Rivière-Saint-Chemin, 57 Saliki, 57 years old. श्रीधीरज राम तुहल, श्रीधीरज राम तुहल जिन्हें लोग शैलेश नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान लालूसी रॉय बेलेरिवेसेश से उठाकर बोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 p.m. बुआ द्वाजो रोड पोधोदो विलाज में 57 साल की 57 years old श्रीमती विजयंती दुखी, श्रीमती विजयंती दुखी पैदाशी नाम मातु और जिन्हें लोग देवी नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे इनके पति देव दुखी से के मकान से बुआ द्वाजो रोड पोधोदो विलाज से उठाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 a.m. पास्कल रोड दे वाली लेन ब्रिजे वेजिया में 61 साल की 61 years old श्रीमती माया देवी सराय पैदाशी नाम नारायण स्वामी और जिन्हें लोग अनंत नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ ही आज दिन के 11 बजे इनके पति संजय सराय के मकान पास्कल रोड देवाले लेन ब्रिजे वेजिया से उठाकर बोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 a.m. रॉय रोड फ्लोरियाल में 62 साल की 62 years old श्री सत्यानंद राज सनमुखिया, श्री सत्यानंद राज सनमुखिया जिन्हें लोग मतन नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे इनके मकान रॉय रोड फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इजिडोरोस फ्लाक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 p.m. रॉय रोड प्लेन बुआ लिस्कालिये में, रॉय रोड प्लेन बुआ लिस्कालिये में 83 साल की 83 years old श्रीमती ज्ञानती गोइंडो, श्रीमती ज्ञानती गोइंडो जिन्हें लोग ज्ञानती नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे मुकेश बलदेवा के मकान रॉय रोड प्लेन बुआ लिस्कालिये से उठाकर प्लेन मायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 a.m. शिवाला रोड लावंचुआ में 73 साल की 73 years old श्री पूरन लचन जिन्हें लोग रामेश नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे सुदेश लचन के मकान शिवाला रोड लावंचुआ से उठाकर मेजिन कौदमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 a.m. और रामदीन लेन ऑंग्रे काटों ओकुले में 44 साल के 44 years old श्री प्रेम किशन मनराज जिन्हें लोग विक्की नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह नौ बजे इनके मकान रामदीन लेन ऑंग्रे काटों ओकुले से उठाकर बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9 a.m. शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: आज की सूचनाएं। अधिक पुरुषोत्तम मास के संदर्भ में रुद्रनाथ मंदिर सुल्फेगिनो सनातन सभा, तुलसी भवन ऑर्गेनाइजिंग कमिटी और भारत से आए हुए श्री अजय याग्निक ग्रुप द्वारा सुल्फेगिनो नंबर 1 वाक्वा के रुद्रनाथ मंदिर तुलसी भवन में 1 महीने तक रामायण मास परायण 2026 का आयोजन किया गया है। रविवार 17 मई से रविवार 31 मई तक रात्रि के 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मॉरिशस रामायण मंडली द्वारा प्रतिदिन रामायण चांटिंग और प्रवचन होंगे, जबकि सोमवार 1 जून से लेकर शनिवार 13 जून तक रात 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक श्री अजय याग्निक एंड ग्रुप द्वारा रामायण चैंटिंग और प्रवचन के साथ श्रीमती स्नेहा याग्निक द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम

0: कार्यक्रम भी होंगे।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स न्यूज।
2: सबसे नमस्कार, कार्विंग का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड का मैनेजर टोमस टुखेल आज स्क्वाड का ऐलान करेगा। केवल 26 खिलाड़ी चुने जाएंगे, 26 प्लेयर्स। खबर है फिल फोडेन, कोल पाल्मर, हैरी मैग्वायर, मोगन गिब्स व्हाइट, लुक शो और एडम वॉटन टीम में नहीं होंगे। हैरी मैग्वायर टीम में न होने से बहुत निराश हुआ। नॉर्वे की टीम में आर्सेनल का कप्तान मार्टिन ओडेगार्ड को कप्तान बनाया गया है वर्ल्ड कप के लिए। स्कॉटिश प्रीमियरशिप प्लेऑफ में कल पार्टिक और सेंट मिरन के बीच मैच ड्रॉ गया 1-1। जर्मन बुंडेसलीगा प्लेऑफ में वुल्फबर्ग 0 पादेबोर्न 0। फिर सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर चैंपियन बनी दमक को 4-1 से हराकर। रोनाल्डो का डबल रहा, साडियो माने का एक गोल, कोमान का भी एक गोल रहा। सऊदी अरब प्रो लीग में पोस्टर बॉय रोनाल्डो का ये पहला टाइटल है अल नसर के साथ, 3 साल लगे टाइटल जीतने में। इंडियन सुपर लीग में भी कल मैच खेले गए। मोहन बगान ने दिल्ली को 2-1 से हराया, पंजाब को हराया मुंबई ने 2-0 से, इंतकाशी 1 ईस्ट बंगाल 2 जमशेदपुर 0 ओडिशा 0। आज इटली के सेरी आ में फ्लोरेंटीना का मुकाबला अटलांटा से होगा। अटलांटा अभी 7वें पोजीशन पर है कॉन्फ्रेंस लीग स्पॉट पर, जबकि फ्लोरेंटीना 15वें पोजीशन पर है। फ्रांस में कुप दे फ्रांस का फाइनल होगा लॉन्स और निस के बीच। कल चैंपियनशिप प्लेऑफ का फाइनल वेम्बले में हल वर्सेस मिडल्सब्रो। प्रीमियर लीग में जाने का एक आखिरी टिकट, इसे वर्ल्ड फुटबॉल में सबसे मालामाल रिचेस्ट गेम माना जाता है, क्योंकि प्रीमियर लीग में आने से लगभग 205 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की आमदनी रेवेन्यू होती है 3 सीजन के अंदर अंदर। सीधे पैसे नहीं मिलते, पर प्रीमियर लीग में खेलने से और कमर्शियल विनफॉल से इतने पैसे मिल जाते हैं। स्कॉटिश कप का फाइनल सेल्टिक और डनफर्नाइल के बीच होगा कल। UEFA Women's Champions League फाइनल FC बार्सिलोना और लियोन के बीच। जर्मनी में किंग्स कप का फाइनल कल होगा बायर्न म्यूनिख वर्सेस स्टुटगार्ट। और संडे को 7 बजे एक ही समय प्रीमियर लीग सीजन 2025-2026 को अलविदा कहेंगे। आर्सेनल को प्रीमियर लीग ट्रॉफी दी जाएगी क्रिस्टल पैलेस के मैदान में। यूरोपियन चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग कॉन्फ्रेंस लीग क्वालिफिकेशन के टिकट दांव पे हैं और रिलेगेशन से बचने की का आखिरी मौका। सभी मैच ब्राइटन मैनचेस्टर यूनाइटेड, बर्नले वुल्व्स, क्रिस्टल पैलेस आर्सेनल, फुलहम न्यूकासल यूनाइटेड, लिवरपूल ब्रेंटफोर्ड, मैनचेस्टर सिटी एस्टन विला, नॉटिंघम फॉरेस्ट बोर्नमाउथ, सन्डरलैंड चेल्सी, टोटनहम हॉटस्पर एवर्टन, वेस्ट हैम लीड्स। हाई स्टेक्स, टोटनहम हॉटस्पर को चाहिए बस एक ड्रॉ, एक अंक रिलीगेशन से बचने के लिए। वेस्ट हैम अभी 2 अंक पीछे हैं, गोल डिफरेंस टोटनहम हॉटस्पर का बेहतर है। यूरोप में जाने की रेस भी आकर्षण का केंद्र होगा। आर्सेनल, सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और एस्टन विला के लिए चैंपियंस लीग स्पॉट पक्का है, स्पॉट ऑन। और 1 या 2 चैंपियंस लीग टिकट मिल सकते हैं। एक तो 5वां पोजीशन पर आएगा और 6ठा पोजीशन भी चैंपियंस लीग टिकट हो सकता है, पर इसके लिए चाहिए एस्टन विला की हार हो और लिवरपूल की जीत, जिससे विला टॉप 4 से बाहर हो यानी 5th पोजीशन। ऐसे में 6th पोजीशन की टीम भी चैंपियंस लीग में जाएगी। इस 6th पोजीशन के लिए, 6ठे स्थान के लिए बोर्नमाउथ और ब्राइटन में से एक, लिवरपूल को चाहिए बस 1 अंक। हार भी हुई तो 6 गोल डिफरेंस होना चाहिए लिवरपूल और बोर्नमाउथ के बीच। बोर्नमाउथ के लिए ऐतिहासिक यूरोपियन फुटबॉल एंट्री होगी। यूरोपा लीग ब्राइटन, चेल्सी, ब्रेंटफोर्ड और सन्डरलैंड, इनमें इनके बीच केवल 2 अंकों का गैप है। अगर क्रिस्टल पैलेस कॉन्फ्रेंस

चैंपियंस लीग जीतता है तो वो भी यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब फाइनल डे शोडाउन मजेदार होगा। फ्रांस न्यूज, बोर्नमुथ के स्ट्राइकर एल चुन्यो क्रूपी के

0: अपने युवा खिलाड़ी को नहीं बेचना चाहता। क्रूपी केवल 19 साल का है। मैनचेस्टर यूनाइटेड डबल ट्रांसफर की ओर। अटलांटा से 26-year-old 26 साल का ब्राजीलियन मिडफील्डर एडिसन और न्यूकासल यूनाइटेड से सांड्रो टोनाल्डी हिट लिस्ट में है। टेनिस, रोलां गारोस में फ्रेंच ओपन के क्वालिफाइंग मैच खेले जा रहे हैं और फर्स्ट राउंड के ड्रॉ भी निकाले गए। बिग फेवरेट वर्ल्ड नंबर वन यानी सीना की एंट्री होगी क्लेमेंट ताबू से। नोवाक जोकोविच खेलेगा गियोवानी पेरिकॉट के खिलाफ। अरीना सबालेंका खेलेगी जेसिका बुजास मानेरो से और कोको गोव खेलेगी टेलर टाउनसेंड के खिलाफ। इस संडे से, इस रविवार से फर्स्ट राउंड के मैच शुरू होंगे। क्रिकेट, आईपीएल 2026 के प्लेऑफ के लिए आखिरी स्थान कौन लेगा? कल गुजरात टाइटंस, जो पहले से ही क्वालिफाई है, उसने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रनों से कुचला। साई सुदर्शन 84, शुभमन गिल 64, जोस बटलर 57। फाइनल प्लेऑफ स्पॉट के लिए कई टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी। राजस्थान रॉयल्स अभी 14 अंक लिए चौथे स्थान पे हैं, फिर पंजाब किंग्स 13, कोलकाता नाइट राइडर्स 13, दिल्ली कैपिटल्स 12 अंक। अगला मैच आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच, कल लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब से, और संडे को मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स, ये ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच होंगे। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

0: नमस्कार श्रोता गण, घर ही मिलाते चलिए। इस समय सुबह के 7:05 हो चुके हैं। इस शुक्रवार 22 मई 2024 को सात नंबर ही है पूजा और सुबह का नजराना कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती है। कहा जाता है सच्ची खुशी भविष्य की चिंता किए बिना और खुश रहकर वर्तमान का आनंद लेना है। कहा जाता है कल किसने देखा है, जीना है तो अपने आज में जिए, अपने आज को संवारिए। चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं चिंतन से। आइए इसे सुनते हैं श्रीमती डॉक्टर लक्ष्मी जमन जी की प्रस्तुति में।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्मसंशय, सिर्फ यही तीन जीवन को बल और सबलता प्रदान करते हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से द्विभा शुगर स्टेट के रहने वाले निवासियों को, खासतौर पर आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 22 मई 2024 को सुबह के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी है। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
0: 819 किलोहर्ट्ज़।

0: जो भर के दिल मेरा धड़के। जी हाँ, आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉर्शस के लहरों पर सुबह का नजराना कार्यक्रम में, जहाँ पर कुछ पुराने गीतों के बाहर लेकर आई है पूजा। यूं ही हमने ये कहते हैं, ओल्ड इज गोल्ड। तो चलिए अभी के लिए नजर डालते हैं आज के रेडियो कार्यक्रमों पर।
1: झलकियां
0: अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम 7:30 बजे।

पपीला गीत आप सभी के नाम चलाएंगे और 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम और 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी जी द्वारा फिर आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे और फिर से आप समाचार सुन पाएंगे समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम और 10 बजे फिर से समाचार होंगे समाचारों के उस पार भक्ति धारा कार्यक्रम और इसकी प्रस्तुति करेगी रोशनी और शास्त्र नवनीतम आप इसे सुन पाएंगे 10:15 बजे। भक्ति धारा कार्यक्रम जारी रहेगा 10:50 से लेकर 11 बजे तक और 11 बजे आप फिर से समाचार सुन पाएंगे समाचारों के उस पार शमे फरोजा कार्यक्रम सायदा की तरफ से और 12 बजे आप तेलुगु भाषा में कृतिका द्वारा कार्यक्रम सुन पाएंगे। दिन के 1 बजे तमिल भाषा में कार्यक्रम आरसी द्वारा आप सुन पाएंगे। 1:45 पर रंगारंग कार्यक्रम गुजराती भाषा में रत्ना द्वारा और दोपहर के 2 बजे आप हक्का कार्यक्रम सुनेंगे होंग होंग के साथ।

0: और 2:30 बजे आपकी पसंद का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे, जहां पर आपके ही पसंद के गीत हम चलाएंगे। 4028085 पर आप अपना रिक्वेस्ट हम तक पहुंचा सकते हैं और 5251700 पर आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। और सुपहर के 3 बजे समाचार होंगे, समाचारों के उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम जारी रहेगा। अनवर की ओर से आप उर्दू कार्यक्रम सुन पाएंगे सुपहर के 3:45 से लेकर शाम के 4:40 पर, और 5 बजे आप गीत और गज़ल सुन पाएंगे रत्ना द्वारा। पूरा समाचार बोलते हैं आप सुन पाएंगे शाम के 6 बजे। फिल्मी गीत आप सभी के नाम 6:20 पर, और 6:30 बजे आप चाइनीज़ कार्यक्रम सुन पाएंगे जिन की तरफ से, और रात के 7 बजे तमिल भाषा में आप कार्यक्रम सुन पाएंगे, और 7:30 बजे आप तेलुगु भाषा में विश्वा द्वारा कार्यक्रम सुन पाएंगे। गीत गंगा कार्यक्रम मराठी भाषा में बापू द्वारा आप सुन पाएंगे इसे रात के 7:50 पर। रात के 8:10 पर भजले प्रभु का नाम, इस भक्ति कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे अलका जी द्वारा, और महफिले शब परविजा की तरफ से रात के 8:40 पर। रात के 9 बजे भोजपुरी तड़का कार्यक्रम भोजपुरी गीत आप सभी के नाम सुरेखा द्वारा, और कुछ पुराने दौर के गीत लेकर आएगी गिनेशा रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, और 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक का चंद पुराने गीत आप सभी के नाम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस,
1: झलकियां,
2: झलकियां।

0: भाई जिंदगी एक पहेली है, इसमें खुशी भी है और गम भी है, ये दो साथ ही तो हमेशा चलते ही रहते हैं। पर जिंदगी एक आईना भी है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। इसीलिए जीवन में जो भी हो आप मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपके मुस्कान ही आपका ताकत है। और कहा जाता है कि जो जीवन से लड़ता है, संघर्ष से लड़ता है, वही सिकंदर कहलाता है। रास्ते पर है या घर पर साथ निभा रही है, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम, कुछ पुराने गीतों के दौर। आप सभी के नाम और अभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शैला जी गौनगविया सुदेश से, और सादजात जी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं त्रियोले से, सूरज शर्मा जी, और साथ में हैं शैला जी गौनगविया सुदेश से, और शोभा जी हैं वाकवा से, शिवरानी जी हैं गाँव बुआ से, लीला जी हैं बुआशेरी से, और साथ में हैं माला सुमारू जी, सुबह सुबह मैसेज भेज ही देती हैं, और श्यामा रघुनंदन जी हैं, साथ में हैं वीना रामपुल जी। आपका सभी का स्वागत है। आप जैसे इतना प्यार देते हैं और आपके मनोरंजन के लिए हम चले आते हैं, इतने प्यार और अपनेपन के कारण ही, ऐसे मीठे मीठे साथियों के कारण ही हम चले आते हैं यहाँ पर आपके लिए कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ। चलिए जुड़े रहिए और साथ देते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

0: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
1: ऐसे ही हमारे साथ गुनगुनाते रहिए और जुड़िए हमारे साथ। अभी मिला हमा सौमी जी हैं और साथ में हैं माला जी, अपनी बेटी के जन्मदिन मना रही हैं। और जो भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, पूरे एमबीसी टीम की ओर से आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी साथ निभा रही हैं गीता जी हैं पोफेयर से और लक्ष्मी जी हैं बॉम्बू से, कल्याणी जी हैं होस्टे से, बड़े प्यार से साथ निभा रही हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहते हैं जब हम अपनों से प्यार करते हैं तो हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, इसीलिए गीतों का सहारा जो है हम लेते हैं। और ये गीत के बोल बहुत कुछ कहे जाते हैं। जिस दिल में प्यार हो वही और उसी दिल में अपनापन भी है।

चलिए कमलेश धारी चरण और धर्मावती काली चरण जन्मदिन मना रहे हैं और उनको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं साथ दे रही है संगीता जी काटकोको से।

और उनके जन्मदिन के अवसर पर गीत की मांग कर रही हैं आपको, और आपके पति भी हैं राजेश जी कातबोन से और लक्ष्मी जी हैं।

बॉम्बू से साथ दे रही है इंदिरा लौटन जी और साथ में है सौंदरपाल सिंह लंदन से सुन रहे हैं हमें और विश्वराज गोपी जी और उनकी बेटा बेटी और माँ भी हैं। पूरे परिवार के साथ जो है जुड़े हुए हैं रेडियो मॉर्शस की लहरों पर। ऐसे ही सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए कुछ प्यारे गीत आप सभी के नाम। और अभी के लिए चलिए 90s की ओर हम बढ़ते हैं, जहां पर कुछ रोमांटिक गीतों के दौर, जहां पर ऐसे ऐसे सिंगर्स आए थे जैसे कि सोनू निगम, विनोद राठौर और कुमार सानू जी, और उनके गीत कितने प्यारे थे, कितने रोमांटिक थे। और ऐसे ऐसे एक्ट्रेसेस भी आए थे जैसे कि शिल्पा शेट्टी, माधुरी और करिश्मा कपूर जैसे बेहतरीन से बेहतरीन एक्ट्रेस आई थी। कहते हैं हर दौर में कोई ना कोई नया चेहरा अवश्य आता है कुछ नयापन लेकर, पर हर में कोई ना कोई हुनर अवश्य होता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसा ही है, हर किसी में हुनर है, बस अपने आप को पहचानने का, अपने आप को मौका दीजिए।

सुबह का नजराना कार्यक्रम में केवल गीत नहीं, कुछ ऐसे ऐसे शब्द भी हम बोलते हैं, ऐसे ऐसे लाइनें भी बोलते हैं जो हम सुबह सुबह जब भी हम सुनते हैं, जब भी ट्रैवल कर रहे हैं और इन लाइनों को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है, मान लीजिए कि जैसे जीने की एक राह मिल जाती है। दुनिया को बदलने के लिए अपनी मुस्कान का उपयोग करें, लेकिन दुनिया को अपनी मुस्कान ना बदलने दें। कहते हैं जब हम जन्म लेते हैं तो हम अपने नसीब लेकर आते हैं, और किसी ने ये भी कहा है कि जो नसीब है हम खुद ही बनाते हैं। कैसे? अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से। इसीलिए जो मिलता है उसे स्वीकार कीजिए, और जो ना मिले उसे भगवान का एक प्रोटेक्शन समझकर आप उसे भूल जाएं, और जो आने वाला है उसके लिए आप तैयारी करें, क्योंकि जिंदगी में पाना खोना ये तो लाजमी है, पर जीना ना भूलिए। जीते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चाहे जो भी हो, क्योंकि ये जिंदगी बड़ा ही हसीन है।

0: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
1: मेहनत का फल और मुसीबत का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में ही छोड़ दीजिए, और उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से ही रखिए। चलिए इसी लाइन के साथ आप सभी से यही कहेंगे कि जुड़ रही है हमारे साथ। 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे, समाचारों के उस पार हम फिर से मिलेंगे गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ दिन, और इसी के साथ सुबह का नजराना कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं।

0: फजर के 8 बजल बा।
1: नमस्ते सब कोई के
0: भोजपुरी के समाचार में हमने आप सब कोई के स्वागत करत है जा। मॉरिशस की सिविल एविएशन अथॉरिटी इथियोपियन एयरलाइंस के 15 जून से 30 सितंबर ले के अवधि के खातिर एगो अस्थायी ऑपरेटिंग परमिट प्रदान कर ले बा। कुल 30 उड़ान संचालित करल जाए, यानी प्रति सप्ताह दुगो उड़ान रही। जून महीना से आइबेरोजेट मद्रिद से हर सप्ताह एगो उड़ान संचालित करी, और जुलाई महीना में वर्ल्ड टू फ्लाई भी ऐसने ही साप्ताहिक सेवा शुरू करी। काल बिफे के बेलिया पोपोनेट में एगो स्थल के दौरा करल गल, जो देश के ज्योमेट्रिक पास पर स्थित 21 लक्ज़री विला के विवादास्पद से संबंधित है। इस जोन पहले ही कोस्टल इरोजन से गंभीर रूप से प्रभावित होलबा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की कमी की निंदा करल गल बा। इस स्थल के दौरा करे होला जना के हस्तक्षेप के बाद पर्यावरण मंत्रालय परियोजना के आगे बढ़ाए से पहले एगो पूर्ण एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के आवश्यकता पर बात करलन। क्यूपिप कॉलेज में आज पढ़ाई नहीं हुई। जी हाँ, क्यूपिप कॉलेज में आज पढ़ाई नहीं हुई। समाज सुरक्षा मतलब आज कक्षा नहीं चली। फिजिकल एजुकेशन के प्रमुख आर शिक्षक चंद्रदेव सिंह जदूसिरु के अचानक निधन के बाद क्यूपिप कॉलेज के प्रशासन ई फैसला ले लेबा कि आज शुक्रवार 22 मई के क्यूपिप कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो। यह शिक्षक चंद्रदेव सिंह जदू सिरू के श्रद्धांजलि अर्पित करे खातिर ई फैसला लेवल गलबा।

तो सर, देश की खबर में यूएस के विदेश सचिव मार्को रूबियो बोले बा कि क्यूबा अमेरिका खातिर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बनगल बा, एक शांतिपूर्ण समझौता की संभावना जस्ट

अधिक नहीं है। उनकर ई टिप्पणी ऐसे बखत में आल बा जब अमेरिका क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति रॉल कैस्ट्रो पर 1996 में दुगो विमान के गिराए के और अमरीकी नागरिक के हत्या करे के मामले में हत्या के आरोप लगे रहल। त्रैक्रे संगे भोजपुरी के समाचार समाप्त होल। तुह लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते और शुभ दिन।

8:04 होलबा मरनी की खबर सुने जा। एरिगा दू स्ट्रीट मिडलैंड्स में 54 बरिस के सखन काथों के श्री चंद्रदेव सिंह जदू सीरू जिनकरा सब कोई पारवे नाम से जस्ती जानत रलन जा गुजरगर हवन उनकर माती आज जैसे पहर की 3 बजे आज से पहर की 3 बजे उनकर पत्नी उषा सीरू के घरे एरिगा दू स्ट्रीट मिडलैंड्स से उठावल जाए और क्रियाक्रम खातिर मिडलैंड्स के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टूडे 8:03 PM कालीमाई लिन पायुत में 61 बरिस के 67 अनों के श्रीमनराज लुटुआ जिनकरा सबके राज नाम से जस्ती जानत रलन जा गुजरगर हवन उनकर माती आज दिन के 2:02 उनकर घरे कालीमाई लिन पायुत से उठावल जाए और फेनिक्स के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टूडे 8:30 PM डॉक्टर ऑनरी पेरो स्ट्रीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में 66 बरिस के 87 अनों के श्री किशोर बिहारी जिनकरा सब कोई मुन्ना नाम से जानत रहलन जा अर्जुन पहले रोजहिल बस में ड्राइवर का काम करे गुजरगर हवन उनकर माती आज दिन के 1 बजे उनकर घरे डॉक्टर ऑनरी पेरो स्ट्रीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट से उठावल जाए और कॉलिव्यू म्यूनिसिपल के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टूडे 8:01 PM कैंडन स्ट्रीट लुअवेल में 88 बरिस के 98 अनों के श्रीमती एरामा नरायडू जिनकरा सब कोई पुष्पा नाम से जस्ती जानत रहलन जा गुजरगर हवन उनकर माती आज दिन के 1 बजे उनकर घरे कैंडन स्ट्रीट लुअवेल से उठावल जाए और दाहुची के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टूडे 8:01 PM ब्लॉक जे नंबर 2 NHDC पलमा कैट्रोबोन में 68 बरिस के 67 अनों के श्रीमती लक्ष्मी पोमनी पैदाशी नाम मुनसामी और जिनकरा सब कोई पुष्पा नाम से जस्ती जानत रहलन जा गुजरगर हवन उनकर माती आज दिन के 1 बजे उनकर घरे ब्लॉक जे नंबर 2 NHDC पलमा कैट्रोबोन से उठावल जाए और गांधी पलमा के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टूडे 8:01 PM लालू सुरोय बिलिया रिविया सैश में 57 बरिस के सकन सेतों के श्री धीरज राम तोहल जिनकरा सबके शैलेश नाम से जस्ती जानत रहलन जा गुजरगर हवन उनकर माती आज दिन के 2:02 उनकर घरे लालू सुरोय बिलिया रिविया सैश से उठावल जाए और बोशों के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टूडे 8:30 PM बोआडोआजू रोड पुद्रोदो विलाज में 57 बरिस के सकन सेतों के श्रीमती विजयंती दुखी पैराशी नाम मतु और जिनकरा सब कोई देवी नाम से जस्ती जानत रहलन जा गुजरगर हवन उनकर माती आज दिन के 11:00 उनकर पति देव दुखी के घरे बोआडोआजू रोड पुद्रोदो विलाज से उठावल जाए। पास्कल रोड दे वाली लेन ब्रिजेवियाजिया में 61 बरिस के 67 अनों के श्रीमती माया देवी सराय पैदाशी नाम नारायण सामी और जिनकरा सब कोई अनंता नाम से जस्ती जानत रहलन जा गुजरगर हवन उनकर माती आज दिन के 1 बजे आज दिन के 1 बजे उनकर पति संजय सराय के घरे पास्कल रोड दे वाली लेन ब्रिजेवियाजिया से उठावल जाए और भोषों के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टूडे 8:11 AM रॉय रोड फ्लोरियाल में 62 बरिस के 67 अनों के श्री सत्यानंद राज सन्मुखिया जिनकरा सब कोई मतन नाम से जस्ती जानत रहलन जा गुजरगर हवन उनकर माती आज दिन के 12:00 आज दिन के 12:00 उनकर घरे रॉय रोड फ्लोरियाल से उठावल जाए और क्रियाक्रम खातिर इजी दो होज फ्लाक के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टूडे 8:12:30 PM रॉय रोड प्लेन बोआ लिस्कालिये में 83 बरिस के 83 अनों के श्रीमती ज्ञानती गोइंदो जिनकरा सब कोई ज्ञानती नाम से जस्ती जानत रहलन जा गुजरगर हवन उनकर माती आज दिन के 11 बजे आज दिन के 11 बजे उनकर बेटा मुकेश बलदेवा के घरे रॉय रोड प्लेन बोआ लिस्कालिये से उठावल जाए और प्लेन माइयों की शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टूडे 8:11 AM शिवाला रोड लावंचुआ में 73 बरिस के 67 अनों के श्री पूरन लचन जिनकरा सब कोई रमेश नाम से जस्ती जानत रहलन जा गुजरगर हवन उनकर माती आज दिन के 11 बजे उनकर बेटा सुदेश लचन के घरे

शिवाला रोड लावाचुआ से उठावल जाए और मेजिन कौदेमास के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टुडे एट 11 AM। रामदीन लेन और घरे काटों ओकुले में 44 बरिस के कारण काथों के श्री प्रेम किशन मनराज जिनकरा सबको विक्की नाम से जस्ती जानटलन जागुजर गढ़ हवन उनकर माती आज फजीर के नौ बजे उनकर घरे रामदीन लेन और घरे काटों ओकुले से उठावल जाए और बिगाहा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन टूडे एट 9 AM। आर एरोसलेन प्लेन दे पपाई में 47 बरिस के 47 बरिस के कारण से टोंके श्री सुरेंद्र भिकारी जिनकरा सब कोई अजय नाम से जस्ती जानटलन जागुसरगर हवन उनकर माती दिमास 24 मई के फजीर के 10:10 उनकर घरे एरोसलेन प्लेन दे पपाई से उठावल जाए और क्रियाक्रम खातिर प्लेन दे पपाई हुए के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रोमेशन ऑन संडे एट 10:30 AM। शोकग्रस्त परिवार के प्रति हमने के सहानुभूति बातें।

0: नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती है पूजा गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। जो भी है बस इसी पल में है। जी हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम, जहाँ पर सवालों का नाश्ता और आपके जवाब 4028085 पर या फिर 5251700 पर आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुने, और सवाल कुछ इस प्रकार है, बिना लेखनी के लिखता है, बिना पैर के चलता है, टिक टिक की आवाज करती है, बताइए क्या है वह। बिना लेखनी की लिखता है, बिना पैर के चलता है, टिक टिक की आवाज करती है, बताइए क्या है वह। चलिए इसी के साथ एक और गीत आप सभी के नाम और 4028085 पर आप सभी का इंतजार है। चलिए बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चलिए सुनते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्ते जी।
1: नमस्ते पूजा जी,
0: कैसी हैं आप? शोभा जी,
1: मैं ठीक हूँ।
0: आपका स्वागत है गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में, और आपके पास क्या जवाब है?
1: घड़ी।
0: घड़ी
1: जी हाँ।
0: फिर से सुनिए, कुछ इस प्रकार है,
1: कैसे कहते हैं घड़ी या घड़ी?
0: एक मिनट, मैं आपको फिर से सवाल सुनाती हूँ। बिना लेखनी के लिखता है, बिना पैर के चलता है, टिक टिक की आवाज करती है, बताइए क्या है वह। बिना लेखनी के लिखता है, घड़ी तो नहीं लिखता। कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, उसके लिए बहुत धन्यवाद, शुभ दिन। एक और श्रोता है लाइन पर, चलिए उनको सुनते हैं। हेलो
2: हेलो, गुड मॉर्निंग पूजा जी।
0: गुड मॉर्निंग आशा जी, कैसी हैं आप?
2: मैं अच्छी, और आप कैसी हैं?
0: मैं भी बढ़िया जी। और सवाल तो आपने सुना ही होगा, और आपके पास क्या जवाब?
2: तो दिमागी कसरत बोल रही है शायद, टाइपराइटर।
0: सही जवाब दिया है, और आपको कहेंगे ब्रावो, और भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा जी, कुछ कहना चाहती हैं?
2: बस यही कहूंगी कि आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, शुभ हो, क्योंकि कल मेरे यहाँ बारिश थी, आज सुनहरी धूप खिली हुई है। तो जितने भी लोग अभी बच्चों की स्कूल जाने के लिए तैयारी करे, मैं भी और मेरी माता जी भी करी है, तो भागा दौड़ी करिए, नौकरी पर जा रहे, तो आप सबको कहूंगी शुभ दिन, और सबके मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए शुभ प्रभात।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी शुभ दिन।
2: ओके जी,
0: चलिए बढ़ते हैं एक और
3: गर्मा गर्म नाश्ता
0: सवाल की ओर।

ऐसी क्या चीज़ है जितना अधिक नाप लेते हैं उतना ही वह पीछे पीछे छोड़ जाते हैं? ऐसी क्या चीज़ है जितना अधिक नाप लेते हैं उतना ही हम पीछे पीछे छोड़ जाते हैं? ऐसी क्या चीज़ है जितना अधिक नाप लेते हैं उतना ही हम पीछे पीछे छोड़ जाते हैं? 4028085 पर ऐसी क्या चीज़ है जितना अधिक हम नाप लेते हैं उतना ही हम पीछे पीछे छोड़ जाते हैं?

0: देखते हैं कि कौन है लाइन पर। हेलो हेलो,
1: हेलो, नमस्कार पूजा जी।
0: नमस्कार बसंती जी, कैसी
1: जी
0: हैं आप? और
1: मैं ठीक हूँ पूजा जी।
0: आपके यहाँ मौसम कैसा है?
1: मैं मौसम सुहाना है।
0: और खाना भी खा लिया आपने?
1: जी जी
0: नाश्ता
1: खा
0: कर
1: लिया।
0: लिया? और
1: जी,
0: बताइए, आप जो हैं, सवाल जो मैंने अभी पूछा है, प्रश्न जो अभी पूछा है, आपके पास क्या जवाब?
1: मैं सोचती हूँ कि वो है उम्र, हमारा उम्र।
0: उम्र?
1: नहीं,
0: नहीं, गलत जवाब। कोई बात नहीं, आपने
1: हमारा
0: कोशिश
1: पैरों
0: की।
1: की छाप।
0: पैरों की छाप, यानी हमारा जो है कदम। आपने सही जवाब दिया है और आपको बधाई हो।
1: थैंक यू
0: और
1: पूजा जी।
0: ऐसे ही हंसते रहे और आपको कहेंगे शुभ दिन। चलिए बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर।

समय के अलावा वह क्या चीज है जो फिर से वापस नहीं आता? समय के अलावा वह क्या चीज है जो फिर से वापस नहीं आता? 4028085 पर।

0: ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।
0: ऐसे नहीं, बोलो मैं।

0: चलिए लाइन पर एक और श्रोता है, उनको सुनते हैं। हेलो हेलो,
1: बोला पूजा जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक, और आप कैसे?
0: मैं भी ठीक। आपका शुभ नाम?
1: राजेन लक्ष्मण लफलोहा।
0: राजेन लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है। और आपके पास क्या जवाब है?
1: उम्र।
0: उम्र?
1: लाल।
0: नहीं, ये गलत जवाब है राजेन जी। कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कहेंगे शुभ दिन ना।

0: चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी सुनते हैं। हेलो
1: हेलो पूजा जी।
0: नमस्ते जी, कैसे हैं आप
1: जी? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक। और राधा जी, आपके पास क्या जवाब है?
1: जी मैं कोशिश कर रही हूँ, हमारा बचपन।
0: बचपन नहीं, ये भी गलत जवाब। कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: ओके धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए लाइन पर श्यामा जी आ गई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। श्यामा जी नमस्ते, प्रणाम।
2: प्रणाम आपको पूजा जी,
0: कैसी हैं आप?
2: हाँ कहा ना, उतनी तबियत आजकल ठीक नहीं रहती।
0: जी जी जी जी जी, फिर भी आप हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुन रही हूँ, अच्छा लगता है सुनने के लिए आपको, आपका प्रोग्राम सुनने के लिए अच्छा लगता है ना, क्योंकि यही तो हमारा सहारा है ना, रेडियो ही हमारा सहारा है। तो मेरा जवाब है भरोसा या विश्वास।
0: और आपने सही जवाब दिया है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी।
2: आपको भी धन्यवाद, शुभ दिन आपको।
0: शुभ दिन आपको भी,
2: आप अच्छा से अपना दिन बिताएं।

0: धन्यवाद,
1: क्या कहेंगे ना हम। ओके, तो कार्यक्रम में हम भाग लेते रहे, सुनते रहेंगे आपको, और अच्छा लगता है आपको सुनने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा।
1: एक ही दिन तो आती हैं, पर सभी का मन मुग्ध कर देती है आपके गानों, जो है करना प्रिय होते हैं, कानों को अच्छा लगता है, दिल में उतर आता है, दिल भर जाता है, दिल को छू देता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी, और आपको भी जब भी हम सुनते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
1: हाँ जी, अच्छा है, अगर सीखते हैं तो अच्छा है, अगर लाभ है तो ले लेना चाहिए, और नहीं लाभ है तो उसे एक तरफ फेंक देना चाहिए।
0: जी अवश्य,
1: कहते हैं ना, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे छोड़ दो, जाने दीजिए उसे ना। तो जो अच्छा लगता है उसे अपनाइए, और जो नहीं अच्छा लगता उसे छोड़ दीजिए, एक तरफ कीजिए उसे ना। ग्रहण करने को तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, और कैसे जो नहीं ग्रहण कर सकते उसे त्यागना चाहिए, उसे नहीं साथ में रखना चाहिए।
0: अवश्य, ये तो आपने सही कहा।
1: ओके,
0: शुभ दिन आपको।
1: शुभ दिन आपको बराबर।
0: चलिए एक और प्रश्न की

कौन है वह जो आदमी के बीच दुश्मनी कराती है और पुनः दोस्ती में बदल देती है? कौन है वह जो आदमी के बीच दुश्मनी कराती है और पुनः दोस्ती में बदल देती है? क्या है वह? चलिए बताइए 402-808-5 पर।

0: तो चलिए फिर से आ गई हमारी प्यारी शोभा जी, आपका स्वागत है।
1: नमस्ते पूजा जी, फिर से।
0: नमस्ते जी, फिर से। चलिए बताइए, आपके पास क्या जवाब?
1: मेरे पास वो सबके पास है।
0: अच्छा, बताइए।
1: वो है उसके मुंह में जीभ।
0: मुंह में जीभ, और आपको कैसे पता चला?
1: तो वो ही है, इधर ढलती है उधर चलती है।
0: अच्छा।
1: वाव वाव करते हैं।
0: अच्छा जी, आपने सही जवाब दिया है।
1: और संभालने के लिए चाहिए ना।
0: और शुभ दिन आपको भी, और
1: आपको भी पूजा दी।
0: आपको कहेंगे कि भाग लेते रहिए, सुनते रहिए गर्मा गर्म नाश्ता।
1: आप भी इसी से प्रोग्राम लाते आनिए एमबीसी में, क्योंकि आप बहुत मिस कर, हम लोग के बहुत मिस करती हूँ आपको, क्योंकि आप एक ही बार आते हैं, कैसे वो क्षमा जी कर देते, एक ही बार आते हैं, एक ही बार प्रोग्राम करते हैं। तो और प्रोग्राम आनिए पूजा जी,
0: अवश्य
1: में हम वो देखते हैं ना, भोजपुरी में वो खाना खजाना वो पकाते हैं ना, ऐसे पकाते हैं कि मुंह में पानी आ जाते हैं।
0: धन्यवाद।
1: तो फिर से और प्रोग्राम आनिए पूजा जी, हम आपको वेट करते हैं।
0: अच्छा जी,
1: आपको सबको सभी को पसंद करते हैं पूजा जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद,
1: क्योंकि आप बहुत मीठी बोलती है आज, बहुत अच्छी पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी डे।
0: आपको भी शुभ दिन।
2: कल तुझको देखा था,
0: पल पल दिल के पास, हम आप सभी के दिल के पास ही रहते हैं, तभी तो चले आते हैं कहाँ पर। जी हाँ, गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में चलिए बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर, ध्यान से सुने।

0: आप चाहे कितनी जगह बदल लें, फिर से सुनिए, आप चाहे कितनी जगह बदल लें, वह डाकिया आपका पता लगाकर ही रहेगा, उसका नाम क्या है? आप चाहे कितनी जगह बदल लें, वह डाकिया आपका पता लगाकर ही रहता है, उसका नाम क्या है? फिर से दोहराती हूँ, आप चाहे कितनी जगह बदल लें, वह डाकिया आपका पता लगाकर ही रहेगा, उसका नाम क्या है? चलिए बताइए 4028085 पर और 5251700 पर बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। आप सभी के पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भाग लेने के लिए। चलिए लाइन पर एक श्रोता हैं, उनको मौका देते हैं, अवसर देते हैं। नमस्कार।
1: हेलो, नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते धनेश्वर जी, कैसे हैं आप? बड़े दिनों के बाद आए हैं आप।
1: हाँ तो कोई बात नहीं। तो बहन जी,
0: जी
1: तो उत्तर देने से पहले आपको मूड बनाने के लिए एक लाइन सुनाऊंगा।
0: चलिए बताइए।
1: एक शराबी था, वो हर रोज जब शराब पीने जाता तो पास में एक शिव मंदिर था। वो शराब पी कर आता और भगवान शिव को देखा और हाथ जोड़ कर जाता था। एक दिन पुजारी ने भगवान शिव को उठाकर गणेश जी की मूर्ति रख दी। उस दिन भी शराबी देवी की तरह आया तो उसने अचानक देखा कि गणेश जी है, तो बोला, छोटू पापा को बोलना मैं आया था। तब पुजारी बेहोश हो गया। तो वो जो उत्तर आपने, वो मेरा जवाब है मृत्यु।
0: मृत्यु
1: और वही थे यमराज।
0: नहीं, ये गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी अगर आप फिर से सोचे, कोई जो है दिमाग में कोई जवाब आए, तो फिर से फ़ोन कीजिए और आपको कहेंगे धन्यवाद भाग लेने के लिए।
1: आपको भी धन्यवाद। मेरे ख्याल से तो अब दिमाग में कुछ नहीं आएगा।
0: नहीं, आपको कहेंगे शुभ दिन, आपने कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन
1: आपको
0: रहे हैं,
1: भी धन्यवाद हमें मौका दिया,
0: धन्यवाद। और आप सुन रहे हैं गर्मा गर्म,
2: गर्मा गर्म नाश्ता।
0: चलिए बताइए, वह आप चाहे कितनी जगह बदल ले, वह डाकिया आपका पता लगाकर ही रहेगा, उसका नाम क्या है? बताइए।

0: चलिए लाइन पर एक श्रोता है, उनको सुनते हैं। हेलो, खांसी हो गई है आपको?
1: नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते जी, कैसी हैं आप? देख रही हूँ आप खांस रही हैं। बताइए कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ।
0: अच्छा, ठीक है, ठीक रहना चाहिए।
1: क्लाइमेट चेंज की वजह से
0: मौसमी जुकाम हो गई आपको? कोई बात नहीं, आप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पी लीजिए, है ना? चलिए बताइए, आपके पास क्या जवाब है देवी जी?
1: तो शायद हमारा कर्म।
0: शायद हमारा कर्म, कैसे पता चला आपको?
1: ऐसे ही हम जैसा कर्म करेंगे वही हमारे पास लौट कर वापस आएंगे।

0: सही जवाब दिया है आपने देवी जी, और आपको कहेंगे बधाई हो और दिमाग सही लगाई आपने।
1: शुभ दिन और हैप्पी वीकेंड
0: आपको भी। शुभ दिन, बाय बाय। चलिए अब हम बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर।

वह क्या है जो एक आंख से अनेक को एक करने में सक्षम है? वह क्या है जो एक आंख से अनेक को एक करने में सक्षम है? 4028085 पर।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार पूजा जी।
0: नमस्कार उमा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। आप कहाँ से बोल रही हैं?
1: रोजबेल से।
0: रोजबेल से? और रोजबेल में मौसम कैसा है?
1: इधर सुहाना है मौसम, और उधर कैसी है?
0: अभी तो हमारी यहाँ भी सुहाना है। आप जो आ गई हैं,
1: चलिए
0: बताइए आपके पास क्या जवाब?
1: हो सकता है सुई नीड।
0: हो सकता है सुई नहीं जी, ये तो यही है।
1: एक आँख है।
0: हाँ जी, और सबको मिला देती है।
1: हाँ।
0: और आपने सही जवाब दिया है उमा जी, और आपको कहेंगे बधाई हो।
1: बहुत धन्यवाद,
0: और शुभ दिन आपको।
1: आप रहिए, प्रोग्राम में सही बढ़िया रखिए।
0: धन्यवाद धन्यवाद, और आपको कहेंगे एक बार फिर से शुभ दिन। चलिए अब हम इसी के साथ गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं।
2: गर्मा गर्म नाश्ता।
0: जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे। यूं ही ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे इस रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। ऐसे ही कुछ बेहतरीन कार्यक्रम लेकर आएंगे आप सभी के नाम। बस सुनते रहिए और गुनगुनाते रहिए। अब समय हो चला है बढ़ने के लिए हमारी धरोहर कार्यक्रम की ओर, और आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे। 9 बजे समाचार होंगे, समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम, और मेरी ओर से आप सभी को अलविदा। जी हाँ, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। पूजा की ओर से आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन। अभी के लिए चलिए सुनते हैं हमारी धरोहर कार्यक्रम, हमारी प्यारी किरण जानकी जी द्वारा। चलिए सुनते हैं।
3: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
4: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने गांछी पर मधुमक्खी पालन के चर्चा कर जा। पोलैंड और बेलारूस में गांछी पर मधुमक्खी पालन अमूर्त विरासत के सूची में शामिल हो गल बा। मॉरिशस में भी ई जो मधुमक्खी के पालन है वो बहुत जोर ले ले जाता। लेकिन एगो दिन बा जबकि ई दिन के सम्मानित करल जाला, जेके बोलल जाला बी कीपिंग कल्चर, यानी मधुमक्खी के पालन। और उ दिन है 20 मई, अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन दिवस। ई कार्य कौन शर्त पर अमूर्त विरासत सूची में शामिल होल बा ICH लिस्ट में पोलैंड और बेलारूस द्वारा चला देखी जा। मधुमक्खी पालन के पीछे ज्ञान, हुनर और अभियान के साथ साथ परंपरा, रीति रिवाज, विचारधारा सब कुछ आवेला, जेकर जरिए गांछी में मधुमक्खी के छत्ता या जंगल में भी जंगली मधुमक्खी के छत्ता के खाली करल जाला। गांछी में मधुमक्खी लोग के आकर्षित करे खातिर मधुमक्खी लोग के विशेष ख्याल रखल जाला, और ऐसा माहौल पैदा

0: करल जाला जेकर से उ लोग के प्राकृतिक जीवन में कोनो हस्तक्षेप नहीं होई। गांची में मधुमक्खी के पैदावार करे होला लोग के इतन को मकसद नहीं है कि उ लोग जस्ती से जस्ती मध सकियन से पैदा करे, बल्कि यही फर्क है आम मधुमक्खी पालक और गांची पर मधुमक्खी पालक करे होला के बीच। गांची पर मधुमक्खी पालन खातिर चाहिए विशेष ज्ञान और पूरा रूप से पारंपरिक तरीका और औजार के इस्तेमाल करेगी। गांची के मधुमक्खी पालक लोग खातिर ई जिंदगी भर के एगो काम है। ई लोग ई काम सीखे में और ई काम के अपन जो नवा पीढ़ी बा उ लोग तक पहुँचावे में बहुत जोर देवे रंजा। और मधुमक्खी और प्राकृतिक वातावरण के जो सीधा संपर्क बा ओके बहुत अच्छा से समझेलन सा। और नियमित रूप से उ लोग मधुमक्खी और उ लोग के इकोसिस्टम पर जानकारी हासिल करेलन सा। सामाजिक प्रथा, खान पान और पारंपरिक दवा भी एकर से जुड़ल है। आगे के जमाना में ई एगो पारिवारिक कार्य रहल, मतलब कि ई एगो परिवार के सदस्य के बिजनेस रहल और एक बहुत ही भाईचारा के भावना से करल जात रहल जो उ लोग दूसरा सदस्य के सिखायन जा। लेकिन आज ऐसा ग्रुप बनावल जाता जहाँ पर उ लोग के ट्रेन करल जाए, उ लोग के ज्ञान के आदान प्रदान करावल जाए और उ लोग सिखन जा ई काम के आगे बढ़ावे। बेलारूस और पोलैंड ये दोनों देश में आम जनता समुदाय लोग गांची पर मधुमक्खी पालन के प्रथा जिंदा रखत हवन सा। सदियों से चलल आल ये प्रथा साल भर के मौसम में चलेला। ये मधुमक्खी पालन के दौरान कितने सामाजिक प्रथा मनावल जा रहा, जैसे मद के फसल के बाद मद के बांटे के और फिर ओकर से मोमबत्ती बनावे के, और ये गतिविधि में औरत, लड़का और पुरुष सब कोई के शामिल करा जाला। और ये रहल बेलारूस और पोलैंड में गांची पर मधुमक्खी पालन जो कि यूनेस्को के लिस्ट पर अंकित करा गल बा। और एकर से सकब्जा हमनी प्रेरित होके बहुत ही प्राकृतिक रूप में मधुमक्खी के अपन मध पैदा करे में मदद करे। कहे कि बोलल जला कि विश्व में जब मधुमक्खी मर जाए त यहाँ पर सब वनस्पति सब फूल सकी मर जाए। कहे कि उ लोग ही पोलैंड के एगो जगह से दूसरा जगह पहुँचावे न सा। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

0: 119 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, समय सुबह के 9 बजे है। आए मिलते हैं पूजा सुकालू से, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार पूजा।
2: नमस्कार विदिता, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मॉरिशस की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इथियोपियन एयरलाइंस को 15 जून से 30 सितंबर तक की अवधि के लिए एक अस्थायी ऑपरेटिंग परमिट प्रदान किया है। इस दौरान कुल 30 उड़ानें संचालित की जाएंगी, यानी प्रति सप्ताह 2 उड़ानें। जून महीने से आइबेरोजेट मैड्रिड से प्रति सप्ताह 1 उड़ान संचालित करेगी। जुलाई में वर्ल्ड टू फ्लाई भी इसी तरह की साप्ताहिक सेवा शुरू करेगी। बेलिया पोम्पोनेट में एक स्थल का दौरा किया गया, जो देश के ज्योमेट्रिक पास पर स्थित 21 लक्ज़री विला के विवादास्पद परियोजना से संबंधित है। ये जोन पहले ही गंभीर रूप से कोस्टल इरोजन से प्रभावित है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की कमी की निंदा की जा रही है। स्थल का दौरा कर रहे लोगों के हस्तक्षेप के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने अंततः परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले एक पूर्ण एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की आवश्यकता रखी। क्यूपिप कॉलेज में आज कोई पढ़ाई नहीं चल रही है। कॉलेज में कार्यरत फिजिकल एजुकेशन के प्रमुख और शिक्षक चंद्रदेव सिंह जादू सिरू के अचानक निधन के बाद क्यूपिप कॉलेज द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में सूचित किया गया है कि आज शुक्रवार 22 मई को कक्षाएं नहीं चलेंगी। चंद्रदेव सिंह जादू सिरू को एक अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए सगे संबंधी व कॉलेज के कर्मचारी एकजुट हुए हैं। विदेश में यूएस के विदेश सचिव मार्को रूबियो ने कहा है कि क्यूबा अमेरिका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है और एक शांतिपूर्ण समझौते की संभावना अधिक नहीं है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ने क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति रॉल कैस्ट्रो पर 1996 में 2 विमानों को गिरने और अमरीकी नागरिकों की हत्या करने के मामले में हत्या का आरोप लगाया है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार और शुभ दिन।
3: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: आज की चर्चा।
1: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज की चर्चा कार्यक्रम में स्वागत है आप सबों का। और आप जानते हैं कि आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन हम ज़्यादातर कानूनी जो बातें होती हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हमेशा की तरह हम आज भी उसी विषय को लेकर आए हैं। और आज के हमारे जो मेहमान हैं, चलिए उनसे मिलने का समय हो गया है। तो आज के हमने के संगे हमने के मेहमान हुए एक बार फिर हमने के वकील कपिल देव रघुनंदन जी, नमस्ते।
2: नमस्ते जी,
1: कार्यक्रम एक बार फिर से स्वागत कर रहे थे लोग के।
2: शुक्रिया।
1: और हम यही बोलब कि हमने के पिछली बार जो रहा जो हमने लोन पर बतियेले रली जा, ओकर में अभी बहुत कुछ बाकी रह रहल। तो आज वही जो टॉपिक बा ओके हमने पूरा करब जा। तो हमने के जितना भी श्रोता लोग हमन जा जो कुछ भुला गए हैं जा, तो हम थोड़े से मांग करब कि कुछ ना कुछ रिकैप हो जाए।
2: अच्छा, मेर्सी बहुत। जाने ना एक हाँ सकेला एक बार हमने के भाई बहन लोग जो सुन ले हुई प्रोग्राम वहाँ होला, कोनो भाई बहन शायद नहीं सुन ले हुई, तो फिर एगो रिकाप करब सर, तो शायद उन लोग के भी एगो को मजा एगो को से नियर मिल जाए। अरे हमने हो वाला बात कर रही सर, लोन। लोन के मतलब अपन मंगत हो मांगत हो, अभी देखो
1: उधारी
2: उधारी। अरे हमने बोते आज के दिन देखत देखल जाला कि ये अपन लोन मांगे के ये एगो जाफे ओब्लिगेटो हो गल बा। जैसे सब भाई बहन लोग जानेला कोनो एगो लौते प्लीज तोहरा मन हो करे के या कोनो भाई होनो वाशो सब देखब जो सब ये ओब्लिगेटो होल बा पैसा मांगे के। बस कि काहे पैसा सब कोई के हाथ में तो नहीं बा, न घर में बा, न लाभक में, न कुछ बा। अब तोहरा मन बा एगो कुमा जे एगो है एगो पोजे करे के। अब एगो पोजे करे के शायद जो साले तोहरा मिलेल बा ऊ कुमा जे कम बा। आज के मिलता हो इतना बड़ा बड़ा पैसा, ये सिर्फ देशवा में नहीं है,

0: दूसरों देश में कि पैसा उतना नहीं आज जैसे बोले सन लावी जीवसी लोग
1: बहुत ज्यादा महंगा हो गलबा।
0: हाँ तो देखी ना सर हमने अब एगो कुमार जी भाई बहन ओके मन हुई लंसे करे के एगो प्रोजे एगो बिजनेस या गो घर बनाए के जैसे हम दिखले रही सर या एगो रेनोवेशन करे के वो घर या एगो जमीन खरीदे के। और सबसे बड़ा हर माँ बाप की इच्छा ये कि कब ओकर लड़का के भेजी दूसरा देश पढ़े
1: के लिए
0: के कर संगे बा कब उतना पैसा कब HSC कर देबा मिलियों लगेला दूसर देश में जाए के कहूँ जाइब अंग्लेतर जाइब ला फ्रांस जाइब ऑस्ट्रेलिया जाइब
1: अब का बने के रहला तो घर में तो और भी ज्यादा खर्चा
0: और ज्यादा। हाँ तो ये फैसिल नहीं अभी एगो आदमी के कुमार जब छोटा सा छोटा पैसा 3 मिलियन नहीं रही तो वो नहीं सके कुमार जब वकील के है कुमार जब कर या
1: पहले के जमाना में रहा जितना तेल उतना अचार।
0: हाँ, हाँ, जरूर जरूर।
1: अभी कौन सी हो गल बा अभी फुजिदिया चला मतलब सब कोई बोलता कोई बात नहीं तेल नहीं बता अपनी फुजिदिया किन ले ला चा एक बोल जला पैसा प्रीति करे के।
0: हाँ,
1: और अभी के जमाना में जो भी बात करत हुआ पढ़ाई के तो जहाँ हमने शादी भी बोली ला जाता सब कोई पैसा प्रीति लेके शादी करा था
0: खूब बोल रहा है शादी की जैसे बोल अलीगो शादी के जब एगो माँ बाप अपन बेटी की या बेटा की शादी करे था तो के चला हॉल चाला खाई पिए के दे के सब सब कब गनब तो ओके मिनिमम चाहे ला मिलियो
1: एगो एगो शादी आज सकब जब बोले एगो लग्जरी हो गल बा।
0: हाँ,
1: हाँ, ना हाँ, आगे शादी होवत हल जितना रहल उतने में शादी होवत हल अभी जब शादी होला तो सब कोई के बताए खातिन बड़ा बड़ा हॉल बड़ा बड़ा डेकोरेशन अब तो यहाँ तक कि अब आजकल के दूल्हा तो हेलीकॉप्टर में भी आवेला।
0: तो शर्मा खूब बोल रही शादी के विषय में मैं दूसरा
1: लेकिन बात हर आगे करब तो अच्छा बात बा लेकिन जब लोन लेके सब चीज करब तो अपन कपार में कितना बड़ा देख डालत हुआ एक नहीं नहीं सोचे लंजा।
0: हाँ अरे जैसे बोले एगो छोटा सन है सदिया के विषय में बोल रही हैं। हाँ शादी तो कुमार जे एगो है रहल एगो लेपोक आदमी बहुत शादी करे थे संगे अब एगो लामो हो गल बा जीवोस शादी करत आदमी आज काल जीवोस हमने की तक हम तक
1: आज कल जीवोस भी सेलिब्रेट करत हो जा।
0: हाँ
1: देखो काटत हो जा देखो आशो हुआ था
0: अब एगो जीवो नहीं एगो जीवो उसके करे चाहे ना देखो वकील के पे ये करे गो आपू या भूखा की ना कब सब लागो हर एक सुई काश नहीं लगेला। हाँ। मैं ये भी देख पा कभी एगो आदमी कुमार एक बार जिनसे शादी कर ले बाकी पैसा चाहे वो के नहीं बात जीवोस करे के तो जाना वो का करे बेचारी वो भी या बेचारा वो भी जाना जा एगो लोन मांगेला देख ला हर चीज में अभी के लिए पैसा के कुमार जा और खोटना अभी कोई संगे नहीं बा पैसा के कुमार जा एगो काम करे हाली जैसे एगो कुमार जी देख ले रही सर पहले के जमाना में रहल एगो मनी लैंडर्स आख वो रहल जैसे हमने बतले सा कासे कासे लोग के का करे पैसा फुते करे का पैसा फुते करे
1: जमीन
0: जमीन अंगाजे कर दे और जहाँ 100,000 मांगत हुआ वो बोली 200,000 डाल पपियवा में तब हम तो के दे पैसा न तो नहीं दे मैं आदमी के मजा का उबलीजे हुए पस पैसवा चाहत लोनवा चाहत तो से मांगे के तो होल मैं शर्मा का होल गुवेनवा जोन पास कहलन सन देखता कि एगो कासे लोग मजे है दुमिने करे बस करलक वो जो लाइसेंस रहल सब रिवोक कर देलक अब हमने के मोनी लो लैंडर्स नहीं बा हमने के देश में
1: पैसा लेके रही तलाब मांग जा
0: अब पैसा। हाँ अभी नहीं दूसरा जगह बाएं हवारा देख ली सत्कार लाभ मांग आधे कल से दूसरा जगह के देवेला तो हमने बोली ला सर जहाँ अब जैसे बोल तुहरा मन हुई पैसा चाहे ला लोन चाहे का हो गल बा तो एगो अपैंट लेके एगो पैसा लेके बहुत सा आदमी जीरेक जाला लाबंक लाबंक एगो इंस्टीट्यूशन है वो देवेला पैसा मैं लाबंक छोड़ के और इंस्टीट्यूशन बा जैसे हमने देखब सब कब बोरोवर्स लैंडर्स कब आपसे देखब सर वो नहीं दिख रही सर बोला कंपनी है कंपनी भी रहेला कुमार जा कोनो इंस्टीट्यूशन भी बा ओकर कमो पोके लिसेंस बा दे के कुमार जा पैसा
1: लाइसेंस बा दिखा लाइसेंस बा पैसा बा उसकी पैसा दे मैं से चला लेते रे दे के।
0: हाँ तो ऊ देख लो सिर मां हां लेते रे ते चल भी करेला जे पैसा फेकला और भाई बहनियों में कोनो बोल रहे हम अभी देवत है तो के 100,000 में हम के होय तूने करिए होय 125,000 या 200,000 है ऊ में सिलमा नहीं डाली लेती हुआ नहीं डाली बस की कुमार जी नहीं ऐसा लगी भाई मेरी सब भी अभी तो कोनो मेम क्यों कर बा भाई बहनियों के वो भी सकेला नहीं दी तो हमने देखा सर इंस्टीट्यूशन जो रेको नहीं बा कि है पैसा प्रीति करेला वो लाबंक है तो लाबंक के देख लो पैसा फुते करेला अब हमने देखे ना सर कौन कौन खरीदे देख ले रही सर रहेला चाहेला कुमार जी लाबंक तुहरा पैसा दे। हाँ गई नहीं कि कुमार जो कर दरवाजा ठोक ठोक है तो तुहरा पैसा निकाल के देश मांग दे मंगल पैसा तो दे दिलक नहीं दे के आ गाड़ी हाँ जी गोल एग्जाम।

0: नहीं करेला अनुमजा थोड़ा कंपोजे करे मजे गोल एग्जाम होश तो फेल हो गई तो नहीं मिली आ जो पासे हो तो तुहरा सकेला एगो लोन दे तो खैतिया दिक्कत है सर ब्रेफ में जेनेराल में नहीं पहला चीज जाना हुआ मैंने जो बैठी तुहरा से पूछी ना कि बैठ गए वो कोरिया दिनवा चल गए पूछी ना का करे आल हुए तो बोले ना हम आल हई पैसा आला बैंक से मांगे अफैत मांगे तो बोले कौन सी खातिर आल हुए मांगे अफैत हुआ अब देखी सी बुझो एगो बिजनेस करी सिपाका ने कौन चीज करी तो वो देखी ऐसकी जो चीज हुआ वो के मांगा था पैसा फिया बाकी नहीं कोरेग बाकी नहीं पसी हर काली के जाफे है लाबंक नहीं खाली पैसा निकाल के पूछ में से ओके कुमार जी आदमिया के दे दे नहीं एक बार खरीदते दिखेला अब देखी वो जो पोजे हुआ कर ले हो जाए कि चीज करे खोजता ऐसकी कोरेग बा कि नहीं कोरेक बा पसी वो माने जो जो लोन लोन मैनेजर से हमने बोले सर वो तो अपने स्पेशलिस्ट है वो जाने ला कौन कौन केशों पूछी कौन कौन जाफे देखी और कौन कौन खीतिया चाहेला ताकि लाभों को ओके पैसा दे अब देखी कबो के मांगी तो पहला ओके बोली ना कि तर है कि अच्छा अरे एक तो पोसे कोरेक बा हमने एक्सेप्टे हई सर हई तो दे के पैसा मैं काम कौन करे ले तू तुर काम कौन ची करे ले कितना तो के महीना में पैसा मिलेला अब मंगले बहिया मिलियों के अब यहाँ काम करता वेंसैंक मिल रूपी पर मुआ के तो खाई पी आई के सब नहीं पहुँच गए तो कहाँ से हो गए पैसा आने क्योंकि पूछे ना ये सब तो एगो बोली के देखी कितना कर पैसा मांगा तो कर खीते अब कौन चाहिए तो ओकर देखेला ओकर अब मांगी बोले हम तो जान ले एगो जनरल मैनेजर यहाँ 50,000 मिलेला बोली बढ़िया फेलिसिटेशन बड़ी खुशी होली बस के सब कोई बोलेला वो लोग के वेंसैंक मिल मिलेला तू तो बोलते तो कि 50,000 मिलेला बड़ी खुश तू पे स्लिप दे तो पे स्लिप हुआ तो पे भाना में लिखल बा कितना मजा सब डिडक्शन छोड़ छाड़ के कितना कितना मिलेला तो उम्मीद देखी तो अब गनी कितना करी तो बोली हाँ यहाँ तो 50 मिल सी बोझो मिला था ओके तो बोली आली पे स्लिप हुआ तो दिले हुए कब पे स्लिप हुआ यहाँ दे दिले बा तो ओके एगो दूसरा चीज करी तो बोली अच्छा तू ई दिले हुए ने गो फेव बा न मैं इसके दूसर कुमार जी दे ले ले हुए दूसर से एक भानत में ओके देख ले ले ले बा मैंने जो कि नहीं जाके बोली ना तो कि पूछी देखिए देखिए पैसा ले हुए ले दूसर ले ले ले हुए कुछ कोई के धारत हुए तब जाते हुए दे या कौन सी करे को जत हुए बस कि एक बार छुपा हुए ला सब तक नहीं से बोल दे ना तो जाके कुमार जाओ कि हुआ बोल ले जेरे काली हम आ नहीं पैसा फंसे दूसर के धारी ला वो पैसा तो बोली को तो देबे नहीं करी बोली धारे ले अब कैसे सजावे नहीं से कले पे ये करे तो कैसे हई ला बंकुआ तो क्या के पैसा दे बस कि तब नहीं लोग कहता हमके कुमार जो पैसा से गल भी तू पे ये करे आलोस तो ओके देखे ला वो लौपते हुआ सिपा ले ले बा पैसा सकी पे ये करे कि नहीं तो देख ले लग सब चीज अब एगो चीज ओके बोली एगो बड़ा चीज भाई भाई के कब आवत है ये भी इस चीज जीवा में हमके यही एगो क्वेश्चन पूछलक अब लोन लेबा आज के दिन तो लाभक बोलेला कोरेक बासी बुझू हमनी तोहरा पे करब सर मैं तोहरा मिलेला 50,000 न हर महीना तो तोहरा हमनी के चाहला थत मिल उपी लाभकवा के पे करे के हमनी के उपमा जे है रूल्स एंड रेगुलेशन डायरेक्ट तोहर पैसवा जब तोहर पाई पाथो तोहरा पे करे एम्प्लॉयर
1: तब बेटा जाए
0: हुए से हमने के लाभकवा में तोहरा चाहेला यहाँ डिपोजिट करे के ऊ पैसा हाँ जी पे करे के तोहर पात हो पे करी लाभकवा के अब लाभकवा जीरे कैसे होवेला लाफे जिमुआ काट के ले लेवेला ओकर पैसा ऊ में तला जी फेंसवा जोन रहेला ई तोहर पैसा है देख ला लाभक एगो पहले ही सब नहीं रखल दिन दिन देखत उनसन लूपहोल कौन कानीचे जहाँ फेबलेस रखल तो कोई से करे के ई तो ये उतर लेकिन साफ है अब तू बोल नहीं बाप हमके मिलेला हो इतना 50,000 अब तू जीरे 30,000 हुआ जो पे करे कि काट देवे कैसे हम 20,000 में वे तो बोले हाँ तो ई कौवा में नहीं सकबे ओकर पॉलिसी है लाभकवा के वैसे कर पैसा हुए तू एगो पापिये सीए कर देवेला ओके नहीं चाहला हर महीना के पूछे के काटे के पेय करे के तस्वीर उ जिगे काट दे हुआ से जब हमने देख ले रही सर
1: हम एक सवाल से कब करे
0: थे हाँ जी पूछते
1: अभी हमने बोले थे जा कि पैसा जब हम ले ला जा तो ऐसा कंपनी है जहाँ पर सकबा लोन प्रेते ले पैसा ले जैसे लाभ मौक ले बा कोनो ऐसी चीज हो जहाँ से सकबा पैसा दे अब मान लो हम अपन बहन से पैसा ले ले हैं 100 मिल बोले देखो पापिए कर कि तू हमारे से 100 मिल पैसा ले ले हुए तो आजे उ पापियाबा अनरजिस्ट्रे हो गल कि एगो आबुए लागे गइली सा कि देख हमर बहिन हमर से 500 मिल ले लेबा और ओके चाहला आवत बरिस ले पे कर देके ना त उ जोन पैसवा बा अभी 500 मिलवा बा हम अपन बहिन से ले ले हैं और हमनी पापी अनरजिस्ट्रे कर देले हैं जा अब हम गइनी लाबांग में हम गे लाबांग पे पैसा चाहला त हौ जोन 500 मिलवा बा लाबांग जानी कि हम 500 मिल रुपी पैसा अपन बहिन से ले ले हैं
0: एगो जोली के

0: करता जब एगो काम करता एगो फीएम में तो कर पातों बोली कोरेक बा तुर लावी जुन बा हमने आश्रय करी ला सर तो एगो फीएम लेके आश्रय करी सी बोझो एगो मेडिकल इंश्योरेंस अब कल आदमी अमलाद हो गल तो चल जाइए क्लिनिक में या कहूँ
1: लासेंस
0: वापे ये करी तो यही ऐसने अनमन जब लाभंग देवेला पैसा तो बोल रहा चाहे ला तो के एगो लासेंस ले के और लासेंस वा जे तू के कुछ काल हो जल सी बोझो है गुजर गल दूसरा देखिला का करेला लाभंग सकेला मांगे एगो लासेंस देवी एक बगल पैसा दे बोले सिल्म हमके चाहेला एगो जीबिए समझ लें तुहर एगो जमीन रही
1: हाँ।
0: तो बोली वो जमीन के बिया गारंटी मतलब एगो लिपोटेक ले जमीन में जे नहीं सकल पे ये करे तो तुहर है जमीन सीजी करके बेच दे तो ई भी होमा देपा कितना पैसा मांगत हो तब लासेंस देवी आने गारंटी मांगी जीबियाँ में कि एगो लिपोटेक डाल द एगो है के एगो जीबिया के तब लिख दे आली तो दो तीन गो कृत्य देख ली सर और तीसरा कोर कोई तेवा जोन आवता गारंटी मांगता एगो आदमी के पोते गारं जैसे हमने बोल जा सर एगो आदमी दूसरा आदमी गारंटी करी या नहीं बताई सर लासेंस नहीं बोलत नहीं सर कि ओकर जिबिया गारंटी करी एगो आदमी खड़ा रही जे काल तू नहीं सकलक पे ये करे लबंकुआ के त लबंकुआ फुसवी करी हो गारंटी वा जोन आदमिया खड़ा होल बा तोहर ओके पे ये करे के
1: यानी कि हम गईनी लोन ले हम लेनी एक मिनियों के लोन ले गई नी और हम हमके बोलन सा कि एगो गाँव चाहेला तो हम बोली तो वकील जी हमारे एगो गाँव ची खड़ा हो जा तो तू अब गाँव ची दे बह हाँ लापे मिलेला इतना पैसा मिलेला सब कुछ ठीक बा दाल देला सब कुछ हो गल अब हम नहीं सकती पे करे तब पैसा तोहर कटाई
0: है क्या कटाई नहीं अभी देखब से कितना पापी भी ओके है कि भेजे के चैनल ये सब पहला चीज खड़ा नहीं हुई गाँव ची हमने तो एगो लिमन दोष सही सर कल हमके बोलब है भाई रघुनंदन खड़ा हो जाहु हमारे एगो ला हमके मन बा पैसा लेके हम बोली माफ करिए सब चीज बोलिए आके आके घर में खा उ लिया या एगो रिश्ते में बैठ के लिमन से खा लिप सर या एगो चाली मन से फिर
1: सर गाँची
0: खड़ा नहीं गाँची खड़ा में बहुत सा रिस्क बा
1: ढेर झंझट बा
0: झंझट कभी वो आदमी या नहीं सुती हो गमट करता जो दिले बा अभी हम बोला नहीं का है तो हिया कब तू खड़ा होल बा सब टेम सब जो कालित बन वो लाबंकुआ बोली तो वो कोंतरावा के टेम हुआ ओ गारंवा रिस्पॉन्सिबल बा बोले ला वो में इन दई बोले हाँ माफ करिए अंगले बोले लगे जे ओ नहीं सकलक पे करे देबी तेवा जी पैसा मंगले बा तू का गांची खड़ा हुआ तो तोहरा चाहे ला पे करे के फिनाल तक ओकर लेते रहे ओकर कैपिटल पैसा और लाभ छोड़ के कुमा जे है के देबी तेवा के जोन पैसा मंगले बा गारंटी जोन खड़ा बा ओके पूछ विव करी बस वो तो जाने रहे खड़ा होल बा गाँची ओकर तक मजे ओकरो जमीन हो या कुछ भी हो
1: देने हो गल
0: हाँ यही तो एक दिन बोली ना बड़का इस बाक नहीं सब कुछ करे जहाँ लेने के देने हो गल इसी में बोली सब चीज करिए गाँची नहीं खड़ा हो या हाँ एक्सेप्शन बा एक्सेप्शन बा जहाँ मैं भी बा वो सब मैं कहाँ बिल बिल पैसा मजे रहेला खड़ा हो के
1: भरोसा नहीं रही तो कबू नहीं जाना गाँची खड़ा होके
0: कभी भरोसा में हम देख लेंगे बांछी आज से नहीं है
1: घर में भी खतरा बा
0: में भी खतरा है एक आदमी में भरोसा कर देला कल तोरा ट्राई कर देला भरोसा गिर गल भैया
1: हमके कोई बोली हमके कोई बोली जाके गांवची खड़ा है कि हम बोलो हमके वकील बाबू बोले बा गांवची नहीं खड़ा है
0: कि आओ खा लिया इहिया चा पी लिया मैं ई नहीं के खड़ा नहीं के का करेला लाभंग फुसफीफ करी गारंटिया के कब आदमी देवी तेवा नहीं पे करता तब ओकर में सब चीज ओके सिल्म कानून में ओके जनाए के जना हर छ महीना में अच्छा है ये बोले कि हर छ महीना में लाभंग चाहेला भेजे के एगो ले देवी तेवो हिया और जे गारंटियो हिया कि देख ले ले रहे से बोझो एक मिलियो इतना पे करे गलबा इतना रह गलबा इतना आल तक पेयल बा समझो कर बैलेंस जैसे हमने बोला सर कि कितना के हर छ महीना में ई एगो ओब्लिगातो जैसे हमने बोला सर आउटस्टैंडिंग डेट ओके बा पे करे के तेल आरो के चाहे लागंजमा करे के है गाँव के पे करे के पसके ऊ देवी तेवा जो पैसा ले ले बा नहीं सकता पे करे

0: लापे ही मिलेला तो खाली ओकर लापे ही कटाए पर जमीन जायदाद तो नहीं है बा तो ऐसा गाँव खड़ा होला कबू
1: नहीं दे पहला ये चीज लबों को पगला नहीं है ना बोले गाँव ची नहीं बकाल तो कि तोर का मुँह नहीं हो जाए और न तो कि पैसा मिलता अली को बोली के जैसे हो वाला दिख ले सर तोर कमो नहीं बा काम रल हाँ अब बिला गए कमुआ कहाँ से पैसा मिली तो पे करेगी तो हमने नहीं से कब से क्यों पे करे तो एगो खरीदे इम्पोर्टेंट लाभों गाँव के बोली गाँची हो तोर जमीन में कि नहीं सकी वो पे करे तो तू पे करबे तो का करेला अपन आबुका हुई के देख लेलक खेस के कुमार जब डाल देलक मस्तको थिया तो आई एगो सेजी से एगो सेजी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे हमने बोल सब मस्त कोर्ट के आवेला उकर सब कैसे दूसरा आदमी कंपनी से केला पे करे को घर जमीन उनके तो केसो आवेला लबार में हाँ। जहाँ सेजी हुएला तो वो जो गाँवा खड़ा रहल ओकर जमीन वहाँ सेजी करी वो लबकुआ ओकर के साइल आई हुआ और पूछे करी हमने एक दिन आपसे गोपोका में लाभ कैसे हुएला है कैसे एक मजा शुरू वाला एक आदमी के ओकर है जमीन उन नहीं
0: सकला के चक्कर में ढेर कुछ पड़ा था आज सीखेगी हमने क्या
1: हाँ नहीं नहीं कुछ ये अच्छा नहीं है जहाँ जैसे तू कभी है पूछत हुआ जोली जोली के शो भाई हम तो आप ऐसे करते हैं बस ये फिटिंग हुआ था कुमार जी एक बांध चीज में जो तू पूछत हुआ मैम के नहीं कही बा लोन बस ये कानून ऐसा नहीं वो चीज है बहुत बहुत सस्ती हाँ, हाँ,
0: हम समझ गए नहीं कहे कि एक जना आज एक काम कर रहा था और खाली लापे ही बा तक काल देखा था और कमागत नहीं सका था पे करी तो कुछ करी जाके हाँ, दिमिशों दीदी बोली हम काम छोड़ा था
1: हाँ,
0: पैसा कटाता
1: हाँ,
0: सब कुछ तो वो पे करता
1: नहीं सकी पे करे तो हम अपन आबू आबू का देख के बेचब कुमार जे है सेजी करके है इलाकू में तो हिया देख ल जब सेजी कर दिल हई तब सिबोजों एक मिलियों के कुमार जे हई ला डिफेरेंस बा पे करे के हऊ देबीते हुआ नहीं सकलक पे करे तो हिया एन मिलियों अरे घरवा हुई ओकर जमीन हुई कब बेचलक सिबोजों तीन मिलियों के गल बेचाल हुआ हाँ लबंकुआ ओकर एक मिलियों जो बैलेंस हुआ बा उ हुई ले और जो लेवेज बा दो मिलियों हुआ ज्यादा ओके हुई तू नहीं करी ओके चार ओकर गारंट छुआ गारंट के ओके हुई तू नहीं करे के ये तो बड़ी चीज बात पहला चीज है वो चीज सीखब माँ बाप ले ले ले झोली से एगो पैसा लाभंक से तो लाभंक हिया तो का करता लाभंक बोले कुरेक बा हम के ऐसी बोझों को बाप ले ले ले बा पैसा लाभंक से ओकर खई जमीन बा होई दे दे ले बा अरे हिया तो कोनो एगो बोली के जमीन वहाँ नहीं बा पैसा ले वतल पे करते लाभंक साची से हो रहा बापुआ जो ले ले रहल पैसवा लाभंकवा से आवंक ओकर दे पे करके मर गल के खेला बंक पुष्प करी हिया ती बुझों गाँव नहीं बा तमने के कानून में लिखल बा कि जोन ओकर लैका रखल हौ जोन आदमी फैते कर ले रखल पैसा उ मर गल ओकर लैकवा के लाभों पुष्प करी पैसा मांगे के एक बार बोली हम नहीं हमार बाप ले ले रहा हम नहीं बोले भैया तू से ऊँचे होवे तोर माँ बाप के या कोई भी हो मैं तोरा चाहेला पिए करेगी
0: अच्छा एगो सवाल है जो बा
1: हाँ बोला
0: माँ बाप लोन ले ला मान ला कि देहांत हो गल माता पिता के तो लैकवा उ घरवा में रहता जमीनवा जुनबा औगाजे बा न तो लाभोंग जुनबा उ लैकवा के पुष्प करी या लैकवा के बताए कि देख तोर माँ बाप ले ले रहल पैसा अब हमनी के पड़ता जमीनवा बेचे के कहे कि हमने के पैसा चाहला वापस नेसेसरी वाले लैकवा पर केस करी के ओकाय केस करी
1: हाँ आली ई बोलीला फर्स्ट की ओकर जेवी छे के ह जो पैसा ले मंगले रल आर मरगल ओकर लैका या कोई पत्नी भी होई की हो, कोई
0: अच्छा बोली लैकवा के तू सगबे पे करते पे कर नहीं तो अपने घर बेचा दिसा
1: हाँ ना तो हम सेजी कर दे भाई अरे एगो दूसरा चीज यही में बतियाई सा कि जेवी छे के विषय हुआ में बाप ले ले रहल पैसा लाभंक से नहीं सकत पे ये करे
0: हाँ।
1: अब हिया बा ओकर कुमा जे लैका लैका लोग के जमीन बा पवसी बपुआ तो छोड़ के चल गए रहल
0: हाँ।
1: लाभंक ओलो के लैकवा लोग के अब मन बा पताश करे के
0: हाँ।
1: हिया को पताश करे खोजत वन सन तब सीखलन सन या जनलन सन कि पैसा बपुआ ढारे ला लाभंक में एक नाम सिक्स इश्यू है हमने तो पोगा में एक बार
0: माना चार गो लैका बात
1: हाँ

0: चार गो लड़का बा, चार गो लड़का देसीदेल बा, अरे माँ बाप चटखोड़ के मर के चल गल बा, हाँ देत ले ले रलन सन, अब चलो हमने अपन पताश कर जन जन हमने के माँ बाप के पैसवा बा
1: तुहने
0: का अपने बोल नहीं सकियन सन करे उपतजवा उपस की एगो सिक्सेशियो में का तब ले जान जाए पूछी ना हुआ तो देखा गो कुमा जाए एगो ऑब्जेक्शन नहीं से बोलिया सर एगो ऑब्जेक्शन बा लाभों को एगो ऑब्जेक्शन डाली कि कम को हमर ओकर ओकर बाप ले ले पैसा अब वो लोग पताश करता तब लेक नहीं दियन सन हमर पैसा मन हमर मतलब लबंकवा के तो हमने आक्षेप ते नहीं है सर कि वो लोग पतजुआ करी तो देख ल सब जमीन सिक्सेशों में सब अपने हियाँ रगल और यहाँ तो बोले अरे बाप माँ बाप से छोड़ के मर गए हियाँ छोड़ दिलवा बड़का जमीन हमने तो पोपितर बनल सर।
1: अब अगर मैं ये भी बा कि आज मान ल कि जमीन की बात करत है जा कि माँ बाप जोन बा वो लोग एगो लड़का खातिर लोन लेलन सा एगो लड़का जो मान लो एक जना वकील बने गल बा पढ़ाई करे ओकर खातिर बड़ा लोन ले लेवन सा जमीन औगाजी करलन सा वो बाकी लइकन कुछ नहीं जानत हन सब लोग ना
0: जानी नहीं जानी हो लइकवा एक्सेप्टे रलन सन या नहीं एक्सेप्टे रलन सन की
1: बपुआ पिता चल गल त सब के बड़ी
0: सब के चला सब जीवचे के ओकरे नाम ह अफिडेविट दे सक्सेशन कब करल जाला त बोलल जाला ना कि ई हमर बाप मजे के शादी करे ल हमर माँ से तब चार गो लड़का हो रहा चार गो लड़का ऐते लेते हई स हमने के नमुआ ह समझ ओकर जेगीचे हो जाला तो उस जेगीचे वा कब हो जाला एक एक गो के कुमा जैसे बोझो बपुआ ले ले रहा लोन जैसे हाँ। बोला वकीलवा के वहाँ भेजे के तो हियाँ का होल हो लोग मेम की जानी या नहीं जानी चाहे ला चारों जोन बा लैकुआ पेये करे के कॉन्ट्रीब्यूए करे के एक बार हमने के बात देख लें सर बोली जाने ले हम तो वकील जी हम नहीं ले ले रही है कोई सू ये तो हमारे बाप हमारे भैया के दे ले रही है हमारे बहनिया के हम तो नहीं जाने ला हम नहीं भरब
1: हमारे बाप के तले का तू भी हो ना
0: हाँ तो ही यहाँ ओके चला भरी
1: जब लापौताज हो तो तुहरा अपन जायदाद में हिस्सा चाहिए तो जब लोन भरे के बाद लोन में हिस्सा का ही नहीं
0: और हियाँ जहाँ बपुआ तुहर तो अपन बाप है जो ऊ कर ले बा लोनवा के मजे इनका कर ले बा तो तुहरा चाहेला पेय करे के तो देख ल हियाँ ओके पेय करे के चाहेला या कॉन्ट्रीब्यूए करे के या देखी या न तो पताज नहीं है सकेला कोई उसकी बोले हमर पता हमर
1: मान ला उ लइको अपन घर किन के कहूं और चल गलबा चार गो लइका में से एक जना अपन घर किन के उ कहूं और चल गलबा ओकर जमीन जायदाद दूसर बा
0: हां कुछ नहीं बा मैं हियाँ कर बपुआ के लइका त बा न खाली तो घूमे बको नमुआ तो सिबोजो का नाम है रघुनंदन बपुआ के नाम है रघुनंदन रघुनंदन सखी छोड़ के दूसर देश जाए
1: हमर कहे कि मतलब ई बा कि चार गो बेटा में एक बेटा शादी करके घर बना के चल गल बा
0: एक बगल से पाले रहता
1: सिपाही बा हैया जमीनवा में तीन गो भाई रहता तो जब बाप माँ बाप चल गल लोन पे करे के बा तो हो जो एक बगल चल गल बा ओकरो छाना पे करे के
0: ओकरो पे करे चाहे ना ओकर नमुआ डाले के ना को पोताज हो वेला तो एगो प्लेट आप वे दही करेला ड्राफ्टी करेला तो दफ्तेवा में करी ना बोली ये ऐते लेते लदमी कुमा जे हमने के हई करत हई स पताश करत हई स अरे एगो बोली के जोन हौ चल गल बा एक बगल हई तीन गो भैया सके हो भैया के पूछ पीछ करे लाकू में पताश करत हई स ऐते तो उसे की बोले हाँ तू मांगत हुए हियाँ भी पेये नहीं कर ले हुए बपुआ के मर गल बा ओकर बगल हमने तो पेये कर नहीं सम तू पैसा दे तब तो बगल हियाँ जमीनवा तो के मिली
1: यानी कि कैसो भी कर बा जब लोन पे करे के बात आवेला तो नहीं सकबा कहूँ भागे परदेश में भी जाके बैठल रहबा हाँ। चला वहां से निकल के आके पे करेंगे
0: और नहीं आई ला देश में रही तो कि कातिल में डाल ले हुआ कर भाई वालों बोझा कि कातिल के पे कर दे कातिल खड़ा रही हुआ दितवा जो धारा था हुआ हुआ कैसे आई यहाँ काल जमीनवा में हाथ डाले खोजी कि कातिल के बीरो में हुआ लिख देवे ला सब भी हुआ भी सुमा में गो एंट्री कि हियाँ ऐतिल बा कैसे आल हुआ गल देखे अब कि कातिल भैया पैसा नहीं पे कर ले रहे तो रही बाप के कब मर गला लाभ के हे नहीं होने के मजे मैं जिम्मेदारी ले पेये कर हियाँ हूँ अमनी पेये करब सर तब हियाँ तुर पार मिली
1: बहुत कठिन बा
0: हाँ,
1: लोन लेवल हाँ। एकर में बहुत खतरा बहुत झंझट बा हाँ, सब कोई सोचेला कि लाभों गईला कोई बात नहीं जमीन घर औगाजे हो गल तब पैसा तो घरवा तो हमने के हो लोन पे करत हुआ कितना कोई लोन सोचेला अभी एगो एग्जाम दे ला जा शादी के एगो छोकरा एगो छोकरी खुशी होलन सा छोकरी जमीन किनल ना
0: हाँ।

0: शादी कर लन सा, छोकरा ओकर में घर बनेलक, या तो फिर एगो छोकरा जमीन किनलक, छोकरिया ओकर में घर बनेलक ना। तो अब एकर में जब एक बरिस के बाद जीवोस हुआ था तब भैया ला पता है कैसे से की हो।
1: एगो जूली सर हमने आपसे एगो
0: लोन की बात कर रही थी सर, हम लोन के लोन के मान ना दोनों जना शादी कर लन सा, लोन ले लन सा जॉइंट अकाउंट में ना। तो अब जीवो से होत फोन सा, तो ऐसन में कुंजे होइला
1: सैप हो जे कुमा जे एगो लोन ले ले होई मिशेवा शादी कर ले वंसन मिशे मैडम हो वंसन मिशेवा ले ले रल एगो लोन एगो जमीन में एगो घर में या आजूते करे के या कुछ भी लोन ले ले रल अकेले उबकत हुआ उस जमीनवा में मैडमवा कुछ नहीं बा के पे करे के काहे शादी करे के अगाड़ी उ ले ले ले रहल एगो लोन तो उ रिस्पॉन्सा वही में सेवा पे करे के अब उही में जिस्त हुआ अब शादी कर ले लन सन दोनों शादी के बाद उ मिशेवार मदम हुआ एगो लोन ले ले वन सन।
0: हाँ मान लो एगो घर खरीद लन सन।
1: हाँ एगो घर हुई एगो लोन लेके एगो घर खरीद लन सन तो दोनों ओकरे नाम मैट्रिमोनियल होम वो घर जहाँ रेजिडेंस जैसे हमने बच्चों कर घर हुआ जहाँ मजा खरीद लेबा। अब जे शादी के बाद ले ले वन सन तो वो घर हुआ में दोनों काहे चाहे ला पेये करे के वो घर हुआ के जोन मजे ले ले बा लोन हुआ ला दोनों के कॉन्ट्रीब्यूट करके पेय करे के चाहे
0: पेय करब सा। लेकिन अभी एक फोन कॉल बा ओके ले ले लाचा चला दिखे लाचा के होन हमने के संगे। हेलो नमस्ते।
2: नमस्ते वकील को भी नमस्ते,
1: नमस्ते और भैया
2: सभी सुनने वालों को भी नमस्ते।
0: नमस्ते भाई जी, नाम बताइए।
2: नमस्ते, दुगो सवाल बा पूछे के है।
1: बोला बोला।
2: एगो मान ले जाए पिताजी को जमीन छोड़ के गल, अब जब बंटवारा होता एगो भाई फ्लोटिंग चौज ले लेबा तो सकी बकरा आसानी से हो कि परिकर्जा भर के तब बंटवारा हो।
1: अरे पहला चीज फ्लोटिंग चौज हुआ भैया ले लेबा अपने नाम में है। अरे पस हो तीन गो भैया जोन बा जैसे बतियाली सर तो उ लोग कुछ नहीं जाने ला तब लेख हो भैया जोन फ्लोटिंग चौज हुआ के डिस्चार्ज नहीं करी मजे हो फ्लोटिंग चौज हुआ तो कुमा जे है जहाँ से ले ले बा भाई लाभांक से ले ले हो गो नॉर्मल है एगो फ्लोटिंग चौज तब लेख नहीं पे करी उमा जे है जीविशियों पताज दजिया पताज हुआ नहीं सकेला हुई।
2: अब जे लाभांक मान ले लाभांक बंद हो गल कैसे सिल्वर बैग अभी तो कैसे हुई।
1: हाँ तो सैप है वो भी है जब लाभांकुआ का बंद हो जाला अभी हम नाम हमने के तो दुआ नहीं बा बोले के लाभांक एगो एग्जाम्पल अभी जो नबी जो एग्जैक्ट चला था तो वो लाभांकुआ सब ओकर चीज जो बा जो सब ओकर केस ओकर फाइल ओकर सब बा वो भेज देवेला एगो दूसर कुमा जते वे जो जो है लेवेला सिबुजो काल एगो एडमिनिस्ट्रेटिव बा एडमिनिस्ट्रेटिव वाले हुआ था वो कुमा जे ओकर देखभाल करेला नहीं बोला मैं गोला बंक बोलते तो गोले एग्जैक्ट समझ जी बबी का हो रहा तो वो देख अब ओकर यहाँ तक केस हुआ ट्रांसफर हो गल बाकर यहाँ तो बाकर ऐप तू दे जाना था अब काल ओके नहीं पे ये करी तो नहीं सकी करी कुमा जे है
0: चाहेला पे करी
1: चाहेला पे ये करी के
2: तब जे गो
1: फंक्शन कर ले बा सब चीज कैसे गो कंपनी है अब काले गो कंपनी हमें रखल अब सब चीज हम कंपनी वहाँ तोर से दे दिली तो सब चीज अब तू ओके पे कर कंपनी तो तू रिस्पॉन्सिबल हुई सबके तो सब जे ले ले बा लोन हुआ फ्लोटिंग चार्ज हुई या फिक्स चार्ज हुई ओके चाहे ला पे करे के हाउ नुवो का नुवो है कंपनी वहाँ के जो मजे ते कोवे कर ले बा। ओके भैया
2: एक प्रश्न बा।
1: हाँ बोले
2: तो कैसे मान जाए को एगो संगत है कि वो परिवार वो मासो हो वो घर लेके बराबर कर लापे ही पेशिप नहीं है तो काल उखता गुमोतु स्कित किने के जाता काम करे खातिर बोले भैया चल तनिका कि तनिका औची खड़ा हो जू मान ल काम नहीं चला मुझके नहीं सकता पे करी तो मगाजा सीज करी कि गांवचवा के चाहे पे करी की
1: आली पहला चीज जैसे करा जे घम बोली ना जे गांवची खड़ा हुएला एगो आदमी तो हौ दिबिते वा मोटरसाइकिल सवा जे मजे बिउ पोपितेरवा बन लेबा ओ के पे करे के चाहे जोन गांवची वा खड़ा उलबा बस ई त नहीं सकता पे करी तो ई में हई में फेम ह जहां जे बजे से भाई वा क्लासिकल एग्जाम्पल दिलक एगो मोटरसाइकिल के गले को कुमा जे हई मगाजे में मगाजे में बोले हई दे तब वो तो बोले नहीं तो पे स्लिप उपता नहीं बा कौन कारण ची बा तू पे ये कर बे हई मोटरसाइकिल तो से बुझो 45 मिल रुपी के बा हर महीना में सक बे ये करे 5-5 मिल सिवा दे मिल
0: एक जना गांव से खड़ा हुई
1: तो के बोली नहीं तो बोली मगाजे में बोली बे को कहां से के बोली या के पपीवा से कर दे के यहां
0: इने से की पे तो वो पे करी
1: हई का ओके अब ओके पे करे ओके क्लेम करे
0: एकर में एगो एगो एगो सांस बाकी कैसे हाउ जोन मगाजे में बा जोन गांव छिवा बा ओके बोली पे करे की।

0: या तो फिर वो मोटरसाइकिल तो आके सीजी कर ले ई
1: भी सकेला होई ई भी सकेला होई ओके बुगवा के पेये करे के और हो बुगवा के सी बुझो एक जन का गांव छिया खड़े बा ओकरो नहीं बा ओकरो काम हो कुछ है तो सेफ अब का करी मोटरसाइकिल तो आके सीजी कर ले
0: ये तो अच्छा बा कि मोटरसाइकिल तो वाले के चल रहे कि गांव छिवा के बड़ी पे करी के ना
1: हां मिसेल
0: अब जब मालूम नहीं करी था तब तक नहीं बोली नहीं तो तू ही पे कर तब तक गड़बड़ होगा
1: है का तो कि सैंप भैया तो सब जो मगजे हुआ सीजी करी मुझे सीख लेते हुआ के या गांची या के चाहे पे करे के वो जो भाई हुआ के सीजी खड़ा रखल गांची में
0: ठीक बा भाई जी
2: हाँ अरे बस बाबा अब जब मान ला छुपा छुपी मुझे बेच दिलक पापियर ब्लॉक पर कैसे सीजी हुई
1: नहीं
0: तब तो जी गांव ची खड़ा हुई पे करी ना
1: नहीं नहीं पापिये ब्लॉ में कभी को पापिये कर ला इते इलेगल है
0: हाँ
1: नहीं है दुआ
0: तब मन हो जाए
1: नहीं ये को कर दे ले बा और नई चीज कर ले बा मैं सिल्मा दापरी ओकर कुमा जे कुआ मागाजे हो या कोई भी हो ओकर दिले रल एट द टाइम ऑफ को कोंथवा सिए कर ले रल गारंटी के ते एगो एड्रेस दिले रल आले ओकरो आदमीया के लौटा नहीं बा त जो आदमीया के किन ले रखल बान ओकर एड्रेस ओके तब ओकर से पाछे हर एगो मागाजे के उ लोग के भी एगो आदमी रहेला कैसे एगो ला पुलिस नियर ओ जाके अपन छानबीन करेला कहाँ बा मोटरसाइकिल तो कैसे बा कौन बगल बा तो समझ लो ना तो ओके मिल जाए मोटरसाइकिल तो आके मैं वो तो कर पैसा मिले के से खुजबे करी ना मोटरसाइकिल तो बा कहाँ कैसे जानी तो उससे सीजी करी वो केस करी है कि ओकर अबुका के आप वही के देख के एगो केस करके सीजी करी वो सीजी कर दे मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल तो आई ओकरे या ना
0: ठीक बा भाई जी
2: बहुत बहुत धन्यवाद
0: शुभ दिन नमस्ते एगो और कॉलर हुई तो बात करी लाजा दिखी लाजा हेलो
3: हेलो नमस्ते बहन जी
0: नमस्ते भाई
1: भैया नमस्ते
3: और वकील जी को भी नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी
1: नहीं गुरु जी तो आप भी हो बस कि हम तो हर प्रोग्राम बहुत आप खुशी करी ला आर तो और बोली जो या थी मैं रेडियो में बतिया ला तो कब गए फोन करता हमने तो भी सुनी ला सा ना
0: हाँ।
1: मैं खूब ठीक
0: बोला भाई जी कौन सा
3: बहुत धन्यवाद तो वकील जी हम अपन लेस्पेयोस बोले थे
1: हाँ जी
3: हम यो तो
0: लोन
3: हम बोले चाहा नहीं कि लोन कैसे मिलेगा जैसे हम जानी रहे जहाँ नहीं अच्छा रही तो वकील
1: बोला तो एक्सपीरियंस भाई में
3: हाँ लोन कैसे मिलेगा पहला छ महीना तोहर लापे वैसे हुई
1: बोले रही
0: बात हो गल बा हमने के बतावा कैसे की
3: सुना ना बोला कहीं पे तोहर लापे तेरा वैसे हुई कि छ महीना तोहर बेटा जे कच्चो मिलवे ले बता तो तोहर माटी बाप मा हो तोहर माटी गारंटी दलब लाबो बगल से ऊ जब लोनवा दे तोहरा कच्चो मिल तो कर में गो लासियोंस रही वो जिस खाली छोकरवा पर बस की तो हर से सोता हो गल बता तू नहीं वो रही ओकर में लेटे है रही लाबों के तो हर घर माटी जो गारंटीवा रख बो चाहेला ओकर में भी लासियोंस एगो सेट मिल रूपी हर बड़ी पे ये करेगी
1: ठीक ठीक है बोला
3: बेटा नहीं पे ये करी ओकर नहीं पे ये करी तब बाप माँ गारंटी बा ओकर में अब चाहेला बेटा के कोट छेके करे के ओकर जूस में ए हर महीना तू पेये करे तो कि नहीं देखी तो तोर मोबाइल कितना रह गल बा कितना पेये होल बा
1: ओकर बैलेंस
3: आ लोन ले बा तो चाहेला बहुत से ये रहे के अब तू लोन ले ले हो पागल जो आदमी के लोन नहीं बा ओकर निकन करे खोजब तो टासे हो जइब तो आ नहीं तो देखब जब सोचब कि दुनिया में सबके गारंटी खड़ा हो जब तोहर देखब तो जेजी के दिन लाकू सिप्रेम जइब हम तो गल नहीं कितना माटी के जाफे हमें हम देखब वही कुछ तीन चार गो वही अदमिया बा आदमी आ तू तो जाने रह आदमी के माटी देखब तो कितना जीपे जीबे हमें बेचा जाता तब तू सोचब जब तोहर बिरागल तो ये तो खाली सोचब
0: सही बोलन कि जब एगो गाँवची खड़ा हुई बोहरा चाहेला तोहर लापे ही देगी तो हम एक बारे में हमने ढेर कुछ बतिया ले जा। हमने के समय भी अभी समाप्त होता, कहा कि हमने के प्रोग्राम समाप्त हो जाता, जाए

0: से आगे हमने तोहर से यही पूछा थी जा कि अभी जब या अभी जहाँ पे हमने चला नहीं जा अभी के ज़माने में जब एगो एगो इंसान लोन ले होता तो ओकर पीछे कितना कितना रिस्क बा कौन चीज अकेला होई हमने एक बारे में बतिया थी जा भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आप फोन कर ला हमने की बतैला ये सब लेकिन ये सब बारे में तो हमने पहले भी बतिया ले रहे हैं जा हमने के वक्त भी खत्म हो गल बा हमने के हमने के हमने के भी सिर्फ 5 मिनट रह गल बा जाए के तो ये 5 मिनट में हमने जो हमने लोन के बारे में जो दिताई हमने के वकील जी अन्य हुन ओकर बारे में हमने बतिया ले ला जा तो वकील जी हमने के बताओ अभी बतिया ते जा जो रिस्क बा अभी मोटरसिक्लेट के बारे में भाई जी बतैलन कि जो अदमिया मोटरसिक्लेटवा किन ले भाभी पापी ब्लॉक में बोले रहा बेचे के मुश्किल बा काहे कि एगो ला पुलिस हा जेकर काम हा जाके चेके करे के कि मोटरसिक्लेटवा कहाँ बा
1: पस कि ऊ लोग भी है मगाजन लोग एम्प्लॉय करेला एगो आदमी के कि जोन जोन चीज को मज बड़का को पाई बोलत है जाके एक मजे देखे ओकर लादेस कहाँ बा मोटरसिक्लेटवा कहाँ बा या कुछ हो जाके देखे के मिसिल में ही या का बोला था वो पापी ब्लॉ में है बेच दिल बा मैं हो आदमी के बा ओकर लादेस के जान अब ओके पूछपाछ करे के चाहेला केकर से बेच ले कौन चीज कर ले हवे कहाँ बा मोटरसिक्लेटवा के देखे के ना कैसे देखी तो ओकर आदमी है के लेके मजे एगो से आके देखी का करल जाए मैं एगो चीज भाई भाई बोला ना बड़ी आपस होली हमने तो आज के जो प्रोग्राम बोल आ करे शुरू करी सर हमने बात करती सर है बोरोवर्स प्रोटेक्शन एक्ट
0: हाँ
1: जी तू जू नहीं कर ली सर बस नहीं वक्त नहीं मिला
0: ना अभी सब जा करे कहे कि हमने के पास
1: अभी नहीं नहीं वही तक मतलब एगो एगो एक घंटा लगी एगो नया चीज है बस कमीशन है और प्रोटेक्शन बोरोवर्स भी बा यहाँ कब तो एगो प्रॉब्लम अनबन सब जो हमने बतियाली सर ओकर दरवाजा चाके ठोके के चाहेला कब नहीं सकल पिए करे ऊ तोरा बोली कैसे करे कौन ची करे तोहर में एगो एग, आप सा एक भाई पोसन फॉर कब बात करब सर तो ये एक घंटा लगी इन्हीं में बतिया
0: एगो फगवा में हमने बोले हैं जहाँ के 4 गो विषय मिल गल बा जेकर पर हमने के बात करे के भी समय लगी तो अभी हमने जब बतिया थे जा गाँवची के एगो गाँवची खड़ा हुई बा जब कोई लोन लेवा था तो तोरा चना बहुत सोच समझ के अपन कदम उठाए के काहे कि से बोल जा कि लोन तो भैया ले लियन मजा करियन पैसा मिलन उड़ा दियन खैलन पीलन घूमलन फिरलन लेकिन जब नहीं सकता पे करे तो एकर पीछे तो हर जो मेहनत की कमाई बा तोहर अपन लड़का के पढ़ाई लिखाई के बा तोहर अपन बेटी के शादी करे के बा तोहर अपन घर बनाए के बा तो तोहर जो कैसे बोल जाए तोहर जो सपना बा है एगो गाँवची खड़ा हुई बा तो सकेला तोहर सपना टूट जाए
1: चकना छूर हो जाए खूब बोलत हुई सब हम बड़ भी खुश
0: लाखों में ऐसा ढेर केस आवेला
1: जैसे भैया बोला ना कितना गिर बा हम हाउ भगवान में कर ली सर ना कि कब है लिसिटेशन जहाँ सेजी में बेचल जाला इमोबल प्रॉपर्टी एक्ट के विषय में तो देखब हुआ कितना घर आदमी जान कब नहीं सकेला पे करे बोले जीपे जीबे नियर में चला है एगो 7 मिलियन के चीज से कला एन मिलियन ही जाए एगो पूछे करे लन सन एगो प्रिया मिस जैसे हमने बोले सर शुरू करी से बोझो सौ एगो बोली ए, है मिल रूपी से अब में मोटे हुई एगो बोली मिल हम बोले वो दे मिल हमने आपसे बोली तरी लो एगो प्रोग्राम से लिसिटेशन में कैसे जेजी आर लाखों भरल होला भाई खूब बलन को भी नहीं बोलत रही हम कब पहले रह कासे कब देवे वही पैसा फूटे करे आदमिया के कब नहीं सकल आए एगो केस दलक लाखों में अपने जाए वो जमीन वहाँ करीजे बस ही कहे वो पूछे करी वो जाने लो कर जमीन वा के कितना वाले रल कितना वो बा
0: वो आज मान लो 5 मिलियन के घर बा और ई 5 लाख पैसा ले लेबा तो वो तो पूछे करी तो मिलियो में मिल जाएगा तब खोफी होगल
1: ऐसने जाला तदमी नहीं बोले ला हो कि जाक तोरा मन हुई कि ने के वो जमीन दे तोरा उतना पैसा नहीं बा जा जे जी के हुआ बैठा देख पूछे करी एगो घर देख ले हो अगर पस एगो सेक्यूले है एगो सेक्यूले मिल जाला एक दू समय एक समय अगड़िए कौन कौन दिन है जे जी के कौन कौन जमीन कहाँ कहाँ बेचाए ओकर मिजाफ हुई डाल दे कितना से शुरू हुई पूछे करे के वो बोली 1 रुपया 2 1 रुपया 3 ऐसे मजे मोते हुई ला देहले कब देखो तो कोई नहीं मांगता वो नहीं पूछे होता वो
0: जब तो
1: लॉस भी द जो देह आदमिया बोले हुई 3 रुपया के मजे आल पूछे कर लग वो तो होतने में जाके बेचा दे
0: हाँ।
1: बोली अब तक बोलियो के एगो देले हुए देवे आपके चैनल आपके सब पैसा
0: चेक पैसा चल रहा है चला हमने के जुन कार्यक्रम बा आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त हुआ था हमने के जुन वकील हवन हमने के मेहमान कपिल देव रघुनंदन जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद बस एगो चीज समझ ला है गाँवची नहीं चहला खड़ा हुई के खड़ा हुई बता सोच समझ के तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में इतना सब कुछ देता है दिला प्रिय श्रोताओं हमारा कार्यक्रम जो है आज की चर्चा यहाँ समाप्त होता है बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम आप सुन

0: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: Oh, good morning, time check. It's 10 a.m.
3: Mascar Moshe Saki Civil Aviation Authority ne Ethiopian Airlines ku 15 जून से 30 सितंबर तक की अवधि के लिए एक अस्थायी ऑपरेटिंग परमिट प्रदान किया है। इस दौरान कुल 30 उड़ानें संचालित की जाएंगी, यानी प्रति सप्ताह 2 उड़ानें। जून महीने से आइबेरोजेट मैड्रिड से प्रति सप्ताह 1 उड़ान संचालित करेगी, जबकि जुलाई में वर्ल्ड टू फ्लाई भी इसी तरह की साप्ताहिक सेवा शुरू करेगी। बेलेया पोम्पोनेट में एक स्थल का दौरा किया गया जो देश के ज्योमेट्रिक पास पर स्थित 21 लक्ज़री विला के विवादास्पद परियोजना से संबंधित है। ये जोन पहले ही गंभीर रूप से कोस्टल इरोजन से प्रभावित है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की कमी की निंदा की जा रही है। स्थल का दौरा कर रहे लोगों के हस्तक्षेप के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले एक पूर्ण एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की आवश्यकता रखी है। क्यूपिप कॉलेज में आज कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। कॉलेज में कार्यरत फिजिकल एजुकेशन के प्रमुख और शिक्षक चंद्रदेव सिंह जादू सिरू के अचानक निधन के बाद क्यूपिप कॉलेज द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में सूचित किया गया कि आज शुक्रवार 22 मई को कॉलेज में कक्षाएं नहीं चल रही हैं। चंद्रदेव सिंह जादू सिरू को एक अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए सगे संबंधी व कॉलेज के कर्मचारी एकजुट हुए हैं। विदेश में यूएस के विदेश सचिव मार्को रूबियो ने कहा है कि क्यूबा अमेरिका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है और एक शांतिपूर्ण समझौते की संभावना अधिक नहीं है। तो ये थी अब तक की खबरें। कुछ ही समय में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। नंबर 25 लेपास शातुदू थोंकबा पोर्टविस में। नंबर 25 लेपास शातुदू थोंकबा पोर्टविस में 55 साल की 55 years old श्रीमती नंदिता कुमारी कंटावादू। श्रीमती नंदिता कुमारी कंटावादू, जिन्हें लोग नंदू नाम से भी जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकी मां प्रेमिला कंटावादू के मकान नंबर 25 लेपास शातुदू थोंकबा पोटलिस से उठाकर थोंकबा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। एरिगाडू स्ट्रीट मिडलैंड्स में 54 साल के 54 years old श्री चंद्रदेव सिंह जादू सिरू, जिन्हें लोग पारे नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुपहर के तीन बजे इनकी पत्नी उषा सिरू के मकान एरिगाडू स्ट्रीट मिडलैंड्स से उठाकर मिडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 3 PM। और बुआ द्वाजू रोड पुत्रोदो विलाज में 57 साल की 57 years old श्रीमती विजयंती दुखी, पैदाशी नाम मतु और जिन्हें लोग देवी नाम से भी जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे इनके पति देव दुखी के मकान बुआ द्वाजू रोड पुत्रोदो विलाज से उठाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
4: NBC Play, NBC Radio.tv.
5: NBC Radio.tv. 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: आरा रेडियो मॉरिशस पर
1: 10:04 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। सभी सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं इस कार्यक्रम में। भक्ति की धारा बहने जा रही है श्रोताओं। हमेशा की तरह हम कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान गणेश जी का नाम लेते हैं और बहुत ही श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ उनको हम पूछते हैं और

0: भक्ति धारा कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत जो है अच्छी तरह से हो चुकी है। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। रब शास्त्र नवनीतम, ये कार्यक्रम आप डॉक्टर आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे।
1: वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीत।

ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं को सादर सप्रेम नमस्ते। शास्त्र नवनीतम कार्यक्रम में आज का विषय है वैर त्याग। अहिंसा को वैर त्याग भी कहा गया है। जब मनुष्य वैर की भावना को मन से हटा देता है और अहंकार के वशीभूत नहीं आता, तभी मन में दया और प्रेम की भावना प्रकट होती है। प्रेम एक सुखद अनुभूति है जो हमारे मन और व्यवहार में अभिव्यक्त होता है। यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 18वां मंत्र भी हमें मैत्री एवं प्रेम की शिक्षा देता है। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, अर्थात हम सभी मित्र भाव से एक दूसरे को देखें, कभी भी एक दूसरे को वैर भाव से न देखें। वैर भाव को मन में पालने से मन में शत्रुता बनी रहती है। जल की बहती हुई तेज धाराएं एक स्थान को छोड़कर दूसरे नए स्थान को प्राप्त होती हैं। यह तेजी से बहता हुआ जल का धर्म है कि वह जगत कल्याण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान प्राप्त हो। पवित्र जल की धारा के समान द्वेष आदि दुर्गुणों को छोड़कर प्रेम, अहिंसा आदि मूल्यों को जीवन में स्थान देना चाहिए। जीवन का प्रत्येक क्षण यदि अर्थपूर्ण है तो वह जीवन नीरस नहीं हो सकता। उस स्थिति में मन में यह तीव्र भाव निरंतर जागृत रहता है कि जीवन एक महान लक्ष्य के प्रति समर्पित है। जीवन एक संघर्ष का नाम है। जीवन का मार्ग समतल नहीं होता। उसे अपने कर्म, तपस्या, प्रेम और भक्ति से समतल बनाना पड़ता है। इस मार्ग में फूल और कांटे दोनों होते हैं। जीवन के हर एक पल से अथवा परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। समय और अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं और कभी कभी ठोकर खाकर सीखना पड़ता है। संसार की सभी वस्तुएं ठोकर लगने से टूट जाती हैं, परंतु एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जो ठोकर लगने से बनता है, ठोकर खाने से उसके जीवन में बदलाव आता है। प्रश्नोपनिषद में उल्लेख है, यथे मा नद्यः स्पंदमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति भिद्यते तासां नाम रूपे समुद्र इत्येव प्रोच्यते। जैसे नदियां समुद्र को प्राप्त होकर अपने नाम और अस्तित्व को मिटा देती हैं, वैसे ही जीवात्मा जब परम सत्य को तप अथवा अपनी उपासना द्वारा प्राप्त कर लेता है, तभी वह सांसारिक बंधनों से छूट जाता है। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को मिटाकर परम सत्य से तादात्म्य संबंध बना लेता है, अपना अभिमान तथा अपनी मोह माया को मिटाकर सत्य एवं शांति को प्राप्त करता है, तभी वह व्यक्ति असत्य, अभिमान, मोह और माया से परे होकर सांसारिक बंधनों से छूटने लगता है। वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। वैराग्य, श्रद्धा, तप और ईश्वर उपासना के बिना व्यक्ति मोह माया से मुक्त नहीं हो पाता। जीवन एक संघर्ष है। जीवन में हर प्रकार का संघर्ष एक युद्ध के समान है। शत्रु पर विजय पाना कोई सहज बात नहीं है। युद्ध में हम बाहर के शत्रु की बात करते हैं,

किसी बाहरी व्यक्ति या राष्ट्र को जीतने की बात करते हैं, पर असल में शत्रु बाहर नहीं, मनुष्य के अंदर विराजमान होता है। जीवन में हर प्रकार के व्यवहार और विचारों से प्रभावित होते हैं। विचार और व्यवहार से ही एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मित्र या शत्रु बन जाता है। जीवन रूपी युद्ध में शत्रुओं को जीतने का अर्थ है उस नकारात्मक मनोभाव को मिटाना या दूर करना जिसके कारण शत्रुता का उदय होता है। मनुष्य की मनोवृत्ति, व्यवहार या भाव ही किसी को शत्रु या मित्र बना डालते हैं। शत्रु को मित्र बना लेने से बिगड़े काम आसानी से बन जाते हैं तथा मित्र को शत्रु बना लेने से बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। बाहरी शत्रु से युद्ध करना सामान्य सी बात है, परंतु स्वयं से युद्ध करना एक विशेष तपस्या है। स्वयं से युद्ध करने का अर्थ है अपने नकारात्मक भावों से छुटकारा पाने का प्रयास, अपने मन की दशा और दिशा में सार्थक और सकारात्मक परिवर्तन लाना, अपने मन को समझना, अपने मन को काबू में रखना। बेशक यह काम बाहरी युद्ध से भी अधिक कठिन है, परंतु जिसने एक बार इस युद्ध में जीत प्राप्त कर ली, अर्थात अपने नकारात्मक भावों पर काबू पा लिया, घृणा, द्वेष, क्रोध, अहंकार आदि पर नियंत्रण पा लिया, तो समझो कि उसने संसार का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। इस युद्ध को जीतने के बाद संसार का कोई भी युद्ध कठिन नहीं होता। इस युद्ध को जीतने के बाद अन्य युद्ध महत्वहीन प्रतीत होता है। अब प्रश्न उठता है कि इस युद्ध में शत्रु कौन है? हम अपने ही व्यवहार से किसी को शत्रु तो किसी को मित्र बना लेते हैं। हमारे व्यवहार, विचार और आदतें ही इसके लिए उत्तरदायी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह इत्यादि विकार मनुष्य का शत्रु कहा गया है। यही वे विकार हैं जिनके कारण मनुष्य के आचरण में परिवर्तन आता है और संबंध बिगड़ते हैं। समाज में शत्रुता बढ़ती है तथा घर में ही घर के सदस्यों के साथ मधुरता समाप्त हो जाती है, मिठास समाप्त हो जाता है। इस प्रकार बाहरी जगत में जो शत्रु हैं वे हमारे मन की उपज हैं। अतः युद्ध करना और वास्तविक शत्रु को जीतना है तो बाहरी शत्रु से नहीं, आंतरिक शत्रुओं से युद्ध करें। अपने सभी प्रकार के विकारों और नकारात्मक भावों को दूर करें, उन्हें परास्त करें। एक भयंकर युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने विजय तो प्राप्त कर ली, परंतु उस विजय से उन्हें शोक और दुख की अनुभूति हुई। युद्ध समाप्ति के पश्चात उन्होंने देखा कि रणभूमि में योद्धाओं के मृत शरीर इधर उधर पड़े हैं, भूमि खून से लाल हो चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा, शोक और अशांत का वातावरण छाया हुआ था, पूरा वातावरण अप्रिय प्रतीत हो रहा था। सम्राट अशोक के मन में अशांति छा गई। हिंसा का यह दुखद दृश्य उन्हें वैराग्य की ओर ढकेल रहा था। शोक मग्न अशोक को मार्ग में एक महात्मा का दर्शन हुआ। उस महात्मा ने सम्राट अशोक को उदास, दुखी और शोक मग्न देखकर उनसे शोक का कारण पूछा। सम्राट अशोक ने उस महात्मा को सब वृतांत सुना दिया। तभी उस महात्मा ने सम्राट अशोक के शोक को दूर करने के लिए उन्हें सांत्वना और मानव मूल्य का उपदेश दिया। उस महात्मा ने सम्राट अशोक से कहा कि हे सम्राट, जीवन में हजारों लड़ाइयों से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इस जीत को तुमसे कोई छीन नहीं सकता। हे सम्राट, तुम अशांत इसलिए हो कि तुम अनावश्यक

0: चीज़ों के पीछे पड़े हो। जिस तरह एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती, उसी प्रकार खुशियां बांटने से खुशियां हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। हे सम्राट, जहां हमारा निजी स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से हमारी मानवता आरंभ होती है। अतः आज से हिंसा वृत्ति को त्याग कर अहिंसा की शरण में आ जाओ। इस समय अहिंसा का मार्ग ही तुम्हारे शोक को अशोक में परिवर्तित कर देगा। अहिंसा का मार्ग ही तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा और वहीं से तुम वैर भाव त्यागना प्रारंभ कर दोगे। हे सम्राट, मोह इतना न करें कि बुराइयां छुप जाए और घृणा भी इतनी न करें कि अच्छाइयां दिखी न जाए। हे सम्राट, तुम दयावान बनो एवं हिंसा तथा घृणा को जीवन में स्थान मत दो। हमेशा याद रखो कि दया मनुष्य को कभी मुरझाने नहीं देती और हिंसा व घृणा मनुष्य को कभी खिलने नहीं देती। आज का वक्तव्य यहाँ विराम लेता है। अब आचार्य सुनील को अनुमति दीजिए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: अभी आप सुन रहे थे वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम, प्रस्तुत करता डॉक्टर आचार्य सुनील।

10:22 हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी में श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम है भक्ति धारा। शुक्रवार का पावन दिन है और आज का दिन जो है समर्पित है माँ दुर्गा को। और आपको पता है कि माँ दुर्गा हमें शक्ति प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे चंद भक्ति गीत माँ दुर्गा पर आधारित।

स्टूडियो की घड़ी में 10:30 बज रहे हैं। श्रोताओं, चंद भक्ति गीत इस समय आप सुन रहे हैं, माँ दुर्गा पर आधारित। वैसे माँ दुर्गा का स्वरूप हमें ये संदेश देता है कि जीवन में सत्य, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। उनका सिंह वाहन वीरता और निर्भयता का प्रतीक है। तो चलिए, कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं।

श्रोताओं, माँ दुर्गा केवल बाहरी शक्ति ही नहीं, जी हाँ, माँ दुर्गा केवल बाहरी शक्ति ही नहीं बल्कि आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा की भी देवी है। उनकी भक्ति से मन में विश्वास और जीवन में नई प्रेरणा हमें प्रदान होती है।

चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे माँ दुर्गा अपने भक्तों को शक्ति, सुख, शांति और साहस प्रदान करती है। सच्चे मन से की गए उनकी भक्ति जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास भर देती है।

चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम के अंत तक आप पहुंचे हैं। जाने से पहले आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले मौदस्थालिया और पोंखाला के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 23 मई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। 7 मई है डिफ्रेयर और कथोसर के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को सोमवार 25 मई 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और अंत में है ओंस जोंशे तेयाकासे और बॉम्बू विरियो के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि सोमवार 25 मई 2026 को सुबह 8:30 बजे वैसे दिन के 11:30 बजे से लेकर सपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। कुछ ही घड़ी में आप समाचार सुन पाएंगे।

0: मिलते हैं पूजा से, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी को मेरा नमस्कार। यदि आप किसी निर्माण परियोजना में लगे हैं तो आप जानते हैं कि सीमेंट या लोहे की कीमतें कितनी अप्रत्याशित हो गई हैं। इस क्षेत्र में स्थिरता और विश्वास वापस लाने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अथॉरिटी ने एक महत्वपूर्ण उपकरण को अपडेट किया है, वो है नेशनल सीजुल ऑफ रेट्स। ये एक मुफ्त राष्ट्रीय डेटाबेस है और ये निर्माण बाजार की वास्तविकताओं से जुड़ा है ताकि भविष्य में ग्राहकों को प्रस्तावित कोटेशन अधिक भरोसेमंद मिले। ये बड़े सुधार की एक नींव है जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को व्यवस्थित करना है। कल बिले पोपनेट में एक स्थल का दौरा किया गया जो देश के ज्योमेट्रिक पास पर स्थित 21 लग्जरी विला के विवादास्पद से संबंधित है। ये जोन पहले ही कोस्टल इरोजन से गंभीर रूप से प्रभावित है। इस बीच वहां मौजूद लोगों के हस्तक्षेप के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले एक पूर्ण एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की आवश्यकता रखी। और विदेश में यूएस के विदेश सचिव मार्को रूबियो ने कहा है कि क्यूबा अमेरिका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है। उनकी ये टिप्पणी एक ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ने क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति रॉल कैस्ट्रो पर 1996 में 2 विमानों को गिराने और अमेरिकी नागरिकों की हत्या करने के मामले में हत्या का आरोप लगाया। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। रॉय रुद्र फोंजीसाक में 56 साल के 56 years old शिजय सिंह परयाग, जिन्हें लोग संजीव नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सपहर के 3 बजे इनकी पत्नी मनीषा परयाग के मकान रॉय रुद्र फोंजीसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ओसाई फोंजीसाक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 3 PM। नंबर 25 लेपास शाटू डू थोंकबा पोर्टुई समय 55 साल की 55 years old श्रीमती नंदिता कुमारी कंतावादू, जिन्हें लोग नंदू नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकी मां प्रेमिला कंतावादू के मकान नंबर 25 लेपास शाटू डू थोंकबा पोर्टुई से उठाकर थोंकबा किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 11 AM। एरिगाडू स्ट्रीट मिडलैंड्स में 54 साल के 54 years old श्री चंद्रदेव सिंह जादू सिरू, जिन्हें लोग पारे नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे इनकी पत्नी उषा सिरू के मकान एरिगाडू स्ट्रीट मिडलैंड्स से उठाकर मिडलैंड्स किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 3 PM। और एरोस्लिन प्लेन दे पापाई में 47 साल के 47 years old श्री सुरेंद्र भिकारी, जिन्हें लोग अजय नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी रविवार 24 मई को सुबह 10:30 इनके मकान एरोस्लिन प्लेन दे पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन दे पापाई किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन संडे 10:30 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शम्मे फरोज़ा।

शुरू, जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। पैदा होते ही कलमा सुना था, पैदा होते ही कलमा सुना था, यारब मरते वक्त भी कलमा नसीब करना, यारब।

0: जुम्मे का मुबारक दिन है आप तमाम सुनने वालों को। हमारी जानिब से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ऐसे हज़ारों जुम्मे नसीब फरमाए। सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो शख्स कुरान को अटक अटक कर पढ़ पाता है और उसको पढ़ने में मुशक्क़त होती है तो उसके लिए दुगना अजर है। बहावाला सही बुखारी शरीफ। तो आइए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आज आप समात फरमाएंगे हर जुम्मे की तरह सूरह अल-कहफ़ की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
1: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

सदकल्लाहु लज़ीम। अंधा देखने की, बहरा सुनने की, लंगड़ा चलने की, गूंगा बोलने की तमन्ना करता है और तुम देखते सुनते चलते और बोलते हो फिर भी खुश नहीं। रब का शुक्र अदा किया करो उन नेमतों के लिए जो उसने तुम्हें बिन मांगे दी हैं। कितने मजबूर हैं वो लोग जो इन नेमतों के लिए तरस रहे हैं।

ज़िलहज के इब्तिदाई इन 10 अय्याम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इन 10 दिनों की कसम खाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 दिनों को दुनिया के बेहतरीन दिन करार दिया है। अशरे ज़िलहज में ही यौम अरफा है। अशरे ज़िलहज में कुर्बानी का दिन भी शामिल है। ज़िलहज में नमाज, रोज़ा, सदक़ात, कुर्बानी और ख़ास तौर पर हज जैसी बड़ी इबादतें जमा हो जाती हैं और इबादत का ऐसा हसीन इज्तिमा साल के बकिया अय्याम में नहीं होता।

मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज की फ़ज़ीलत व अहमियत पर बहुत सी अहादीस मरवी हैं, जिनमें मनासिक हज अदा करने के फ़ज़ाइल और हाजी को मिलने वाले सवाब व इनाम का ज़िक्र किया गया है। बुखारी शरीफ में सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कौन सा अमल सबसे अफजल है, तो फरमाया अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। फिर दरियाफ्त किया गया कि उसके बाद कौन सा अमल अफजल है, तो कहा अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना। फिर दरियाफ्त किया गया कि उसके बाद कौन सा अमल अफजल है, तो फरमाया मकबूल हज। बहावाला बुखारी व मुस्लिम शरीफ।

0: सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक ज़िलहज के पहले दिनों से ज़्यादा पसंदीदा कोई इबादत की जाए उनमें से हर दिन का रोज़ा एक साल के रोज़ों के बराबर है और हर रात क़याम करना शब क़द्र में क़याम करने के बराबर है। बहावाला सुनन अल-तिर्मिज़ी शरीफ।
1: मौला मौला मौला मौला मौला मौला।

इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। या अल्लाह, मौत से पहले हमें कलमा नसीब फरमा और मौत के वक्त हम पर रहम फरमा और मौत के बाद हमें अज़ाब से बचाना और क़यामत के दिन हिसाब ना लेना। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिसेस अंजू ने टेक्निक में हमारा साथ दिया, हम इनके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जुम्मा मुबारक।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: समय थे उसे बपोर ना पौना बे।
2: मौजीला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। शुक्रवार 22 में घड़ी मिला लीजिए, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और रेडियो मॉरिशस पर मैं आ चुकी हूँ सुमी आप सभी का साथ देने के लिए। आपकी पसंद इस प्रोग्राम में, आपकी पसंद पसंदीदा गीतों का प्रोग्राम है, आप सभी का फेवरेट प्रोग्राम है हमें पता है। सो अभी से लेकर 4:15 बजे तक पसंदीदा गाने तराने आपकी फरमाइश पर, आपके डेडिकेशन, आपके रिक्वेस्ट पर यहाँ पर चलेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अच्छे हैं। और फ्राइडे है, ऐसे ही लोगों का मूड अपने आप अच्छा हो जाता है ये सोच कर के सप्ताहांत वीकेंड आने वाला है। तो चलिए, जहाँ कहीं से भी साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोपहर के इस पल को यादगार बनाते हैं, मेमोरेबल बनाते हैं, खूबसूरत गाने तराने आपके लिए हम चलाते हैं। और आपको बता दें कि हमारा जो नंबर है वो है 4028085402, 8085। आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस 5251700 पर।

आपकी पसंद। चलिए, आपकी पसंद ये प्रोग्राम है, शुक्रिया साथ देने के लिए। और बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हर रोज़ बस एक ही नाम को लिया जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत से लोग हर रोज़ अलग अलग नंबर से फ़ोन करते हैं और हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हर रोज़ जो है हम सभी को मौका दें, सभी के गानों को चलाने की कोशिश करें। और बहुत से लोग जब रोज़ मैसेज करते हैं तो किसी न किसी गाने में हम उनका नाम जोड़ देते हैं अन्य गानों के साथ। तो हमारी कोशिश होती है कि हम सभी को यहाँ पर कुछ खुश करें और जो है सभी की फरमाइशों को समय समय पर पूरा करने की कोशिश करें, प्रयास करें। और ऐसे में चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। आंसू और मुस्कान फिल्म का ये जो तराना है, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़, नेकी तेरे साथ चलेगी। विजय बंदन जी क्लावेट से साथ दे रहे हैं, बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। गाना जाता है आपकी ओर से आपकी प्यारी पत्नी रेखा के नाम। आपकी बहनें हैं कुमारी, बिंदु, चंदनी, बेटा है प्रवेश, बेटी है प्रिया, दामाद है कौशिक, साथ में प्यारी सी दीक्षिणा, सभी बंधन परिवार के नाम जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उन सभी के नाम जिन्हें ये गाना पसंद है।

0: आपकी पसंद।
1: यकीनन अच्छे का फल अच्छा होता है, और बुराई अगर हम किसी कारणवश बुराई में फंस गए हैं या हमारे हाथों से कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत का परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ता है। तो चलिए ऐसे में अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। जितने भी हमारे लिसनर्स, हमारे सुनने वाले, आपके परिवार के सदस्य, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, जो भी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, आपको रेडियो मॉरिशस की पूरी टीम की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, हैप्पी हैप्पी बर्थडे आप सभी को। बर्थडे का मौका बहुत ही खास होता है, स्पेशल होता है ना। तो चलिए यहाँ पर जेसिका कावलेस बुनते से हमारा साथ दे रही है, वाकवा से हमें सुन रही है। गाना जाता है मौसी कविता के नाम, जिनका बर्थडे है जो आज 56 साल की हो रही है। आपके सभी दोस्तों की ओर से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। यहाँ पर कविता जी खास शुभकामनाएं नलिनी, मोहन, अंबिका, प्रेमिला, रेखा की ओर से, जो इस समय बेलेया में काम कर रहे हैं और आपके नाम इस गाने को डेडिकेट कर रहे हैं। खास बेस्ट विशेस जेसिका की ओर से, जो बुनते से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं और किसका जन्मदिन है। यहाँ पर सुदेवी जी प्रोग्राम को एंजॉय कर रही है, कह रहे आज मालिंगा से जो है इनकी बेटी कीर्ति का जन्मदिन है। तो कीर्ति आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं मम्मा इंदिरा की ओर से, भैया अक्षय की ओर से, बहन स्नेहा, याशना बहनोई है, नीरज, नीसिस है, लक्षिता, कृषिका, बेलरोज से आपके पूरे परिवार, नानी है, मामू है, मामी है, मौसी, मालिनी, स्वीटी, सभी रामरतन परिवार, सभी राम गुलाम परिवार, सभी कुवारू परिवार, सभी रिदोई, सभी जुतन और सभी कुशल परिवारों की ओर से कीर्ति आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस पूरे परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लाइफ में तरक्की करते रहे, प्रगति करते रहे, आगे बढ़ते रहे, ऐसी कामना की जा रही है। और जितने भी सुनने वाले आज जन्मदिन मना रहे हैं, ये अगला खूबसूरत सा तराना आप सभी के नाम, हमेशा आपके जीवन में ये खुशहाली, ये बहार बनी रहे।

0: की पसंद।
1: चलिए बाहर ही बाहर आपके जीवन में हो, कभी कोई दुख, कोई परेशानी, कोई चिंता आपको छू ना पाए और हमेशा जो है आपका जीवन खुशियों से घिरा रहे, अपनों से घिरा रहे। और चलिए ऐसे में अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर ज्योति जी शातो बनारस से हमारा साथ दे रही है। गाना जाता है आशनी के नाम, रेखा है, सुरेखा है, सभी मधव परिवार जो हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणाम सिस्टर, लिसनिंग टू योर ब्यूटीफुल सिलेक्शन, थैंक यू सो मच। अगला गाना जाता है हमारे सभी आजेस के नाम, बेटा निशाल के लिए, त्रियोलेस

से पूरा परिवार हमारा साथ दे रहा है, सभी सजादा परिवार के नाम कह रहे कि ऑसम शो ऑन रेडियो मनोरंजन। ओके थैंक यू, 12 से 2 आप वहाँ पर जुड़े थे, थैंक यू सो सो मच। यही गाना आपके लिए भी चल पड़ा यहाँ पर सूरज जी। सितमगर फिल्म का ये तराना है और इसी गाने के साथ जो है हम बढ़ेंगे यहाँ पर 3 बजे के समाचार की ओर। तो हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, साथ देते रहिए, समाचारों के उस पार फरमाइशी गीतों का सिलसिला जारी रहेगा।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: कड़ी मिला लीजिए, सपेर के 3 बज रहे हैं और हम बढ़ने वाले हैं समाचार की ओर।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अर्षिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले हम स्थानीय खबरों के बारे में बात करती हैं। न्यायाधीश कैरोल ग्रीनजोकू ने पीटर वेन रॉबर्ट्स से जुड़े मामले से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने ये निर्णय आज सुबह असाइजेस अदालत में घोषित किया, जो दक्षिण अफ्रीकी व्यवसायी के वकीलों द्वारा दायर एक अनुरोध के बाद लिया गया। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में बचाव पक्ष ने मांग की थी कि न्यायाधीश इस मुकदमे से हट जाएं, जो पीटर वेन रॉबर्ट्स और अनाहिता रेजिडेंस एंड विला लिमिटेड के बीच चल रहा है। इसका कारण ये बताया गया है कि न्यायाधीश पहले 2015 में ली आन पाल्मारोजा की मृत्यु से जुड़े एक मामले में शामिल रही थी। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि उन्होंने पहले सरकार, पुलिस आयुक्त और एमसीआईटी के एक अधिकारी का प्रतिनिधित्व किया था, जो इस मामले से जुड़े आपराधिक पहलुओं में शामिल थे। किसी भी पक्षपात या पक्षधरता की धारणा से बचने के लिए उन्होंने स्वयं को इस मामले से अलग करने का निर्णय लिया। अब ये मामला 26 और 27 मई को एक नए बेंच के सामने सुना जाएगा। गौरतलब है कि नागरिक मुकदमे में पीटर वेन रॉबर्ट्स ने अनाहिता रेजिडेंस एंड विला लिमिटेड से 3 मिलियन अमरीकी डॉलर का मुआवजा मांगा है। और अन्य खबरों में बात करती हैं अब हम अफ्रीका दिवस, जो हर वर्ष 25 मई को मनाया जाता है। एक के अवसर पर मॉरिशस स्थित मिस्र के दूतावास ने अफ्रीकी देशों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए एक स्मृति समारोह का आयोजन किया। ये कार्यक्रम कल गुरुवार 22 मई की शाम एबेन स्थित मिस्र दूतावास में आयोजित हुआ। ये केवल एक प्रदर्शनी नहीं थी, बल्कि दीपक, फराओं की प्रतिमाएँ और कई ऐतिहासिक वस्तुएँ मेहमानों को मिस्र की समृद्ध और आकर्षक सभ्यता के केंद्र तक ले गई। आपको ये भी बता

0: अदिति है कि अपने संबोधन में मॉरिशस में मिस्र की राजदूत अबीर अलाम एल्दीन ने इस वर्ष की थीम जल के सतत प्रबंधन पर प्रकाश डाला। उन्होंने मिस्र द्वारा बुनियादी ढांचे और विकास के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण परियोजना का भी उल्लेख किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला प्रकोप के केंद्र में स्थित एक अस्पताल के एक हिस्से को घुसाई भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। ये घटना उस समय हुई जब एक युवक जिसकी इबोला से मौत होने का संदेह था के परिवार और मित्रों को उसका शव दफनाने के लिए ले जाने से रोक दिया गया। स्थानीय राजनेता ल्यूक मालेम्बे के अनुसार भीड़ ने अस्पताल पर पत्थर और अन्य वस्तुएं फेंकी और यहां तक कि आइसोलेशन वार्ड के रूप में उपयोग हो रहे टेंटों में भी आग लगा दी। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो। चला आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: आपकी पसंद।
2: घड़ी मिला लीजिए 3:05। आज है शुक्रवार 22 मई। समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं रेडियो मॉरिशस पर आपकी पसंद इस प्रोग्राम में। और चलिए आज फ्राइडे है, आपको पता है फ्राइडे को जो है हमारा प्रोग्राम 4:15 तक चलता है। सो अभी तक आपने हमें मैसेज नहीं किया है, फ़ोन नहीं किया है, डेडिकेशन नहीं पहुँचाए है तो देर किस बात की है। जल्दी जल्दी बस हम तक अपने डेडिकेशन पहुँचाइए। 4028085 है नंबर हमारा आपके फ़ोन कॉल्स के लिए, 4028085 और साथ ही आपके मैसेजेस 5251700005 पर। चलिए यहाँ पर सरिता जी ने अगले गाने की फरमाइश मांगी है अपने दोस्त के नाम जिनका जन्मदिन है। लेकिन सरिता जी, जिनका जन्मदिन है आपने तो उनके बारे में बताया ही नहीं, उनका ना नाम बताया ना वो कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं। तो अगर जिनका जन्मदिन है उनका नाम बता देते तो हम उनके लिए गाना ज़रूर चला पाते हैं ना। तो चलिए कोशिश कीजिएगा कि आप बताएं कि किनका जन्मदिन है, नहीं तो फिर गाने को हम डेडिकेट किसके नाम करें। और राइट, और यहाँ पर अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। अगला गाना जो है यहाँ पर जाता है इंदिरा जी आपके नाम, आपके लंदन के पूरे परिवार के लिए जो इस समय हमें लंदन से सुन रहे हैं, सभी लौटन परिवार के नाम। प्रेम गीत फिल्म का ये जो गाना है आपके नाम हम करेंगे। यहाँ पर होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, यही गाना ग्रॉन्गुप की सुनीता जी आपके लिए भी।

0: आपकी पसंद।
1: यानी कि शायद ही कोई ऐसे होंगे जिनको प्रेम गीत का ये गाना नहीं पसंद जो अभी हम सुन रहे थे, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, जगजीत सिंह जी की आवाज़ में। चलिए खूबसूरत से गाने यहाँ पर, आपकी वजह से जो है हमें भी ऐसे अच्छे अच्छे गानों को बार बार सुनने का मौका मिल ही जाता है, आप जब इतने इतने अच्छे अच्छे गानों की फरमाइश करते हैं। तो चलिए अब हम अगले गाने की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला गाना जो है हमारे सभी फ्रेंड्स के लिए, सभी फैमिली के लिए, रेडियो मॉरिशस की पूरी टीम के लिए। ऑलराइट, हम है राही प्यार के फिल्म का ये तराना है। अनीता जी इस समय हमारा साथ दे रही है। यही गाना हम सभी बंधु परिवार के नाम करते हैं जो बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हैं और थ्रियोले से हमें सुन रहे हैं। यहाँ पर विमला जी बहुत बहुत शुक्रिया विमला जी आपके प्यार भरे साथ के लिए और आपके इस खूबसूरत मैसेज के लिए। ये गाना आपके लिए भी चल पड़ा।

आपकी पसंद। और चलिए यहाँ पर अगले गाने की ओर हम अब बढ़ेंगे। अगला जो तराना है दुश्मन ज़माना फिल्म का ये गीत है कुमार सानू साथियों की आवाज़ों में। गाना यहाँ पर जाता है आशा जानू आपके नाम को तेज से हमारा साथ दे रही है। गाना आपकी ओर से मामा कुमारी के नाम, नेफ्यू है शुभम, ऋषभ, दीदी आरती, जीजू राज, सभी जानू फैमिलीज के लिए यहाँ पर ये गाना हम करेंगे। और चलिए यहाँ पर यही गाना विश्वानी जी आपके लिए भी हम करते हैं। हर रोज़ हमारा साथ देती है, वाकवा से हमारे साथ जुड़ी हुई है। गाना इंदिरा शारदा के नाम, नीला है, प्रतिभा है, शोभा है, गीता गजादर, सभी दुमन फैमिलीज़ के लिए।

0: आपकी पसंद।
1: किताबें कहे, कहानियाँ कहे, किस्से कहे या गाने कहे, कहीं ना कहीं हर एक गाना या कोई ना कोई ऐसा गाना होता है, कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई किस्सा ऐसा होता है जो हमारी ज़िंदगी से मेल ज़रूर खाता है, है ना। कभी कुछ देख रहे होते हैं या कभी सुन रहे होते हैं या कुछ पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कहीं हमारी ही कहानी तो नहीं। चलिए अभी के लिए 3:22। अगला गाना जो है यहाँ पर मीला रामस्वामी जी आपके नाम हम करते हैं, आपकी ओर से आपकी बहन सिम के लिए। मामा है प्रेमा सन्यासी, साथ में है शीला बिमाना सांता अपादु जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, और सभी रामस्वामी परिवारों के नाम ये तराना चल पड़ा।

और चलिए यहाँ पर अगला जो तराना है वो है खरा खोटा, इस फिल्म से लिया गया, दीप प्रिवर से शिवरानी हमारा साथ दे रही है। गाना जाता है उनके नाम, उनके पूरे परिवार के नाम जो इस समय हमें सुन रहे हैं, और यही तराना उन सभी के नाम भी करते हैं जो किशोरदा की आवाज़ के फ़ैन हैं। कभी होती नहीं है जिसकी हार, वो है प्यार। यकीनन जीवन में प्यार होता है तो ज़िंदगी का हर लम्हा, हर पहलू खूबसूरत हो जाता है। कहते हैं ना कि जहाँ पर प्यार होता है प्यार हर कमी को पूरा कर देता है, और जहाँ पर सब कुछ होता है और प्यार नहीं होता है तो वहाँ पर कोई ना कोई कमी हमेशा खटकते रहती है।

0: की पसंद।
1: यकीनन जीत और हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी कोशिश करने पर जीत हो जाती है और कभी कभार ज़िंदगी में हार का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन हार हो या जीत हो, दोनों ही जीवन में हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाते हैं। इसलिए ज़्यादा हमें निराश नहीं होना चाहिए जब हालात हमारे मुताबिक नहीं चल रहे हो। चलिए अभी के लिए अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। इस समय जो है चंद्रदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रॉम्बे से, और अगला गाना जो है आपके नाम हम करते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कौन सा गाना मांगा है, क्योंकि कभी कभार हम मैसेज जब टाइप करते हैं तो वो ऑटो करेक्ट के वजह से कुछ और ही टाइप हो जाता है, तो आपका नाम हम समझ पा रहे हैं। तो अगला गाना आपके नाम करते हैं चंद्रदेव जी, आपके सभी दोस्तों के नाम और सभी ग्रॉम्बे के आपके पूरे परिवार के नाम। कभी भी आप हमें मैसेज भेजें तो मेक श्योर करें कि जो आपने टाइप किया है वो सही है या नहीं, ताकि हमें समझ में आए कि आप कौन सा गाना मांग रहे हैं, किस फिल्म का गाना मांग रहे हैं। संगीता जी कथकोको से साथ दे रही हैं। ये गाना पति विजय के नाम, यशवीर, इश्नेशा, काजल, मिथुन, आरुषि, आरुही, सभी रीगा परिवार, सभी पाताओ परिवारों के नाम। आपने भी कहा माँ पर एक गाना, आपने बस दो

शब्द कहा और मैंने पूछा कौन सी फिल्म है, तो आपने कहा पता नहीं। तो चलिए जो अगला तराना है, हम साथ साथ है फिल्म का ये गाना है, ये तो सच है कि भगवान है, ये आपके नाम करते हैं। उम्मीद करते हैं ये गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा। माला जी आपका साथ हमें मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये गाना आपके लिए भी। शिवरानी जी हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है ग्रोम्बुआ से, ये गाना आपके लिए भी।

और चलिए इसी के साथ आपकी पसंद इस प्रोग्राम के अंत तक आ गए हैं। आपको पता है आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो हमारा प्रोग्राम 4:15 खत्म हो जाता है। जाते जाते यहाँ पर मैसेजेस तो हमें अभी भी मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कौन है देखे, हैप्पी बर्थडे यहाँ पर रोसीदा, मामा रोसीदा जो 73 ईयर्स की हो रही है, आपको ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं रोसीदा जी, आपके पूरे परिवार की ओर से। नशरीन है, आफिया है, सभी परिवार आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वाकवा से पूरा परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है। जाते जाते यही गाना जो है विद्या जी आपके नाम भी हम करते हैं, और इसी गाने के साथ हमारा जो है आज का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी 4:15। आप निसार की पेशकश में गुलदस्ताए उर्दू इस प्रोग्राम को सुन पाएंगे और हम आपसे मिलने जल्द लौटेंगे। तो रेडियो मॉरिशस पर ऐसे जुड़े रहिए, साथ देते रहिए। धन्यवाद।

तदबीर के दस्ते रंगी से तकदीर दरख्शां होती है। तदबीर के दस्ते रंगी से तकदीर दरख्शां होती है। कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। सामईन गरामी, निसार अख्तर की तरफ से आदाब अर्ज़ हैं। उर्दू अंजुमन गुलदस्ते उर्दू में तमाम शायकीन उर्दू का हम समी में कल्ब से खैर मकदम करते हैं। उर्दू स्पीकिंग यूनियन की जानिब से ये खुसूसी प्रोग्राम पेश खिदमत हैं। सामईन, आपको याद होगा कि चंद हफ्ते कबल हमने उर्दू अफसानवी अदब के दरख्शां सितारा मुंशी प्रेमचंद और उनके शाहकार अफसाने ईदगाह पर गुफ्तगू की थी, जो अमूमन HSC के निसाब में शामिल हैं। आज इसी अदबी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम एक और फिक्रंगेज़ अफसाना गरमकोट की तरफ रुख करेंगे, जिसे मारूफ अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने कलम की लताफत से तख्लीक किया। अफसाना गरमकोट की दुनिया में कदम रखने से पहले आइए आपको साहिबे कलम से मुतारुफ करवाते हैं। प्रेमचंद के बाद उर्दू अफसाने को फिक्र व फन की नई जिहतों से रोशनास कराने में राजेंद्र सिंह बेदी खास अहमियत के हामिल हैं। उनकी पैदाइश सन 1915 को लाहौर में हुई। बेदी तरक्की पसंद तहरीक से भी वाबस्ता रहे। वो अपने पहले मजमुए की इशाअत पर ही सफ़े अव्वल के अफसाना निगार तस्लीम किए गए। उन्होंने दूसरे तरक्की पसंद अफसाना निगारों की तरह ना सिर्फ इनकलाबियत और समाजी शऊर जैसे मौजूआत को पेश किया, बल्कि उनसे हटकर जिंदगी के मानूस और छोटे छोटे मसाइल को अपने अफसानों में उजागर किया, जो जिंदगी के हकाइक पर नज़र डालकर उसकी गहराई में उतर जाते हैं। बेदी की अदबी जिंदगी का आगाज सन 1932 में हुआ। इब्तदा में उन्होंने मोहसिन लाहौरी के नाम से अंग्रेजी और उर्दू में नज़में और अफसाने लिखे, जो कॉलेज मैगजीन और मकामी अखबारात में शाया हुए। उनके अफसानों के 6 मजमूए हैं, बनाम, दाना उदाम, ग्रहण, कोक जली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ मेरे कलम हुए और मुक्ति बोध। ड्रामे के 2 मजमूए हैं, बेजान चीज़ें और 7 खेल। बेदी की तसानीफ में उनका नावल एक चादर मैली सी बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। उन्होंने कुछ फिल्में भी बनाईं जिनमें दस्तक खास मकबूल हुई।

0: क्यों हुआ?
1: मैंने कहा है, जो शख्स हकीकतन अमीर हो वो जाहिरी शान की चंदा फिक्र नहीं करते। जो लोग सचमुच अमीर हो उन्हें तो फटा हुआ कोट बल्कि कमीज भी तकल्लुफ में दाखिल समझनी चाहिए। तो क्या मैं सचमुच अमीर था के? मैंने घबरा कर जाती तज्जिया छोड़ दिया और बमुश्किल 10 का नोट सही सलामत लिए घर पहुंचा।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: मोहतरम सामईन, आपकी समागतों की नजर है प्रोग्राम गुलदस्ते उर्दू। इस महफिल अदब में एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। अभी आपने राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना गरम कोट समात फरमाया, यानी उसका पहला हिस्सा आपने सुना। एक ऐसा अफसाना जो मुआशरती हकाइक और इंसानी एहसासात का आईना मालूम होता है। सामईन, बेदी अपने अहद के बड़े और साहिब तर्ज अदीब तस्लीम किए गए। उनके फन पारों में मुतवस्सत तबके के मुख्तलिफ किरदारों, उनके रंगारंग माहौल और उनके माबेन इंसानी रिश्तों के उतार चढ़ाव से एक जहां मानी खलक हुआ है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सामईन कराम, इसी शेर को ज़ादेराह बनाते हुए आज की हमारी दिलावेज बज़्म गुलदस्ते उर्दू अख्तताम पज़ीर होती है। अगले हफ्ते अफसाना गरम कोट का दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उम्मीद है आज की ये अदबी नशिश्त आपकी समागतों के लिए बाइस मुसर्रत रही। अब निसार अख्तर आपसे इजाज़त लेता है, अगले जुम्मे को फिर मुलाकात होगी। आइए आखिर में पाकिस्तानी ड्रामा मेरी जिंदगी है तू से लिया गया नगमा आसिम अजहर की आवाज़ में आपको गोश गुजार कराते हैं। खुदा हाफिज़।

0: 890 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त शाम के ठीक चार बज रहे हैं. मोहतरम मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. खुदा पे है भरोसा, इसी पे नाज करता हूँ. इलाही तेरे ही नाम से इस बज़्म का आगाज़ करता हूँ.

और जिस तरह के हमने हाजियों से दुआ की दरख्वास्त की है, ज़रूरी है कि हम भी उनके लिए दुआ करें, क्योंकि अलबत्ता आज जो ख़बर हासिल हुई है कि हज के अय्याम में तकरीबन 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा टेम्परेचर, हरारत, दर्जे हरारत, तो जाहिर सी बात है इन हालात में हज के मनासिक आसान नहीं होंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कदम कदम पर हर हाजी को आसानियाँ फरमाए और उनको हज मबरूर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।

बेशक हर सू हर जगह हर तरफ हर पहलू बस एक सदा बुलंद हो रही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बिलयकीन ये वो सदा है जो हर एक को, जो बंदे मोमिन को अपने रब से ज़्यादा करीब तर करता है। आइए सामीन, बेशक आज पूरा प्रोग्राम इसी पर मुश्तमिल होगा, बल्कि कई हफ़्तों से इसी पर हम प्रोग्राम आपको पेश कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम भी इसी पर मुश्तमिल होगा इंशाल्लाह। आइए बाज़ाब्ता मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। बग़ौर अदब समात करके अपने दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

किसी भी शक्ल में हो, तकलीफ, मुसीबत, वो कल्ब सलीम वाले के लिए बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है। उसे जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबी नसीब होती है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब होता है। और उसके कामयाब होने का राज उसके पास कल्ब सलीम की दौलत होती है, जो अल्लाह की बारगाह से उसे अता की जाती है। अंबिया अलैहिस्सलाम का दिल हो, या सिद्दीकीन का हो, या शुहदा का हो, या फिर सालिहीन का हो, इन सब का दिल कल्ब सलीम है। सबके मुख्तलिफ मदारिज हैं, मनाजिल हैं, मरातिब हैं, लेवल्स हैं, अपने अपने मुकाम के एतबार से, अपनी आजमत और डिग्निटी के एंगल से, लेकिन है सबका कल्ब कल्ब सलीम। और अल्लाह पाक ने अंबिया अलैहिस्सलाम को कल्ब सलीम का वो लेवल अता किया जो सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के लिए नामुमकिन है, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए कि जिन जिन मुश्किलात का सामना अंबिया ने किया, जिन तकालीफ का सामना अंबिया ने किया, उसमें वो यकता अपने जमाने के फरीद यूनिक हुए। तो जो जो तकालीफ ज्यादा होती, मसाइब ज्यादा होते, तू तू अल्लाह पाक उस आरिफ, उस जाहिद, उस वली और उस आलिम के कल्ब सलीम के दरजे को, उसकी मंजिल को बढ़ाता चला जाता, ताकि हर मुश्किल जो उसके सामने आए वो मुस्कुराकर उस मुश्किल का सामना। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक ने जो इम्तिहान लिया, और फिर सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम का जो इम्तिहान लिया, वो कायनात का सबसे अलग और मुनफरिद और यकता इम्तिहान था। इसलिए अल्लाह पाक ने आपको कल्ब सलीम का वो दर्जा अता किया, उस मुकाम पे फाइज किया, ताकि आप इस इम्तिहान को खंदा पेशानी के साथ दें और उसमें कामयाब। सो ऐसे ही हुआ। कुरान में जा बजा उसका तस्किरा मौजूद है। सो अल्लाह जल्ला मजनहू इंसान को जितनी तकलीफ देता तो उतनी ही बर्दाश्त उसमें पहले से पैदा फरमा देता है। फिर वो तकालीफ, वो मसाइल अल्लाह की राह में, जो हक की तबलीग में पेश आए, जो हक के इजहार में पेश आए, जो सही अकीदा की इशात में पेश आए, जो राह वफा

में पेश आए, अल्लाह पाक फिर उस पे सवाब भी उसी लेवल का अता फरमाता है। सो अंबिया के पास और जो अंबिया के इल्मी और फिक्री रूहानी और हुब्बी वारिस हैं उनके पास कल्ब सलीम इसलिए होता है ताकि वो हर हर बातिल का मुकाबला कर सके, ताकि वो सुबह शाम हक को गालिब करने के लिए और बातिल को मगलूब करने के लिए आने वाली तकालीफ को खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर सके। कल्बे सलीम की एक अलामत है अल इखलास, सिंसियरिटी। अल्लाह पाक जब किसी को कल्बे सलीम अता करता है तो उसके दिल को इखलास के नूर से भर देता है, उसके दिल को खुलूस की रोशनी अता करता है, उसके दिल में खुलूस का चिराग होता, खुलूस के उजाले जाते। द साइन ऑफ दिस साउंड हार्ट इज सिंसियरिटी, अलामत कल्ब सलीम अल इखलास। कल्ब सलीम की पहचान इखलास से है। इखलास में इंसान जो भी काम करता है वो उसके और उसके रब के दरमियान होता है, वो शौक के लिए नहीं है, दिखावे के लिए नहीं है, पब्लिसिटी के लिए नहीं है, वो नेम और फेम के लिए नहीं है, वो फेमस होने के लिए नहीं है, फकत उसकी रजा के लिए। और बहुत सारी नेकियां ऐसी होती हैं कि जो फकत वो सालेह और नेक इंसान जानता है या फिर उनका रब जानता है। अल हिदाया फिक्ह हनफी की बड़ी अजीज किताब, लाजवाब किताब है। अब ये वो जमाना है कि हिदाया के पढ़ाने वाले भी ना रहे और उसके पढ़ने वाले भी ना रहे। अब दरस व तदरीस उसकी रस्म, वो अजीज किताब जो साहिब हिदाया ने असल में मतन लिखा, बिदायतुल मुफ्तदी फिक्ह हनफी में ये टेक्स्ट है मतन, फिर उसकी शरह उसकी कमेंट्री लिखी किफायतुल मुंतही 80 वॉल्यूम्स, फिर उसको समराइज किया 4 अज्जा में जिसको दुनिया में दुनिया इल्म फिक्ह में हिदाया के नाम से जाना जाता, जो सिलेबस में आलिम कोर्स में निसाब में सिलेबस में शामिल। इस किताब को उन्होंने 13 साल में लिखा और समराइज। इसकी शरह इनाया के मुकदमा में यह है और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने इसकी शरह बिनाया में लिखा इब्तिदा में कि मुसन्निफ ने हिदाया 13 साल में लिखी और 13 साल वो रोजे से रहे और रोजा इस तरह रखा कि ना अंदर वालों को मालूम ना बाहर वालों को मालूम कि आपका रोजा है। अपने मकान से जब उनके पास खादिम खाना लेके हाजिर करते और खादिम

चले जाते तो आप वो तलबा को खिला देते, दीन पढ़ने वाले उलमा को खिलाते। घर वाले ये समझते कि खाना तो बेच दिया, शायद खाया होगा। वहां के तलबा उलमा ये समझते कि शायद हमारे उस्ताद ने घर से खाया। न उन्हें मालूम होता कि ये रोजे से है, ना इन्हें मालूम होता कि ये रोजे से। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पाक ने उन्हें जिस लेवल का कल्ब सलीम दिया, उस लेवल का इल्म अता किया। और कल्ब सलीम की अलामत, बुनियादी अलामत यह है कि इंसान फिर जो करता है उसे वो जानता है, या फिर उसका रब जानता है, या फिर खालिद या मखलूक, या आबिद या मालूक। उसका मकसूद फकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा होती है। ना वो मखलूक के लिए करता है, ना उसे मखलूक की परवाह करता है। ये बड़े मुबारक दिन हैं जिनकी हर हर सुबह, हर हर शाम, हर हर दिन, हर हर रात नूर से भरे हुए, तजल्लियात से भरे हुए, हर सू मलकूती और मुस्तफ़ी रोशनी फैली होती है। इन दिनों में और रातों में अल्लाह से एक दुआ जरूर मांगे कि अल्लाह जल्ला मजदहू हमें कल्ब सलीम अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही अदद कमालिल्लाह व कमा यलीकु बिकमालिही। अल्लाहुम्मा इन्नी أسألك قلبا سليما والله I ask you the sound heart. اے اللہ میں آپ سے سلامتی والا دل مانگتا ہوں۔ جب دل سلامتی والا ہو جائے اور اخلاص کے نور سے روشن ہو جائے تو پھر اس شخص کی مثال لوگوں میں और दुनिया के अंधेरों में, तारीखियों में फजर जैसी जैसी। इसलिए सूफिया ने फजर की एक तफसीर कल्ब सलीम से की। अल्लाह ने फरमाया वल फजर, कसम है फजर की सुबह, यानी कल्ब सलीम की कसम। कल्ब सलीम की कसम इसलिए उठाई कि जिस तरह दुनिया में अंधेरा छा जाता है, तारीकी छा जाती है और फजर तुलू होती है, सुबह होती है, तो सुबह और फजर की रोशनी से सारे अंधेरे छट जाते। इसी तरह जब किसी माशरे में, सोसाइटी में हर सू दिल तारीख हो जाए, दिलों पर तारीकी छा जाए, तो अल्लाह पाक किसी मर्द कामिल को पैदा करता है और उसको कल्ब सलीम अता करके, कल्ब सलीम का नूर अता करके उस पूरे माशरे को रोशन करता। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस जमाने में पैदा हुए, जिन हालात में पैदा हुए, वो जमाना और जमाने के लोग ऐसे ही थे जिनके दिल शिर्क के अंधेरों से, कुफर के अंधेरों से भरे भरे थे। हर सू अंधेरा था, दिलों में रोशनी के का नामो निशान। आपने अपने कल्ब सलीम से, अपने उस दिल से जो फजर और सुबह के माने हैं, इस अंधेरे को जो

0: हर सू फैला हुआ था उसे दूर किया। रोश आपने हर सू तौहीद का चिराग जलाया, हर सू ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें सुनी और ला इलाहा इल्लल्लाह के चिराग से उस माशरे को रोशनी अता की, उसे नूर अता किया। तो अब जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह पाक से वो दिल मांगे जिस दिल में रोशनी हो, जिसमें नूर हो, और इतनी रोशनी हो, इतना हो कि वो हमारे दिल से निकलकर इस माशरे को रोशन करे, इस माशरे की तारीख को दूर करे। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वमा अलैना इल्ला البلاغ।
1: सामीन इकराम, अभी आप जुमा मस्जिद पोटली में आज जुमे के मुबारक मौके पर फरमाए गए वाज की रिकॉर्डिंग समाप्त कर रहे थे। हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद साक़ादी रज़वी दामत बरकतुल मालिया ने कली में क़ल्ब सलीम और उसकी अलामत पर रोशनी डाली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस साहब से मुखातिब हैं, 4:40 हो रहे हैं। चंद ऐलानात समाप्त कीजिए। इंशाल्लाह अगले 26 मई यानी कि मंगल 26 मई को बैतुल नूर सिते मौशाल पोटली में सुबह 10 बजे हज पर ख़ास प्रोग्राम का अहतमाम किया गया है। अलीमा शमीमा सुब्राची की सरपरस्ती में ये प्रोग्राम होगा। बेशक ये प्रोग्राम सिर्फ ख़वातीन के दरमियान होगा। और मॉरिशस में बरोज अरफात यानी बुध 27 मई को सुबह 10 बजे अलमदीना होल कॉन्फुको फिनिक्स में उस्तानी बेगम साजिदा रजब की सरपरस्ती में ख़ास अरफात के मुतालिक प्रोग्राम होगा। और ये प्रोग्राम भी बिलयकीन ख़वातीन के लिए है, ख़वातीन के दरमियान होगा। आज अंजुमन प्रोग्राम का उनवान होगा फ़लसफ़े क़ुरबानी, ईद उल अधा का फ़लसफ़ा, द फ़िलोसफ़ी ऑफ क़ुरबानी। और उसके फ़ौरन बाद अब्दुल रज़ाक हॉल यानी कि जो मस्जिद है उसके मस्जिद में, फिनिक्स की मस्जिद में शेख असलम दामद बरकत मालिया की सरपरस्ती में जिस महफिल नूरानी का अहतमाम किया गया था उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख सकेंगे। ये रहा चंद ऐलानात। आइए मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़े गए खुतबे की सदाबंदी समाप्त कीजिए।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: गीत और गजल रेडियो मॉरिशस पर। रेडियो मॉरिशस पर।

घड़ी मिला लीजिए, समय शाम के ठीक 5:01 हो चुके हैं। गीत और गजल इस कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्ना, आप पहुँची हूँ आज की इस महफिल को लेकर, जहाँ पर हम सजाएंगे इस महफिल को कुछ ऐसी बेहतरीन गज़लों के साथ। और आज की इस महफिल को आप बिल्कुल हमारा दिल से साथ दीजिएगा, और बेहतरीन से बेहतरीन गीतों के साथ आपका हम मनोरंजन करने की कोशिश करेंगे। ये इस महफिल की हम शुरुआत करते हैं आज के इस पहली गजल के साथ, जिसमें आवाज है अनूप जलोटा साहब की।

हकीकत से रूबरू हो चुके हैं, अब कोई ख्वाब सजाना नहीं है। बहुत की है गलतियां पहले, अब उन्हें दोहराना नहीं है। दोस्त

अब किसी को समझाना नहीं है। जो लोग पीछे छूट गए अब किसी को मनाना नहीं है। अब समझ गए हैं वजूद अपना, अब समझ गए हैं वजूद अपना, दूसरों के लिए खुद को मिटाना नहीं है। गीत और गजल के बीच रखी हुई ये नज्म, मशहूर आशा जी के आवाज में रखा हुआ ये गीत, फिल्म उमराव जान से लिया हुआ गीत है।

गीत और गजल 5:21 हुए हैं। अच्छा लगता है अकेले बैठकर अपने बीते हुए पलों को याद करना। कभी कभी बीते पल ही सबसे ज्यादा सुकून देते हैं। यादों में खो जाना भी एक तरह की मन को शांति देते हैं। कुछ पल बस दिल में ही अच्छे लगते हैं। अच्छा लगता है जब जिंदगी थोड़ी देर के लिए पीछे मुड़कर देखती है। यादें भी क्या कमाल की होती हैं, दर्द भी देती हैं और कई बार सुकून भी दे जाती हैं।

गीत और गजल आज के इस महफिल के साथ जुड़ चुकी हैं लीला जी, जो इस वक्त बाशेरी से साथ दे रही हैं और बहुत ही प्यार से साथ दे रही हैं सुनीता जी घोंघोब से। लीला जी कहती हैं उस तरफ में बड़ी जोरों की बारिश हो रही है और ऐसे बरसाती मौसम में ऐसी अनसुनी गजलों का लुत्फ़ उठा रही हैं। चलिए, बस दिल से आप साथ दे रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और हमारी जो अगली पेशकश है, ये भी एक बहुत ही मशहूर गज़ल और इसको गाया है हबीब वाली मोहम्मद साहब ने।

जिंदगी को धीरे धीरे करीब से जाना तो पता चला सब्र के सिवा कुछ नहीं। किसी ने किरदार पर उंगली उठाई तो सब्र, कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, कुछ मांगा और ना मिला तब भी सब्र। आशा जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रखी हुई ये गज़ल हमने अभी भी सुनी, फिल्म थी रज़िया सुल्तान। और चलिए इसी के साथ बेगम आबिदा परवीन को सुनते हैं।

दोस्तों, हमें खेद है कि ये गज़ल बीच में ही रुक गई। एक बहुत ही सुंदर नग़्म बेगम आबिदा परवीन की आवाज़ में रखी हुई ये नज़्म थी। आइए इसी के साथ एक और एक बेहतरीन गज़ल के साथ आगे बढ़ते हैं। गीत और गज़ल की ये हसीन शाम।

दोस्तों कहते हैं ना, हर याद शोर नहीं किया करती। हवा माफी तो मांगती है पर सारे पत्ते झड़ जाते हैं। कई बार जिंदगी हमें उनसे सामना करवाती है जिनसे जिंदगी में कई बार पहले हमने उनसे नाता तोड़ लिया होता है। इस आखिरी नज्म

के साथ आज की ये महफिल बस यहीं ख़त्म होती है। आप सभी ने हमारा तहे दिल से साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की ये हसीन शाम इसी गीत के साथ हम छोड़े जाते हैं। आवाज़ है मरहूम जगजीत सिंह साहब की, और आशा करते हैं आज की ये शाम हसीन बनी रहेगी। बिल्कुल 6 बजे आप जुड़ पाएंगे देश विदेश की खबरों के साथ, समाचारों के साथ, और इसी के साथ रेडियो मॉरिशस के कार्यक्रम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ रत्ना को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घने मिलाते चलिए, शाम के ठीक 6 बजे हैं। बाईस मई की तारीख, शुक्रवार का दिन। स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मॉरिशस और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली है। मॉरिशस पुलिस और न्यू मैक्सिको स्टेट नेशनल गार्ड के बीच हुए समझौते के तहत आपदा प्रबंधन, सुरक्षा पर प्रशिक्षण और आपात स्थिति से निपटने में दीर्घकालिक साझेदारी कायम की जा रही है। अमरीकी डेलीगेशन की मौजूदगी में SMF ने कानूनी व्यवस्था बनाए रखने की टेक्निकों का विशेष प्रदर्शन भी किया। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार नए पब्लिक हेल्थ एक्ट कानून लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए एक नियामक संस्था स्थापित की जाएगी। 20 वर्षीय विलियम विलो की मौत अब कई सवाल खड़े कर रही है। मुख्य आरोपी 18 साल का एक कॉलेज छात्र दावा कर रहा है कि उसका सामना एक कथित चोर से हुआ था। मामले की जांच जारी है और राजस्थल पर पूरे घटनाक्रम को फिर से दोहराया गया। भारत के चंद्रयान 3 मिशन को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अंतरिक्ष सम्मानों में से एक से सम्मानित किया गया है। चंद्रयान 3 ने साल 2023 में चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर इतिहास रचा था। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। मॉरिशस और अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग को लेकर आज एक नया समझौता हुआ। इसके तहत मॉरिशस पुलिस और अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट नेशनल गार्ड के बीच साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा, खासतौर पर सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी में। अमेरिकी डेलीगेशन की मौजूदगी में SMF द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने की टेक्निकों का एक विशेष प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया। इस तरह मॉरिशस और अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली है। मॉरिशस पुलिस और अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट नेशनल गार्ड के बीच तय इस समझौते के तहत आपदा प्रबंधन, आपात स्थिति में प्रतिक्रिया और सुरक्षा प्रशिक्षण जैसे सेक्टरों में दीर्घकालिक साझेदारी कायम की गई है। मॉरिशस इस अमरीकी सहयोग कार्यक्रम से जुड़ने वाला अफ्रीका का 24वां देश बन गया है। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार एक पब्लिक हेल्थ कानून लागू करेगी जिसके तहत सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए एक नियामक संस्था स्थापित की जाएगी। सरकारी कार्यक्रम 2025-2029 में घोषित इस पहल के तहत एक सदी से भी ज्यादा पुराने मौजूदा कानून पर फिर से गौर किया जाएगा ताकि देश को ऐसा आधुनिक कानूनी ढांचा मिल सके जो आज की महामारी संबंधी चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सके। देश के सरकारी अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा सेवाओं को नई मजबूती मिल रही है। पिछले 2 हफ्तों में 2 विदेशी विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मॉरिशस आकर स्थानीय मेडिकल टीमों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा की। दिल की बीमारियों के विशेषज्ञ प्रोफेसर मोहम्मद एल मगौरी और रेडियोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर एंड्रू लॉसन की मदद से सरकारी अस्पतालों में कई नई सर्जरियां सफलतापूर्वक की गई। इसे मॉरिशस के स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए एक

0: अहम उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। इस पर प्रस्तुत है प्रियंका हरि की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
1: 60 साल के जॉन-मार्क विल्भोइन विक्टोरिया अस्पताल के कार्डियक यूनिट में एब्लेशन से उपचार पाने वाले शुरुआती मरीजों में शामिल हैं। हृदय की अनियमित धड़कन के कारण उन पर ये सर्जरी की गई, देश के सार्वजनिक अस्पताल में पहली बार। ये उपलब्धि एक कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्पेशलिस्ट और इजिप्ट से एक रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट के सहयोग से संभव हो सकी।
2: So far we have done 14 cases.
1: 14 कठिन मामलों पर हमने काम किया है। इनमें कई लोगों ने अन्य जगहों पर इलाज कराया था जो असफल रहा। इतनी अच्छी टीम के साथ हम 100% मामले सुलझा पाए हैं।
2: All our cases are done with 100% success.
3: बन माजी डायरेक्टली ला नहीं ट्रेड लेता अभी बन मेडिकेमेंट तो बन मेडिकेमेंट।
1: इस बीमारी के लिए आजीवन दवाई लेनी पड़ती है। इस सर्जरी से अब व्यक्ति को ये दवाई नहीं लेनी पड़ेगी और वो सामान्य जीवन जी पाएगा। जीतू अस्पताल में 48 साल की जेनिफर माहिथों कील ने भी एक नवीन प्रक्रिया का लाभ उठाया। सिम्टोमैटिक फाइब्रोइड्स के इलाज के लिए उन्होंने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के माध्यम से मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कराई। ये भी सार्वजनिक सेवा में पहली बार। मैंने निजी इलाज कराया, अस्पताल आई तो भर्ती हुई, इससे बहुत सहायता मिली। इससे मरीज तेजी से ठीक हो जाता है, जोखिम कम होते हैं और बड़ी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। मरीज अपना गर्भ नहीं गवाती, यानी बड़ी सर्जरी की जरूरत नहीं, बहुत जल्द वो ठीक हो जाती है, मरीज को राहत पहुंचती है। कई मरीजों को विदेश जाना पड़ता था और अब यही पर इलाज हो पा रहा है। ये नई उपलब्धियां देश के सार्वजनिक अस्पतालों में विशेष चिकित्सा सेवाओं के विकास को दर्शाती हैं।
0: कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार एक पब्लिक हेल्थ एक्ट कानून लागू करेगी जिसके तहत सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए एक नियामक संस्था स्थापित की जाएगी। सरकारी कार्यक्रम 2025-2029 समय घोषित इस पहल के तहत एक सदी से भी ज्यादा पुराने मौजूदा कानून पर फिर से गौर किया जाएगा ताकि देश को ऐसा आधुनिक कानूनी ढांचा मिल सके जो आज की महामारी संबंधी चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सके। कुणाल गुजी की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
4: सलाह मशवरे की कड़ी में ये पहली बैठक रही जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से लगाई गई। मकसद एक ज्यादा मजबूत कानूनी ढांचा कायम करना जो वर्तमान चुनौतियों को पूरा करने के लिए 1925 के समय के कानून की जगह ले जो अपना प्रमाण दे चुका है।
5: How can we tell a patient who's already suffering, who's already given so much of test, that udoshin pyaji? This to me is unacceptable.
4: नए पहलू अनेक हैं। बेचे जाने वाले खाद्य सप्लीमेंट, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से जुड़ी बीमारियां, महामारियों के खतरों से बचने के लिए बंदरगाह और हवाई अड्डे पर प्रवेश बिंदुओं की निगरानी। स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक निदेशक अश्वमेध दिनासी ने कहा, उदाहरण के लिए पहले इबोला नहीं थी, कोविड नहीं थी, पब्लिक हेल्थ में परिवर्तन के साथ प्रणाली में सुधार हो रहा है। डॉक्टर दाऊद ओआरिस ने कहा, ये ड्रॉप देखेंगे, ये एक बहुत अच्छा कदम है, 100 साल में बहुत विकास हुआ है। WHO पहले ही स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं का ज्यादा फायदा उठाने और डिस्पेंसरी में विशेष उपचार उपलब्ध कराने की सिफारिश कर चुका है। इसके प्रतिनिधि अब्दुल सालेम गेये ने कहा, यदि स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नर्स होंगे, विशेषज्ञ भी वहां जाते रहेंगे तो बीमार बुजुर्गों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी, संक्रमण से भी बच पाएंगे। इस विधेयक में डिजिटाइजेशन केंद्र में रहता है। इसके तहत सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य संस्थानों के बीच एक डेटाबेस प्रणाली विकसित की जाएगी, साथ ही गोपनीयता के सिद्धांतों का भी पालन।

0: पालन किया जाएगा। मंत्री अविनाश राम टोहल ने कहा,
1: Who carries the liability? The doctor, the operator of that machine?
0: जवाबदेह कौन होगा? डॉक्टर, मशीन के ऑपरेटर, सरकार या मशीन के निर्माता? ये हमारे कानून में स्पष्ट नहीं है। कौन किसके प्रति जिम्मेदार होगा? ये नया कानून देश के शहरीकरण रोकथाम तंत्र, कार्यबल, प्रयोगशालाओं

0: साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा, खासतौर पर सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी में। अमरीकी डेलीगेशन की मौजूदगी में एसएमएफ द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने की तकनीकों का एक विशेष प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया। मीगान पुनमलाइकन की रिपोर्ट पर याशना मिश्रा का विवरण।
1: स्थिति तनावपूर्ण है। एसएमएफ के ये जवान एक उग्र भीड़ को शांत करने के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में बुलाए गए। चेतावनियों के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं। उनका सामना करने के लिए इस विशेष इकाई के सदस्य एकजुट हुए। वे प्रदर्शनकारियों को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए समन्वित कार्रवाई अपनाते हैं। आर्मर्ड वाहनों का इस्तेमाल अंतिम विकल्प है। SMF पुलिस का अंतिम विकल्प है। हम अंत में आते हैं आर्मर्ड वाहनों के साथ। कुछ अभियानों में विभिन्न इकाइयों के बीच सहयोग की भी आवश्यकता होती है। कई बार बचाव दल को कठिन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए पुलिस हेलीकॉप्टर की सहायता लेनी पड़ती है। रस्सियों के सहारे नीचे उतरने वाले इन अभियानों को अंजाम देने के लिए लगभग रोजाना प्रशिक्षण आवश्यक होता है। और जहां तक ड्रग्स के खिलाफ अभियानों का सवाल है, पुलिस का हस्तक्षेप समूह नियमित रूप से आरसू की सहायता के लिए तैनात किया जाता है।
0: मॉरिशस पुलिस और अमेरिका के न्यू मेक्सिको स्टेट नेशनल गार्ड के बीच तय इस समझौते के तहत आपदा प्रबंधन, आपात स्थिति में प्रतिक्रिया और सुरक्षा प्रशिक्षण जैसे सेक्टरों में दीर्घकालिक साझेदारी कायम की गई है। मॉरिशस इस अमरीकी सहयोग कार्यक्रम से जुड़ने वाला अफ्रीका का 24वां देश बन गया है। इस पर करुणा लालू का विवरण।
2: यह अभ्यास डिजास्टर रेस्पॉन्स यूनिट के अफसरों की प्रतिभा को दर्शाता है। ये ड्रिल एक इमारत के ध्वस्त होने से संबंधित है। यह अमेरिका और मॉरिशस के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौते में शामिल एक क्षेत्र है। ये न्यू मैक्सिको के राष्ट्रीय रक्षा दल और मॉरिशस की पुलिस फोर्स के बीच लंबे समय की साझेदारी से संबंधित है। मेजर जनरल मिगेल आगिला ने कहा, आपात स्थिति से निपटने और प्रशिक्षित होने के लिए आदान प्रदान का फायदा उठा पाएंगे। इस साझेदारी से एक दूसरे से सीख पाएंगे। पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सुरजबाली ने कहा, सुरक्षा को लेकर और साथ में क्लाइमेट चेंज की सभी स्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। उनके पास उचित साधन और उपकरण हैं, हमारी मदद करेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस और एसएमएफ के जवान भी उनकी तरह ऑपरेशंस के लिए प्रशिक्षित हों।
3: एसएमएफ और पुलिस भी फॉर्मे डॉ मेम कैपेसिटी की बनना फेयर वन ऑपरेशन।
2: राष्ट्रों के साथ साझेदारी प्रोग्राम एक अमेरिकी सहयोग पहल है जो कि 30 सालों से स्थित हैं। इस संधि के बदौलत मॉरिशस इस प्रोग्राम से फायदा उठाने वाला 24वां अफ्रीकी देश बन गया है। मॉरिशस में अमेरिकी दूतावास के शौशिद आफिया ने कहा, ये प्रोग्राम कई दशकों तक चलेगा। ये दीर्घावधि की संधि है जिसका मकसद समझबूझ, साझेदारी और दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करना है। गृह मामलों की सचिव फंगवन पुरन ने कहा, ऑपरेशन की एक योजना बनाएंगे जहां सुरक्षा और आदान प्रदान को केंद्र में रखेंगे। इस सहयोग की बदौलत मॉरिशस आपदा की स्थिति में हस्तक्षेप और तैयारी की अपनी क्षमता मजबूत कर रहा है ताकि जनता की बेहतर सुरक्षा की जा सके।
0: मॉरिशस को ऑटमी समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े राजनीतिक प्रतिबद्धताओं वाले समझौते हैं। अब तक 67 देश इन नियमों पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इनका उद्देश्य एक

0: ऐसा नेटवर्क तैयार करना है जो कई क्षेत्रों में सहयोग प्रदान कर सके, जिनमें तूफानों की दिशा का पता लगाना और जलवायु परिवर्तन प्रबंधन शामिल है। नासा के पूर्व डिप्यूटी चीफ टेक्नोलॉजिस्ट जिम एडम्स ने आज दोपहर पोर्ट लुइस में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से इस सिलसिले में मुलाकात की। आत्मरक्षा या हत्या, 20 वर्षीय विलियम विलॉ की मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मुख्य आरोपी 18 साल का एक कॉलेज छात्र है, कह रहा है कि उसका सामना एक कथित चोर से हुआ था। अब जांच में ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। इसी मामले में आज घटनास्थल पर क्या हुआ था, इसे फिर से दोहराया गया। हिंद महासागर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी समुद्री कार्रवाई, ड्रग्स तस्करों के खिलाफ समुद्र में बड़ा शिकंजा कसता नजर आ रहा है। दक्षिण हिंद महासागर में फ्रांसीसी नौसेना ने एक मछली पकड़ने वाले जहाज से 800 किलो से अधिक हेरोइन और अन्य ड्रग्स बरामद किए हैं। ये कार्रवाई 15 मई को समुद्र में जांच के दौरान चलाई गई। अधिकारियों के अनुसार पिछले एक महीने में इस रणनीतिक समुद्री क्षेत्र में ये चौथी बड़ी ड्रग्स जब्ती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांगो में फैल रहा इबोला वायरस अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये मौजूदा प्रकोप कई कारणों से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस बार वायरस का जो प्रकार सामने आया है इसके लिए अभी तक कोई स्वीकृत वैक्सीन मौजूद नहीं है। आस्था गोविंद चितामन का विवरण।
1: कोंगो गणराज्य में इबोला का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। WHO के अनुसार अब तक सैकड़ों संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। संक्रमण के कुछ मामले पड़ोसी देश युगांडा में भी दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इस बार फैला इबोला वायरस बुंदी बुग्यो प्रजाति का है, जो काफी दुर्लभ माना जाता है और पिछले एक दशक से अधिक समय बाद फिर सामने आया है। विशेषज्ञों के अनुसार इस वायरस के लिए अभी तक कोई स्वीकृत वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ संभावित टीकों पर भी काम जारी है, लेकिन उन्हें तैयार होने में कई महीने लग सकते हैं। इबोला एक गंभीर और जानलेवा वायरल बीमारी है, जो संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक द्रव जैसे खून, पसीना, उल्टी या अन्य संपर्क से फैलती है। इसके शुरुआती लक्षण सामान्य बुखार या फ्लू जैसे होते हैं, जिसमें तेज बुखार, सिर दर्द, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में तकलीफ शामिल है। बीमारी बढ़ने पर उल्टी, दस्त, शरीर के अंगों पर असर और कुछ मामलों में आंतरिक ब्लीडिंग भी हो सकती है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार कोंगो के कई प्रभावित इलाके संघर्ष और अस्थिरता से जूझ रहे हैं, जिसके कारण संक्रमित लोगों की पहचान, इलाज और निगरानी का काम मुश्किल हो गया है। WHO, मेडिसिन सान फ्रोंटियर यानी MSF और स्थानीय स्वास्थ्य टीमें प्रभावित क्षेत्रों में उपचार केंद्र स्थापित कर रही है, साथ ही लोगों को सावधानी बरतने, लक्षण दिखने पर तुरंत जानकारी देने और संक्रमित शवों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल इबोला से वैश्विक स्तर पर महामारी जैसी स्थिति का खतरा कम है, लेकिन अफ्रीका के प्रभावित क्षेत्रों में संक्रमण को तेजी से रोकना बेहद जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ किया है कि आने वाले हफ्ते इस प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
0: पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अमरीका और ईरान के बीच बातचीत जारी है। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि शांति वार्ता से कुछ अच्छे संकेत मिले हैं, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि समझौता नहीं होने पर अमरीका के पास दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। दूसरी ओर होर्मुज़ समुद्री मार्ग में तनाव बना हुआ है। ईरान के अनुसार पिछले 24 घंटों में 31 जहाज उसकी निगरानी में इस रास्ते से गुजरे। वहीं दक्षिणी लेबानन में इजरायली हमलों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। इस बीच तेल बाजार पर भी असर दिख रहा है। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, क्योंकि निवेशकों को अभी भी अमेरिका ईरान समझौते पर संदेह बना हुआ है। एक महाद्वीप, अनेक संस्कृतियां, लेकिन संदेश एकता का। अफ्रीका दिवस के अवसर पर मॉरिशस में इजिप्ट के दूतावास ने एबेन में एक विशेष समारोह का आयोजन किया। उद्देश्य अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग, एकजुटता और भाईचारे को और मजबूत करना रहा। इस अवसर पर विभिन्न अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे, जहां साझा इतिहास, सांस्कृतिक विविधता और अफ्रीका के सामूहिक भविष्य पर जोर दिया।

0: किया गया। क्रिस्टल लिबास की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
1: ये सिर्फ एक साधारण प्रदर्शनी नहीं थी। फहाओं की प्रतिमाएं और कई अन्य कलाकृतियों ने मेहमानों को एक समृद्ध और आकर्षक सभ्यता के केंद्र में पहुंचा दिया। इन सभी को अफ्रीका दिवस के अवसर पर विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। मॉरिशस में मिस्र के दूतावास ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया जो एकता और साझेदारी पर आधारित था। मॉरिशस में मिस्र के राजदूत अबीर आलम एल्दीन ने इस वर्ष की थीम जल के सतत प्रबंधन पर प्रकाश डाला। इजिप्त ने नाइल बेसिन में कई परियोजनाएं लागू की हैं और हाल में विकास के लिए साझेदारी की इजिप्शियन एजेंसी के तहत एक नई व्यवस्था शुरू की है जिसके लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रारंभिक फंड निर्धारित किया गया। मकसद नाइल क्षेत्र में विकास और बुनियादी ढांचे संबंधी परियोजनाओं के लिए धन जुटाना है। उद्योग और सहकारी मंत्री आदिल अमियामिया ने मिस्र को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में उसकी प्रशंसा की। उन्होंने जुलाई में होने वाले आगामी यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट के महत्व का भी उल्लेख किया। ये समिट एक बिजनेस इवेंट से बढ़कर अफ्रीका के भविष्य पर विश्वास का प्रतीक है। अफ्रीकी प्रतिभा, ठेकेदारी और अफ्रीकी महत्वाकांक्षा को दर्शाने का अवसर है। ये निवेश को बढ़ावा देने, साझेदारी को मजबूत करने और अफ्रीकी व्यापार के लिए नई संभावनाएं विकसित करने का अवसर है।
2: Strengthen partnerships and create new opportunities for African businesses and young entrepreneurs.
1: ये शाम अफ्रीकी एकता, ऐतिहासिक विरासत और आर्थिक चुनौतियों के नाम रही।
0: रेपो रेट में बदलाव नहीं होना चाहिए था। विपक्ष नेता जोली जोगो ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। आज पोर्ट लुइस में आयोजित प्रेस सम्मेलन में उन्होंने मंत्री पत्रिका सियावादेन के हालिया बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। जोली जोगोत का कहना है कि सेंट्रल एलेक्सटी बोर्ड से कंसोलिडेटेड फंड में ट्रांसफर की गई राशि कोविड महामारी के दौरान जनता की मदद के लिए इस्तेमाल की गई थी। अन्य खबरों में कई श्रमिक संगठनों ने कल एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया जिसके दौरान विदेशी कामगारों के अधिकारों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। संगठनों ने उनके लिए बेहतर नौकरी परिस्थितियों की मांग भी की। इसके अलावा आने वाला बजट, बढ़ती महंगाई और 40 घंटे कार्य प्रणाली जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दासा अपाला स्वामी की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
3: प्रेस के समक्ष कॉन्फ़ेडरेशन दे सेक्टर पब्लिक ए प्रिवे ने मॉरिशस द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फॉर्म की दूसरी घोषणा को अपनाने के दौरान किए गए परहेज पर सवाल उठाया। श्रमिक संघ ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा स्थापित भर्ती प्लेटफॉर्म की भी आलोचना की। उनका कहना है कि ये कुछ सुरक्षा उपायों और विदेशी श्रमिकों के अधिकारों को नज़रअंदाज करता है। सभी भर्ती ईडीबी से होती है, यानी श्रम मंत्रालय के तहत ये नहीं आती है, यानी श्रम मंत्रालय के किसी भी नियम के तहत ये नहीं आती है। दूसरी ओर कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन बेहतर प्रक्रियाओं की मांग कर रही है ताकि ये तय किया जा सके कि कुछ क्षेत्रों में वास्तव में श्रमिकों की कमी है भी या नहीं। हम विदेशी कर्मचारियों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि क्या मॉरिशन काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं या काम नहीं करना चाहते। 40 घंटों के कार्य सप्ताह पर भी बात चली। कांग्रेस ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन से राधाकृष्ण आचार्य ने कहा कि सख्त निगरानी जरूरी है ताकि विदेशी कामगार अवैध तरीके से यहाँ न रह पाए।
4: Nous besoin travailler migrant bien sûr, mais travailler migrant pas capable illégalement dans Maurice. Donc elle a mal mesuré.
3: हमें प्रवासियों की जरूरत है, लेकिन उनकी स्थिति अवैध नहीं होनी चाहिए। सख्त कदम चाहिए क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो अवैध तरीके से यहां पर रह रहे हैं। जीवन व्यापन में बढ़ोतरी के कारण कर्मचारियों को अतिरिक्त कंपेंसेशन देने की मांग की गई। खाद्य सुरक्षा और कानून सख्त करने की मांग भी की गई।
0: कई हफ्तों के रोमांच और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद ORM1 पर प्रसारित बिग BYD विन प्रतियोगिता का परिणाम आज शुक्रवार 22

0: इस मई को घोषित किया गया। राधा कृष्णा गुप्ता सीसन ने ग्रैंड फिनाले जीतकर एक नई बीवाईडी डॉल्फिन सर्फ कार अपने नाम की। अप्रैल में शुरू हुई इस प्रतियोगिता ने दर्शकों को अंतिम लाइव मुकाबले तक बांधे रखा। आखिरकार सभी प्रतियोगियों के बीच राधा कृष्ण गुप्ता सीसन विजेता बनकर उभरी। कहानियों की दुनिया में नन्ही आवाजों ने कल्पना, भाषा और अभिव्यक्ति का सुंदर संगम पेश किया। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रेड 5 और ग्रेड 6 के प्राथमिक स्कूलों के छात्रों के लिए हिंदी कहानी कथन प्रतियोगिता के प्रारंभ दौर का अंतिम आयोजन किया गया। देश के चारों जोन्स के स्कूलों से आए विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ भाग लिया। इस पर पेश है ये रिपोर्ट।
1: इस कहानी की शिक्षा झूठ बोलने वाले का कोई विश्वास नहीं करता।
0: कुल करीब 100 नन्हे प्रतिभागियों ने अभिनय, आवाज में उतार चढ़ाव, चित्रों, मिमिक्री और विभिन्न प्रॉप्स का उपयोग कर अपनी कहानियों को जीवंत बना दिया।
2: जब शेर शिकार कर रहा था, वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। चूहा बोला,
3: जब मैंने आपसे कहा था कि एक दिन मैं आपकी उदारता।
0: उनकी प्रस्तुतियों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण संदेश भी दिए। इन कहानी कथनों के माध्यम से नैतिक मूल्यों, सामाजिक विषयों और प्रेरणादायक संदेशों को प्रस्तुत किया गया। बच्चों ने ईमानदारी, दया, साहस, समय और सम्मान जैसे मूल्यों पर आधारित कहानियाँ सुनाई।
4: मैंने शेर और चूहे की कहानी सुनाई। इस कहानी में मुझे 2 दिन लगे और मेरी बहन जी ने सहायता दी। इस कहानी को सुनाने के लिए मैंने प्रॉप्स का इस्तेमाल किया, जैसे एक जंगल, एक शेर और एक चूहा।
5: आओ सुनिए यह कहानी, ना ही राजा ना ही रानी। मेरी कहानी है, छोटी सी थी, बहुत प्यारी थी, सबकी दुलारी थी। अगर माँ व्यस्त होती तो पिताजी खाना खिला देते, पिताजी दफ्तर में होते तो दादा दादी की गोद में मस्त चाव से भोजन का आनंद और चैन की नींद। ये कहानी इसलिए चुनी क्योंकि हमारी कक्षा में और अनेक पाठशालाओं में बहुत बच्चे हिंदी और भोजपुरी को भूल रहे हैं, जो हमारी शान है, और इसको भूलेंगे तो हमारी शान गायब हो जाएगी। प्राचीन युग, आधुनिक युग और भविष्य युग में भी जय हिंदी और जय भोजपुरी होती रहेगी।
6: 10 दिन पहले अध्यापिका जी ने एक स्टोरी बनाई थी, सच्ची दोस्ती, सो मैंने उस पर रिवाइज किया।
7: ये कहानी मैंने इसलिए चुनी क्योंकि लालच बुरी बला है और हमें दूसरों का हक नहीं छीनना चाहिए।
0: हिंदी स्पीकिंग यूनियन के इस सराहनीय पहल ने बच्चों में भाषा और साहित्य के प्रति रुचि विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
8: छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें कहानी विधा से बहुत प्यार है, तो संगठन चाहता है कि बचपन में बच्चों को अभी से अगर वे कहानी सुनना, कहानी सुनाना पसंद करेंगे तो साहित्य के प्रति, क्योंकि कहानी तो साहित्य की एक विधा है, उस लिटरेचर के प्रति उनकी रुचि जागेगी। तो उद्देश्य यही है कि आत्मविश्वास से आप मंच के सामने आइए, हिंदी में कॉन्फिडेंस से बोलिए, अपनी कहानी सुनाइए, मूल्य समझाइए लोगों को, और दूसरे बच्चे भी आपको जब सुनेंगे तो साथ साथ सीखेंगे और हिंदी भी पढ़ेंगे।
0: रचनात्मकता, आत्मविश्वास और हिंदी भाषा के प्रति प्रेम से भरपूर ये प्रतियोगिता बच्चों की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के साथ साथ हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने का एक सुंदर प्रयास साबित हुआ, जिसका फाइनल अगले 28 मई के लिए निर्धारित है। मॉरिशस के हाजी अब सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं और कई शहरों में हज से पहले की आखिरी तैयारियां चल रही हैं। 24 मई से शुरू होने वाले हज में इस साल करीब 1500 मॉरिशन हिस्सा ले रहे हैं। इस पाक सफर को लेकर हज अदा करने वाले लोगों में खुशी और खास उत्साह देखा जा रहा है। कोयल सितल की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
9: लगभग 1500 मॉरिशन हज यात्री सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। हज जो इस्लाम का 5वां स्तंभ है, जिसे सब्र और इबादत की भावना के साथ किया जाता है।
10: Ça fait du bien pourtant. Liane Zafek, qui est essentielle dans nous la vie, vu qu'il y a un pilier pour nous.
11: Nous lis

0: d'une manière parce qu'il nous gagne l'invitation, ça qui est plus complice, peut-être capable d'une capacité financière ou la santé, mais si je ne suis pas gagné l'invitation, je ne pas pour venir.
1: Si je gagne l'occasion, venir jeune, définitivement venir, parce qu'il donne beaucoup de courage.
2: En tant que mon monsieur, pas attendre, pas causer, mon garçon, il accompagne moi, il amène nous. Mais je suis bien content de venir avec ce groupe-là et je suis satisfait. Tout le monde a fait, tout le monde passe bien.
3: हज की शुरुआत में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, अंतिम तैयारियां जारी हैं। मॉरिशस हज मिशन के सदस्य मंत्री शकील मोहम्मद के साथ मीना और अराफात का निरीक्षण दौरा कर चुके हैं, ताकि मॉरिशन हाजियों के स्वागत, आवागमन और मार्गदर्शन की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सके। ये सब सऊदी अधिकारियों के सहयोग से किया जा रहा है। मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा,
4: Tout peut augmenter, mais avec la négociation dure que M. Ayoub Saab finit à mener, chaque pèlerin finit payer 500 riyals en moins.
3: ऐसे समय जब सब कुछ बढ़ रहा है, सब दाम में वृद्धि है, वही कठिन बातचीत की बदौलत हर एक हज यात्री ने 500 रियाल कम चुकाया है गत साल के मुकाबले, लेकिन सेवा बेहतर है, एसी है, शेल्फ्स की भी सुविधाएं हैं। हर 24 से 29 मई तक चलेगा। इस साल दुनिया भर से 2 मिलियन से ज्यादा मुसलमान मक्का पहुंचे हैं। इस रूहानी यात्रा को पूरा करने के लिए मॉरिशन की तंबू एक दूसरे के करीब होगी, ताकि इस यादगार ठहराव के दौरान बेहतर समन्वयन यानी कोऑर्डिनेशन हो सके।
5: विदेश में चांद पर भारत की ऐतिहासिक उड़ान को अब दुनिया ने भी सबसे बड़ा सम्मान दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान 3 मिशन को प्रतिष्ठित 2026 गॉडॉट एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साल 2023 में चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर इतिहास रचा था। इसके साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के पास चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना और दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया है। और वहीं पर झुलसती धरती और आग, उगलता आसमान भारत में गर्मी परेशानी का कारण बन गई है। सूरज की तपिश अब लोगों पर भारी पड़ रही है। भारत के उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में है। यूपी लगातार चौथे दिन देश का सबसे गर्म इलाका बना रहा, जहां तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं मौसम के हाल की ओर।

मौसम का हाल सुनिए। आम हालत मास्कारेंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर आज रात से सामान्य तथा ठंड हवाओं का बहाव है तथा दक्षिण से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, शाम के समय बादल घिराएंगे और रहकर वर्षा होगी, विशेषकर देश के आधे दक्षिणी भाग में और पूर्व एवं ऊंचाइयों पर। चंद जगहों पर कोहरे छाए रहेंगे और बाद में हल्की बारिश होती रहेगी ऊंचाइयों पर, अन्य जगहों में आसमान साफ होगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और रात के दौरान हवा और जोर पकड़ेगी तथा चंद जगहों में झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से 3 मीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में विशेषकर पश्चिम और दक्षिणी लगूनों में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच, तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त शाम 5:39 पर और कल सुबह सूर्योदय 6:34 पर।

0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है और साथ में कंसल पर हमारे सहयोगी शिव का भी। सुनने वालों को भी हम धन्यवाद देते हैं साथ देने के लिए। अब बढ़ती है शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। एरोस्लिन पेंडीपापाई में सैतालीस साल के 47 ईयर्स ओल्ड के श्री सुरेंद्र भिखारी जिन्हें अजय के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी रविवार को सुबह 10:30 बजे उनके घर पेंडीपापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन ऑन संडे एट 10:30 AM। गुदबासें काट्रोबोन में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री अजय कुमार करमचंद जबू जिन्हें कुमार के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो पहले एवेन्यू कोलविल बेलरोज रहते थे की मृत्यु हो गई है और वे पहले काट्रोबोन नगर पालिका में काम करते थे। उनकी अर्थी कल शाम 3:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुचिता जबू के घर काट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामामेल की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुमोरो 3:30 PM। नंबर 22 रू इंडिपेंडेंस पोर्ट लुइस में 80 ईयर्स ओल्ड की कुमारी सावित्री दलू जिन्हें अमृता के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके भतीजे अश्विन दलू के घर पोर्ट लुइस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबोक शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 1 PM। टेम्पल रोड बुबुआ मोका में 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री देवानंद भट्टू जिन्हें पोगरिये के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके भाई प्रीतम भट्टू के घर बुबुआ मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकों ससैपिया की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 2 PM। पुचित काबान रोड कौंडमास्कपावे में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री केवल भट्टू जिन्हें अनिल सोफेबिस के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनके घर कौंडमास्कपावे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंडमास की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 11:30 AM। नंबर 14 रूट प्रिजों मोरोश बुबासे में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विद्यावती सीता जिन्हें प्रतिभा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके बेटे सुबह बेबी चंद्रगासन के घर बुबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 11 AM। रॉय रोड बायाश मोताइलोंग में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती नालिनी बहुआ पैदाशनम पदारत और जिन्हें नलिनी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 1 बजे उनके पति श्री सुभाष बहुआ के घर बयाश मोताइलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खेव के शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 1 PM। एरोस्लिन पेंडीपापाई में 47 साल के 47 ईयर्स ओल्ड के श्री सुरेंद्र भिखारी जिन्हें अजय के नाम से बहुत ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी रविवार को सुबह 10:30 बजे उनके घर पेंडीपापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन ऑन संडे 10:30 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: सीबी की ओर से कम्युनिके सुनिए। सीबी अपने ग्राहकों को जो इन जगहों पर रहते हैं, मोसेलमा ऑनतेल्म, मोसेलमा देवोयन, मोसेलमा मुनियन, मोसेलमा मोराबी, मोसेलमा ओसानी, कॉम्बुम्बाई, मोसेलमा प्याद का एक हिस्सा, कॉन ले जूज का एक हिस्सा, डर्बी स्ट्रीट का भी एक हिस्सा और सेंट लुक, बर्ग, ला ब्रास्टरी, ला कोलोम्ब, जास्मिन, अटले, उन्हें सूचित किया जाता है कि रविवार 24 मई को सुबह 8:30 से लेकर दिन के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती की जाएगी। किसी भी असुविधा के लिए सीबी आपसे क्षमा प्रार्थी है।
1: सीबी अपने ग्राहक जो माद ऑस्ट्रेलिया, पोपासले और आसपास के इलाकों में रहते हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि शनिवार सुबह 8:30 से लेकर दिन के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के पूरा होते ही बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को एक बार फिर जारी कर दिया जाएगा। किसी भी असुविधा के लिए सीबी आपसे क्षमा प्रार्थी है।
2: रुद्रनाथ मंदिर सोलफरिनो, सनातन सभा, तुलसी भवन और भारत से आए श्री अजय याग्निक ग्रुप के सहयोग से एक महीने का रामायण पाठ और प्रवचन का आयोजन 16 मई से हो चुका है। 31 मई तक का कार्यक्रम कुछ इस तरह, रामायण पाठ और प्रवचन मॉरिशस रामायण मंडली द्वारा, जिसके बाद आरती होगी और महाप्रसाद भी दिया जाएगा। समय रहेगा 7:00 से 9:00 के बीच। जगह रुद्रनाथ मंदिर, तुलसी भवन, सोलफरिनो नंबर 1, वाकवा। और फिर 1 जून से 13 जून रामायण पाठ और प्रवचन श्री अजय याग्निक और ग्रुप द्वारा, और सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रीमती स्नेहा याग्निक द्वारा जो भारत से आए हैं। समय रहेगा 7:00 से 9:30। 14 जून को समाप्ति श्री राम यज, पूर्णाहुति और आशीर्वाद के साथ। समय रहेगा 9:00 से 12:00, जिसके बाद महाप्रसाद भी दिया जाएगा। उमानाथ मंदिर मोताई ब्लॉश अखंड रामायण गान का आयोजन कर रहा है। शनिवार 23 मई सुबह 5:00 से रविवार 24 मई सुबह 11:00 तक। शनिवार 23 मई से रविवार 31 मई तक यहोदे रोड लालमाची में शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है। व्यासवाचक होंगे पंडित सुधाकर शर्मा महावीर। इस कथा के अंतर्गत हिंदू धर्म के गहन विषयों पर चर्चा की जाएगी। समय है 7:30 से 9:30 तक। रविवार 31 मई को पूर्णाहुति का समय रहेगा 9:00 से 12:00 तक।

0: This is Radio Marches.
1: Assalamu alaikum. Kim to Mauritius.
2: Namaskar.
3: Shotarandariki Hrudaya Purvaka Namaskaram.
4: Ungal anaivarukkum vanakkam.
5: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
6: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। बजले प्रभु का नाम। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, ईश्वर का नाम कुछ समय के लिए ही सही, जब हम उनके साथ जुड़ते हैं तो मन हल्का होने लगता है, क्योंकि कुछ बातें हम संसार से नहीं कर पाते हैं। संसार मजाक उड़ा सकता है, संसार हमें गलत रास्ता दिखा सकता है, संसार ईर्ष्या कर सकता है, लेकिन ईश्वर का दरबार एक ऐसी जगह है जहां हम आंसू भी बहा सकते हैं, हंस भी सकते हैं, दिल की बात भी कर सकते हैं। बस इसी का नाम है भजले प्रभु का नाम। श्रोताओं, उस प्रभु से जुड़कर एक बार जब हम उस चीज़ की अनुभूति करने लगते हैं, बस तब उस प्रभु को हम महसूस करते हैं। इसीलिए बार बार हम उनके नाम का स्मरण करते हैं, क्योंकि जब नाम स्मरण करते हैं तब हम स्वयं समय के उस चक्र

जिसमें ईर्ष्या, लोभ, मद, मत्सर है, उससे मुक्त होने लगते हैं। अन्यथा यह जो हमारा मन और मस्तिष्क है ना, ये बहुत नकारात्मक हो जाता है। अपने आप को सकारात्मक बनाने के लिए भज ले प्रभु का नाम। आइए इस भजन को सुनते हैं।

श्रोताओं, कृष्ण का रूप कुछ ऐसा है जो खींचता है। कृष्ण शब्द कृष धातु से बना है। एक ओर जहाँ कृष्ण का रूप गोपालक है, जहाँ गोवर्धनधारी है, वहीं पर वह आकर्षक भी है। उसके रूप, गुण, उसके कार्य, उसकी लीलाएं इतनी आकर्षक हैं कि भक्त उससे बंधता चला जाता है, उसके प्यार की रस्सी को खोलना ही नहीं चाहता है। जब कृष्ण का व्यक्ति नाम लेता है तो उसके अनेक रूप उसके सामने आते हैं। कभी कृष्ण बाल रूप में हैं, तो कभी गीता का उपदेश देते हैं, कभी वे सुदामा के साथ सखा रूप में हैं, तो कभी वे

अर्जुन के मार्गदर्शक बन जाते हैं। अर्थात हमारा मन जिस समय कैसे भी समस्या में उलझ रहा हो, कृष्ण हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन भजले प्रभु का नाम तो जरूरी है ना, यदि हम उन्हें याद ही नहीं करते तो कैसे वे हमारे साथ जुड़ेंगे। जब तक हम बार बार उनका स्मरण नहीं करेंगे, उनके गुणों को अपने हृदय में कैसे उतार पाएंगे। तो आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, कृष्ण ने अपने जीवन काल में सभी को सुख देने का प्रयास किया, सभी का मार्गदर्शन किया, चाहे वह दुर्योधन भी था। लेकिन यदि कोई सदमार्ग पर नहीं चला तो कृष्ण ने फिर दूसरा रास्ता अपनाया, जो जरूरी है, क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण की बात को माना।

पांडवों ने कृष्ण को अपना गुरु माना तो रास्ता खुलता गया। देखना यह है कि हम किसे अपना गुरु मानते हैं। क्या हम कृष्ण के उस रूप का स्मरण करते हैं? क्या हम उन्हें अपना सखा मानते हैं? क्या हम उन्हें अपना गुरु समझते हैं? क्या हम उनकी बताई बातों को पढ़ते हैं या उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं? तो जब तक हम उन चीज़ों से जुड़ेंगे नहीं, तब तक उसके रूप को कैसे समझेंगे? लेकिन उस रूप तक पहुंचने के लिए पहले उसका नाम जपना पड़ता है। नाम स्मरण भक्ति का आधार है। तो आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, जब नाम स्मरण करते हैं तो वह रूप हमारे सामने कभी साकार तो कभी निराकार रूप में उतरता है। साकार हमारे अपने मन मस्त

दृश्य की कल्पना या जो कुछ हम मंदिर इत्यादि में देखते हैं वह रूप सामने आता है, और निराकार जो हमें भीतर एक शक्ति प्रदान करता है जो हमारे भीतर धीरे धीरे उतरने लगता है और हम संसार की जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनसे दूर होने लगते हैं, हमारा ऑरा या हमारी ऊर्जा मजबूत होने लगती है और फिर नकारात्मक चीज़ें हमें प्रभावित नहीं कर पाती हैं। इसीलिए भजले प्रभु का नाम बहुत ज़रूरी है। तो सुनते हैं

हरे कृष्ण धुन गाते गाते एक कुएं में गिर गए। कृष्ण को पुकार लगाई, कृष्ण आ गए और ले चले सूरदास को कुएं से निकाल कर बाहर। सूरदास तो समझ गए ये और कोई नहीं, ये मेरे कन्हैया हैं। पकड़ लिया हाथ। कृष्ण बोले अब तो छोड़ दो, मैं तो तुम्हें छुड़ाने आया था बस। सूरदास बोले नहीं, तुम और कोई नहीं, मेरे कन्हैया हो। कन्हैया बोले नहीं सूर, मैं तो बस साधारण ग्रामीण हूं, यहां से गुजर रहा था, तुम्हें गिरे हुए देखा तो निकाल दिया। सूरदास ने कहा नहीं, मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम ही मेरे कन्हैया हो। और कृष्ण ने हाथ छुड़ाया और भाग गए।

0: और अंत में श्रोताओं, प्रभु का नाम जिस तरह की हमें शक्ति देता है इस संसार सागर में तैरने के लिए, उसकी बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर सुनामी भी है, यहाँ पर तूफान भी हैं, जीवन के सुख दुख उतार चढ़ाव बहुत कुछ है। कभी कभी तो हम संभाल भी नहीं पाते हैं और संभल भी नहीं पाते हैं, लेकिन यदि वह शक्ति हमारे साथ हो तो हर बार हमारी नैया पार हो जाती है। तो ज़रूरी है भज ले प्रभु का नाम, उनका नाम बार बार ध्यान करना। हर पल यदि वह हमारे भीतर उतर जाए तब हम इधर उधर की बातों से बचने लगते हैं, और जितना हम इन छोटी इधर उधर की बातों से बचते हैं उतनी हमारी ऊर्जा बढ़ती है। तो अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए भी प्रभु का नाम जपते हैं। प्रभु का नाम जहाँ एक ओर ऊर्जा को बचाता है, वहीं पर ऊर्जा की क्वालिटी को भी बढ़ाता है। इसीलिए भज ले प्रभु का नाम। बस श्रोताओं, इस अंतिम भजन के साथ अलका धनपत और अंजू जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: ऐसी धारणा है कि मृत्यु के बाद मनुष्य स्वर्ग या नरक में जाता है अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए, लेकिन सत्य यह है कि स्वर्ग और नरक इस धरती पर ही है। प्रत्येक मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही फल उसे भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी उसे इस जीवन में इस धरती पर ही भोगना पड़ता है।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये रेडियो मॉरिशस है। परवीज आपसे मुखातिब है। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी रहमत शफाए महशर मालिक दो जहां जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आप तमाम सामीन खैर आफियत से हैं। जहां से भी आप हमारे साथ निभा रहे हैं, आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। तो आइए मज़ीद सामीन, उर्दू नशरियात बनाम महफिल शब का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत हमद कलाम के साथ, जो हमारे दिलों को रूहानियत और सुकून से भर दे।

लब पे तेरा ही नाम आया मौला, दिल को जब भी सुकून चाहिए था मौला, तूने सहरा को गुलिस्तां कर दिया, कतरा आप को दरिया कर दिया। मज़े सामीन, माह जुलहज अपनी रहमतों, बरकतों और रूहानी खुशबुओं के साथ हमारे दिलों और जिंदगियों को मुनव्वर कर रहा है। ये महीना, खासकर ये 10 दिन अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत अजमत वाले हैं। इन 10 दिनों में किया जाने वाला हर नेक अमल आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा फजीलतें रखता है। ये वो मौका है जब बंदा अपने अल्लाह के करीब तर हो सकता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर सिमत दे सकता है।

चाहिए। ये रेडियो मॉरिशस है, परवीज़ा का साथ है उर्दू नशरियात महफिल शब रात के 9 बजे तक। लब्बैक की सदा से फ़ज़ा जगमगा उठी, रहमत खुदा की

एक रूहानी सफ़र बन सकती है। या अल्लाह, जो खुश नसीबों को तूने अपने घर बुलाया है उनका हज कबूल फरमा, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। तकनीकी मदद अंजू की रही है, मशकूर व ममनून है हम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक परवीज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।
2: नमस्ते सबको के हमने के सब श्रोता लोग के और हमने के श्रोता लोग के स्वागत भी करते हैं जहाँ हमने के कार्यक्रम है भोजपुरी तड़का में। हम सुरेखा तर खातिर लेके आओ अब वही सब गाना जिनके फरमाइश करवा जा। चलो संगे संगे रह जाए 11 बजे कभी 9:16 होल बा 11 बजे संगे संगे रह जाओ और तोहर फरमाइश पूरा करब जा। चलो हम सबसे पहला तो लोग एगो गमठ वाला गीत सुनवाओ अब जा। रोशन सदा सिंह जी के गमठवा वाला गाना चला सुनिए जा सबसे पहला।

भोजपुरी कमेंट करते रहिए जा, भोजपुरी के ही संगीत में घुलते रहिए जा, और यहाँ के कार्यक्रम में तो भी भाग लेते चलिए जा, भाग ले ले हवन। सबसे पहला आत्माराम चाचा जी, आत्माराम जी बेलिया से मंगले हवन। साहिल जगारू जी के गावल गाना, साहिल जगारू जी के गावली गीत। आत्माराम जी मंगले हवन। अपन बहन प्रभावती, बहन ललिता, बहन सुदेवी और बहन छोटी खातिर और पूरा स्नो परिवार खातिर बेलिया के

अब चला बढ़ी जागे बढ़ते बढ़ते हम गिरीश रूपचंद जी के गावल गाना सुनी जा ललिता जी के पसीन पर थैले के ललिता जी मंगले हवन गाना अपन बहिन सुदेवी खातिर देवयानी ज्ञानी खातिर बहिन छोटी जी प्रभावती जी खातिर हरीश जी खातिर और आत्माराम जी खातिर सुखलाल मौसी और उषा लुकाना माला राम जवन खातिर।

और चला अभी कुछ सुनी जा हमने प्रवेश सहाय जी के गावेले को गाना और ये गाना हमने अनीता जी खातिर बजवावत है जा अनीता जी मदालबिया से इतु परिवार खातिर मंगले वनी गाना गोगा परिवार महादेव परिवार लालजी परिवार खातिर चला सुनी जा प्रवेश सहाय के खूबे जोली बाछू गड़िया

और आगे बढ़ब जा तो हमी के दादा दादी के कहानी सुनब जा, हमी के पूर्वज लोग के कहानी सुनब जा, गासन सिंगारों जी सुनैन हमी के दादा दादी लोग कैसे हमी के देश में अलन जा और कितना दुख सहलन जा, बकिर हमी के देश के प्रगति के राह पर जरूर लेके गएलन जा। चला सुनी जाई गाना गासन सिंगारों जी के गावल सुनीता जी के अनीता जी के पसंद पर फ्लिक ऑफ लाख से अनीता जी मंगलवानी गाना अपन बहन शोभा खातिर अनुराधा और लक्ष्मी खातिर। चला हमने दादा दादी के कहानी सुनी जा गासेन सिंगारों जी।

दादा की कहानी सुनने के बाद चला हमने सुनीता ननकुज की आवाज़ सुनी जा। सुनीता ननकुज गैले हवन चमेली चमेली गाना, और ये गाना बड़ी पसंद कर ले हवन अमृता जी पीतों से। अमृता जी गाना मंगले हवन सोनिया और परी खातिर, मीनाक्षी और विशान खातिर।

તો ચાલો આપણે કુથામની બડકી મસાલા પીસેલા છુટકી મંછલી का करेला चला सुनी जाए गाना। और ये गीत हमने बजावा था जय कृष्ण श्रीदेव जी के आवाज़ में, मंगले हवन गाना हमने से गायत्री जी ने।

अल्फॉन्स गीत मंगलवन अपन बेटा अजय खातिर माइबू के मामी कल्याणी मोहन खातिर और मोतायलोंग के भाभी शकुंतला खातिर नोवेल फॉन्स के सखी गीता बाई खातिर

आदेश ठाकुर प्रसाद जी के गावली गाना, और ये गाना हमने बजाओ थे जा हमने के श्रोता शांति जी खातिर कटेज से शांति जी गाना माफ करिए तेहूर से शांति जी गाना मंगले हवन डागुचे के अपन मराठी परिवार खातिर अपर डागुचे के अपन भगिना ओम खातिर।

और चला अभी कुछ हमने सुदेवी जी के पास इनके गाना सुनवावत है जाता हलो के वाक वाक के सुदेवी जी मंगले हवन गाना विनोद सिद्धार्थ जी के गावल ठेला ठेली गाना सुने खोजत हवन और बजवाए खोजत हवन ये गाना अपन बहन ललिता जी खातिर थ्रियोले के दीदी ललिता और कुशल परिवार खातिर आत्माराम भैया खातिर दीदी सुनीता शोभा देवीना खातिर मालेगा के राम रतन परिवार खातिर और हमने के पूरा टीम खातिर तो बहुत बहुत शुक्रिया सुदेवी जी।

अब चला लाली के सिनेमा ले जाए लाजा हर संजय हरिचरण जी के गावल गाना चल लाली सिनेमा देखे। और ये गाना हमने साजिद जी के फरमाइश पर चलावत हैं जाए रसिल के साजिद जी गाना मंगले और हमने के सब श्रोता लोग के नाम और ये कनाडा मोगयाल के उनकर संगतिया सरोवर जी के नाम।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का में तोहर खातिर प्रस्तुत करते हैं जहाँ

हमने अगला गाना और ये अगला गाना हमने चलावा था जा अबू जी खातिर। यहाँ हमने के धोती पोथी पगड़ी विक्रम कुलाचंद जी के गावल गाना और ये गाना हमने बजावा था जब अबू जी बगल से आफेज असलम आया जायान जाहिरा रईस कला चुटी

और हमने के भोजपुरी तड़का तोहर खातिर प्रस्तुत करे थे जा जहाँ होइबा जा अपन पसंद के गाना जरूर मंगिया जा। अभी जो गाना हमने छलाओ अब जा सोफेर बाबू विश्वानी दीपुआ जी के गावल गाना ये हमने कौफू खो के वीना और रवि जी खातिर बजावत है जा। वीना जी अपन पति रवि के नाम करत हमने गाना।

अब चला हमी प्रस्तुत करीला जा पैसा के पीछे नहीं भागे होला सलाह। और ये गाना हमनी चंद्रदेव जी बोधन जी के गावल गाना सुनब जा। और ये हमने से मानती जी मंगल हवन का तो बोन से अपन सब लैका लोखा।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का तोहर कार्यक्रम तोहर गाना से तड़का लगेला तोहर फरमाइश से तड़का लगेला एकर में। और ये अभी गाना हमने बजाओ थे जग गाँव गुप के सुनीता जी बगल से उनकर कुंगुमा के बहिन विमाला जी खातिर राज दुलवा जी के गावल गाना। और ये गाना हमने के बचत करे के सिखावेला चल सीखी जा हमने के कार्यक्रम में जो गाना हमने चलवाए खोजत है जा उ गाना तो तोहर खातिर हमने लेके अब करब जा एक पैसा से बारह है ना और एक पैसा से बारह है ना गाना हमने बजावत है जा सुनीता जी के बगल से भी माना जी खातिर राज दुलवा जी के गाँव गाना।

0: कोई सुना जा ढेर ताका नहीं लिया जा तोशियों बढ़ जाए जाबेद बढ़ जाए ढेर सोचिया नहीं
1: ढेर सोचा नहीं चिंता न करिया चिंता कर बत आगे नहीं बढ़बा चिंता के दूर हटा के अपन समस्या के समाधान ढूंढ ये सबसे जस्ती है तो हर सेहत खातिर अच्छा रही। ये गाना हमने सुना थे जा धर्मदेव रंगू जी से और ये गीत हमने बजावा थे जा विजेश जी के पसीन पर कौ दुमास के विजेश जी गाना मंगलवन सब दोस्त लोग के नाम

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: आप चला सेल्फी निकाली ला जा, हमने विजय गणपत जी के गावल ही गाना सुनी जा, और इस सेल्फी के जो जमाना चला बा उस जमाना में थोड़ा सा अच्छा से जी ले ला जा। ये गाना हमने से मंगले हमारे लोग माउंटेन से विवेक जी, अपन पूरा परिवार खातिर और खासकर अपन बेटी खातिर खुशी खुशी रहन सेल्फी निकाले के।

चले सुनी चाह हमनी भुलक्कड़ गाना। भुलक्कड़ कौन के डिब्बा एगो चीज किने के तो दूसरा चीज किन के चल जावेला। फीता बोलबा तो जूता किन के चलाए, आटा बोलबा तो फीता किन के चलाए। चला सुनी चाह हमनी गंगा राम सुनील जी के गावली गाना।

0: भोजपुरी तड़का
1: बस भोजपुरी तड़का में हमने तनी सन अच्छा अच्छा बात सोची जा कि दूसर के दिल नहीं दुखाओ अब जाता हमने के दिल के कितना खुशी मिली, दूसर के बुरा नहीं चाहब जा तो हमने के कितना भला हुई। चला सुनी जा हमने सुखदेव रामखेलावन जी के गावली गीत, और ये गीत हमने बजावत हैं जा सुनीता जी के नाम पर। सुनीता जी रहलन घोबे और ई गाना मंगले हवन अपन भाई रवि के नाम।

चले रावण कुमार जी के गावली को गाना सुनाते हैं। जा फटक फटक एकर से बचपन तो याद आ जाए और पुराना जमाना में कौन कौन कैसे से कार्य हुआ था लेकर बारे में भी थोड़ा बहुत हमने सुनब जा। और ये गीत हमने बजाओ थे जब बिंदिया जी खातिर, बिंदिया जी ये गाना मंगले हवन अपन बहन शोभा के नाम।

हमने के भोजपुरी तड़का के अंतिम गाना प्रस्तुत करे थे जा, और ये अंतिम गाना हमने शोभा दुमन जी के गावल प्रस्तुत करे थे जा। रात के 11 बजे हो लबा और ये 11 बजे सुनिया जा आज के सुनहरे पल कार्यक्रम। सुनहरे पल कार्यक्रम लेके आए हैं विकास गौर, और हमने के कार्यक्रम यहाँ जा पर जब समाप्त हो जाए तो हर खातिर शुभ रात्रि के कामना बा और नमस्ते आवतला, फिर मिलब जा, नमस्कार।

0: नमस्कार और स्वागत आप सभी का कार्यक्रम सुनहरे पल। और जिंदगी की भागा दौड़ी से हम कुछ पल चुरा कर आपके साथ बिताने का इरादा रखते हैं। अगर आपके पास भी थोड़ा वक्त है तो शामिल हो जाइए इस बहुत ही खूबसूरत जर्नी में, सफ़र में, जहां पर यादें ताज़ा होने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। हर गाने के साथ एक नई याद, याद है ना? रेडियो पर अभी सुनहरे पल।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी मन खाली सा लगता है। ऐसे वक्त में खुद के साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए, वो चीजें जो आपको पसंद हो, फिर चाहे चाय की एक प्याली, हल्का सा संगीत और हो सके तो ढेर सारी बातें। अरे खुद से, यकीन मानिए जब आप बाहर नहीं अंदर मिलते हैं, जो खुद को समझ गया वो दुनिया को भी समझ जाता है। बस अपनी वैल्यू पहचानिए, आप बहुत खास हैं।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: प्यार, इश्क और मोहब्बत। वैसे मोहब्बत सिर्फ किसी इंसान से नहीं होती, कभी किताबों से, कभी बारिश से, कभी संगीत से भी हो जाती है। दिल को जो सुकून दे वही तो असली प्यार है। और प्यार में सबसे खूबसूरत चीज़ है एहसास। जहाँ शब्द कम पड़ जाएं, वहीं से दिल की कहानी शुरू होती है।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: का पंछी।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस।

0: तो जरा ओढ़ो हूँ। अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: रात काली अंधेरी जरूर होती है, लेकिन साथ में दिन जैसे जैसे समाप्त होता है तो एक नई सुबह। नई सुबह का मतलब एक नया मौका। कल क्या हुआ उसे छोड़ दीजिए, आज मुस्कुराइए और अपने आप को ये समझाइए कि एक बार फिर से कल सुबह होगी। आज फिर से सपनों को उड़ान देने का एक दिन है, चेहरे पर खूबसूरती मुस्कुराहट लाने का दिन है, क्योंकि हम उम्मीद का हाथ कभी छोड़ते नहीं।
2: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: चलिए इसी गाने के साथ अभी फिलहाल कार्यक्रम समाप्त होता जा रहा है और उसके बाद फिर से मुलाकात जल्द ही होगी। बस आशा यही करते हैं कि गानों का भरपूर आपने लुत्फ उठाया होगा। ऐसी गानों का साथ देते जाइए, MBC रेडियो का साथ देते जाइए। जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: डिशेस।
1: इश्क के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा एहसास ही इश्क है। तुम्हारा एहसास ही इश्क है।